0: अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को सुप्रभात। आज रविवार 11 अक्टूबर 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए ठीक 5:01।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आपकी सुबह की शुरुआत एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ हुई होगी, क्योंकि सुबह चाहे कितने भी जल्दी हो, अगर दिल खुश है ना तो हर दिन खूबसूरत लगता है। 5:08 हुए हैं संडे की सुबह और आप सुन रही हैं अपना फेवरेट मॉर्निंग शो रिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर। मैं हूँ आपकी अपनी ही रिया और आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सबका दिल से स्वागत है। संडे का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? लेट उठना, बेड में थोड़ी देर और पड़े रहना, गरम गरम चाय, फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट और फिर पूरे दिन का कोई खास प्लान नहीं होता, बस आराम ही आराम, क्योंकि मंडे की भाग दौड़ से पहले संडे देता है एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन दोस्तों आज का संडे कुछ अलग है। आज सिर्फ वीकेंड का आखिरी दिन नहीं बल्कि

0: माँ दुर्गा के स्वागत का दिन है। आज से शुरू हो रहा है नवरात्र के नौ पवित्र दिन। चारों तरफ एक अलग ही रौनक है। कहीं घरों में कलश स्थापना की तैयारी, कहीं माँ की दरबार को सजाया जा रहा है, कहीं फूलों की खुशबू है तो कहीं भक्ति के गीत गूंज रहे हैं। माँ आ रही है और उनके आने की खुशी ही कुछ और है। ये वो समय है जब घर सिर्फ सजते नहीं, दिल भी सजते हैं। मन में आस्था, आंखों में उम्मीद और दिल में एक ही प्रार्थना, माँ सबके घर में सुख शांति सेहत और समृद्धि लेकर आए। नवरात्र के प्रथम दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, भक्ति के साथ संडे की मस्ती भी बिल्कुल जरूरी है, तो चाय की चुस्की लीजिए, अपने चेहरे पर स्माइल रखिए और वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि आज की सुबह होगी भरी, म्यूजिक होगा दिल से जुड़ा और बातें होगी अपनों जैसी। रिलैक्स है, संडे है और माँ का आशीर्वाद साथ है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत सुबह की ब्यूटीफुल म्यूजिक के साथ। We've got some beautiful सरबहर गाने आपके नाम। As usual, ये गाने हम एक एक चुनकर लाते हैं आप सभी के नाम, ताकि आपका ये दिन बन जाए। और आज तो संडे है तो दिन बहुत ही बढ़िया जाएगा। चलिए get to the next track और इसी के साथ wishing you all a pious नवरात्रि। जी हाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से। एंड ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट आपके डेडिकेशन मैसेजेस ऑन 5499-1294
1: विद रेडियो मास्टी, योर नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: कुछ नहीं ठहरता ना पंचम, कभी भी कहीं भी, न तुम ठहरे न मैं ही रुकूंगा। मैं क्या बताऊं कि बहता दरिया जब आ रहा था तो जा रहा।

वेल, आज की सुबह में कुछ तो खास है ना। हवा में एक अलग सी मिठास, घरों में तैयारियों की रौनक और दिल में माँ दुर्गा के आगमन का इंतजार है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, माँ शैलपुत्र की उपासना का दिन है। नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों का त्यौहार नहीं है, ये 9 दिन हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमारे अंदर उनका सामना करने की शक्ति होती है। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना लगे, अच्छाई और सच्चाई की ताकत उससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। आज कई घरों में कलश स्थापना होगी, माँ की चौकी सजेगी, लाल चुनरी चढ़ाई जाएगी, फूलों से दरबार सजाया जाएगा और भक्ति के गीत गाए जाएंगे। कहीं कोई पूरी श्रद्धा से व्रत रखेगा, कहीं कोई पूजा की तैयारी करेगा, तो कहीं कोई दूर बैठे माँ को याद करके बस हाथ जोड़ लेगा। और दोस्तों, भक्ति का सबसे खूबसूरत रूप शायद यही है, माँ को याद करने के लिए किसी बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं, सच्चे दिल से निकली हुई एक छोटी सी प्रार्थना भी बहुत मायने रखती है। आज माँ से बस इतना मांगिए कि हमारे घरों में प्यार बना रहे, रिश्तों में मिठास बनी रहे, बीमार को सेहत मिले, परेशान दिलों को सुकून मिले और हर घर में खुशियों का दिया जलता रहे। और एक बात, इस नवरात्रि में माँ की पूजा के साथ उनके गुणों को अपनाने की भी कोशिश करें। किसी कमजोर का सहारा बने, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाए और किसी जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि माँ का आशीर्वाद सिर्फ मंदिर में नहीं, इंसानियत के हर अच्छे काम में भी महसूस होता है। आप सभी को नवरात्रि के प्रथम

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी बोलिए साले मिलकर, जय माता दी। और इसी पवित्र सुबह को और भी खूबसूरत बनाती है माँ की एक गाने के साथ। जी हाँ, महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में ये ब्यूटीफुल गाना जाता है हमारे सभी लिसनर्स के नाम।

और दोस्तों आज का दिन बॉलीवुड के दीवानों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज जन्मदिन है उस शख्सियत का जिनकी आवाज में दम है, जिनकी आंखों में जादू है और जिनका अंदाज पिछले कई दशकों से करोड़ों दिलों पर राज कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रही है बॉलीवुड की शहनशाह लेजेंडरी अमिताभ बच्चन जी की। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे बिग बी ने अपनी शानदार अभिनय, अपनी बुलंद आवाज और अपनी बेहतरीन अंदाज से हिंदी सिनेमा को एक अलग ही पहचान दी है। जंजीर से लेकर दीवार, शोली, डॉन, अमर अकबर, एंटोनी सिलसिला और फिर पीकू और ब्लैक जैसी फिल्मों तक उन्होंने हर दौर में अपनी वर्सटिलिटी और

0: रिच एलन को लोहा मनवाया। और उनकी आवाज अरे सिर्फ आवाज नहीं, एक पहचान है। जब वो बोलते हैं तो लगता है हर लफ्ज अपने आप में ही एक कहानी लिखकर आता है। टेलीविजन पर कौन बनेगा करोड़पति के जरिए भी उन्होंने घर घर में अपनी एक खास जगह बनाई। उनका अंदाज, उनका तहजीब भरा बोलने का तरीका और कंटेस्टेंट को प्रोत्साहित करने का अंदाज, सब कुछ लाजवाब। आज उनके जन्मदिन पर हमारी तरफ से उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करिए उनकी जिंदगी सेहत खुशी और प्यार से भरी रहे और वो आगे भी अपने हुनर से हम सबका मनोरंजन करते रहे। सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे अमिताभ बच्चन जी को। और बिग बी की बात हो और उनके गानों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो आज उनके स्पेशल दिन पर, स्पेशल संडे पर, क्यों ना उनकी किसी यादगार गाने के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। और जैसा कि हमारे एक लिसनर ने बताया, मीरा जी, हेलो मीरा जी, चलिए आपने जो गाना यहाँ पर बताया है, रिक्वेस्ट किया है फ्रॉम द मूवी ग्रेट गैम्बलर, हम यही चलाएंगे। एंड विशिंग अमिताभ बच्चन जी अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड आई एम श्योर कि उनके सारे फैंस उनको विश कर रहे हैं वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे की ढेरों सारी शुभकामनाएं अमिताभ जी को।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: अच्छा जी, घड़ी मिलाते चलिए, 5:47 समय हो चला है आपको बताने का कि आज आपका दिन कैसे कटेगा। इस योर राशि टाइम शुरू हम करते हैं।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज का दिन आपके लिए एनर्जी और नए जोश से भरा रह सकता है। फैमिली के साथ अच्छा समय गुजरेगा और किसी अपने से खुश खबरें मिल सकती है। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और हर बात को प्यार से सुलझाने की कोशिश करें। लकी नंबर है आज आपका 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज आपको अपने करीबी लोगों के साथ सुकून भरे पल बिताने का मौका मिलेगा। कोई पुराना काम पूरा होने से मन खुश हो सकता है। पैसे खर्च करते समय थोड़ा सोच समझ कर फैसला लें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों के साथ बातचीत और फैमिली टाइम से दिन और भी खूबसूरत बनेगा। अगर किसी नए आइडिया पर काम कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग के लिए समय निकालें। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज का दिन इमोशंस और फैमिली बॉन्डिंग के नाम रह सकता है। किसी अपने के साथ दिल की बात शेयर करने से मन हल्का होगा। बीते हुए कल की परेशानियों को लेकर ज्यादा न सोचें। आज के खूबसूरत पलों को जीने की कोशिश करें। लेकिन नंबर है आज आपका 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज आपका कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। किसी काम में अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिल सकता है और अपने करीबियों की बातों को भी इम्पोर्टेंस दें। और संडे को खुशियों के साथ एंजॉय करें। लकी नंबर है आज आपका 1।

0: एक वर्गो कन्या राशि, आज पेंडिंग कामों को आराम से पूरा करने और आने वाले हफ्ते की प्लानिंग करने का अच्छा मौका है। हर चीज़ को परफेक्ट बनाने के चक्कर में अपना आराम मत भूलिए, फैमिली के साथ समय बिताइए और छोटी छोटी खुशियों के लिए शुक्रगुजार रहिए। लकी नंबर है आज आपका 5।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: आज आपके लिए रिश्तों में प्यार और हमने बनाए रखा ना खास रहेगा। किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ अच्छी मुलाकात मूड को फ्रेश कर सकती है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो शांत रहकर बात करें। लकी नंबर है आज आपका 6।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज अपने गोल्स पर ध्यान देने और खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाने का दिन है। किसी पुरानी बात को लेकर परेशान होने के बजाय नए नजरिए से सोचने की कोशिश करें। अपने फैसले जल्दबाजी में ना लें और अपनी एनर्जी पॉजिटिव चीजों में लगाएं। लकी नंबर है आज आपका 9।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: आज का दिन फन एडवेंचर और नए एक्सपीरियंसेस के लिए अच्छा हो सकता है। अगर आपने फैमिली आउटिंग या दोस्तों के साथ मिलने का प्लान बनाया जा रहा है तो खूब एंजॉय कीजिए। साथ ही आने वाले हफ्ते के लिए अपने जरूरी कामों की एक छोटी सी लिस्ट बना ली। लकी नंबर है आज आपका 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पर्सनल हैप्पीनेस के बीच बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। काम की टेंशन को कुछ समय के लिए साइड में रखिए और अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। आने वाले हफ्ते के लिए कोई अच्छा प्लान आपको मोटिवेटेड रख सकता है। लकी नंबर है आज आपका 8।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज आपके दिमाग में कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज आ सकते हैं। दोस्तों के साथ समय बिताने या कोई पसंदीदा एक्टिविटी करना आपको खुशी देगा। दूसरों की सलाह सुने लेकिन कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह समझ ले। लकी नंबर है आज आपका 7।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज का दिन स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन ग्रेटिट्यूड और इनर पीस के लिए बहुत खूबसूरत हो सकता है। नवरात्र के प्रथम दिन माँ दुर्गा को याद करके अपने और अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। अपने दिल की सुने लेकिन जरूरी फैसले लेते समय प्रैक्टिकल सोच को भी साथ रखें। लकी नंबर है आज आपका 3। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि, आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे, बहुत ही शुभ कटे। चलिए, रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ रविवार।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
3: Chillax with Radio Musti.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को सुप्रभात घड़े मिलाते चलिए सुबह की ठीक 6 बज रहे हैं समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का तो आइए इसे हम आशिता के साथ है सुनते हैं नमस्कार आपको आशिता
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार आज 11 अक्टूबर रविवार के प्रातकालीन पहले संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है मॉरिशस में पानी का संकट गहराता जा रहा है मोहवाक्वा जलाशय में पानी का स्तर 36% से नीचे गिरने के बीच देश पानी की कमी दूर करने के लिए दूसरे देशों के तरीकों पर विचार कर रहा है पानी की टंकी और पंप खरीदने के लिए 15,000 रुपए की सरकारी सहायता पाने हेतु पंजीकरण सोमवार यानी कि कल 12 अक्टूबर को शुरू होगा उपनाम के पहले अक्षर के आधार पर पंजीकरण की तारीख तय की गई है जबकि आवेदन के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र और CWA का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा मॉरिशस में घरों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सरकारी सहायता योजना को लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है अब तक करीब 1,300 आवेदन मिले हैं जबकि 354 घरों को बिजली नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है मॉरिशस में बिजली की बचत के लिए नया अभियान कुछ दिनों में शुरू होगा और अप्रैल 2027 तक चलेगा गर्मियों में बिजली की बढ़ती मांग को नियंत्रित करने और बिजली कटौती के खतरे से बचने के लिए लोगों को ऊर्जा बनाने के प्रति जागरूक किया जाएगा मॉरिशस सोसाइटी ऑफ ऑथर्स माजा की वार्षिक आम सभा रविवार आज यानी कि 11 अक्टूबर को बोबासा में आयोजित हो रही है इससे पहले 4 अक्टूबर को आवश्यक सदस्यों की संख्या पूरी नहीं होने के कारण सभा स्थगित कर दी गई थी और आज रविवार 11 अक्टूबर से मॉरिशस में दुर्गोत्सव का शुभारंभ हो रहा है और घरों व मंदिरों में दुर्गा पूजा की विशेष प्रार्थनाएं शुरू हो रही हैं 9 रातों तक चलने वाली इस पूजा में भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करेंगे जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है मॉरिशस में सूखे और जलाशयों में पानी का स्तर गिरने के बीच ग्लेनपॉक सुन्नी मस्जिद आज रविवार को बारिश के लिए विशेष प्रार्थना आयोजित करेगी मोहवाक्वा जलाशय में पानी का स्तर घटकर उसकी कुल क्षमता का 35.7% रह गया है ऐसे में इमाम ने लोगों से पानी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है मॉरिशस में ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर हैं और टैक्स पेयरों के पास अब केवल 4 दिन बचे हैं करदाताओं की मदद के लिए मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी आज रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष सेवा उपलब्ध करा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब की राजधानी रियाद के हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत और 309 लोग घायल हुए हैं सऊदी अधिकारियों ने हमले के लिए यमन के हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है तो इसके साथ ये संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर आम हालत हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का बहाव है पूर्व से आने वाले बादल सुबह में और दोपहर बाद में हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे अगले 24 घंटों के लिए अनुमान किया जाता है कि सुबह के समय और दोपहर बाद में विशेषकर पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्रांतों पर बादल घिराएंगे और बारिश होगी कभी कभार बारिश तेज होगी और बादल की गरजने की भी संभावना है रात के दौरान विशेषकर पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्रांतों पर रहकर बारिश होती रहेगी हवा सुबह के समय पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से हल्की बहेगी और दिन में रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर के जुआर उठेंगे तापमान अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिल

इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। चंद जरूरी सलाह, जब बादल गरजे तो जनता को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित जगह पर रहें और खुली जगहों पर तथा पेड़ों के नीचे न जाएं। आज सूर्योदय

0: Chillax with Radio Musty.
1: Your number one Bollywood radio station.
2: रात्रि है कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
3: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: with Radio Musty.
1: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। 6:13 संडे की खूबसूरत सुबह, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट मॉर्निंग शो चिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर। मैं हूँ आपकी अपनी है रिया, और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेल, क्या खूबसूरत शुरुआत हुई है हमारे दूसरे घंटे की। अभी अभी हमने सुना जय माँ काली फ्रॉम द मूवी करण अर्जुन, और गाना है ऐसा कि सुबह सुबह ही दिल में एक अलग जोश, एक अलग एनर्जी आ जाए। आज का संडे वैसे भी बहुत ही स्पेशल है, वीकेंड का आखिरी दिन है, लेकिन आज की सुबह में सिर्फ संडे वाली आराम भरी फीलिंग नहीं, बल्कि नवरात्र की पवित्रता और उत्सव की खुशबू भी है। आज से शुरू हो रहा है माँ दुर्गा के नौ पवित्र दिन। कहीं घरों में कलश स्थापना की तैयारी हो रही है, कहीं माँ का श्रृंगार किया जा रहा है, कहीं लाल चुनरे और फूलों से दरबार सज रहा होगा, और कहीं रेडियो पर भक्ति के गीत सुनकर लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे होंगे। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर भी एक शक्ति है मुश्किलों का सामना करने की, गलत के खिलाफ खड़े होने की, और हर बार गिर कर दोबारा उठने की। और दोस्तों, माँ की भक्ति अपनी जगह और संडे की मस्ती भी अपनी जगह हम दोनों आज निभाएंगे यहाँ पर। तो हमारे गाने भी मिक्स्ड होंगे, थोड़ा डिवोशन भक्ति भरे गाने, कुछ रोमांटिक ट्रैक्स, थोड़ी मस्ती और ढेर सारे म्यूजिकल मेमोरीज। आप घर पर है, किचन में ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, ड्राइव पर निकल चुके हैं, या नवरात्र की प्रिपरेशंस में बिजी है, बस अपना मूड अच्छा रखिए और म्यूजिक के साथ बनाए रखिए। और एक छोटी सी बात, आज किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश जरूर कीजिए। माँ का स्वागत घर में तो करना ही है, दिल में भी प्यार और अच्छाई के लिए जगह बनानी है।

0: सो लेट्स गेट ऑन ट्रैक चुलैक्स के साथ सेकंड आवर ऑफ चुलैक्स हमारे साथ इन ब्यूटीफुल गानों के साथ एंड आपके मैसेजेस डेडिकेशंस ऑन 5499-1294
1: with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: 6:22 चली जी आपकी मैसेजेस की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे साथ विदुषा है सेबास्टोपोल से और सभी को विश करती है वेरी हैप्पी संडे मॉर्निंग एंड फर्स्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा। जी हाँ माँ शैलपुत्री सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, बस आप यही कहना चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर लवली मैसेज यहाँ पर। और आपके पति विमल ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनको हम मुंह खाज कहते हैं। एंड यहाँ पर नवरात्र के कई सारे मैसेजेस आए हैं। वी ऑल्सो हैव वन यहाँ पर, हैप्पी नवरात्रि टू यू एंड ऑल फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज। माँ दुर्गा प्यार शांति सभी के लिए बनाए रखे। और ये मैसेज जाता है टू सरोज, राजन, मोनिका, उमेश, पूनम और वर्षी। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल फैमिलीज, थैंक यू सो मच। और वी आल्सो हैव वन मैसेज यहाँ पर, वन विश काजल उहादन और किरण सुहाई हैप्पी बर्थडे। एक बर्थडे मैसेज, हैप्पी हैप्पी बर्थडे दोनों को, बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेज कमिंग फ्रॉम सुहाई परमिसा दर्शन सुनक सिंह उहादन सिबालक परिवार जो है रोसिल से। And happy birthday to Amitabh Bachchan ji. जी हाँ, अब्दुल और सारा बानू जी की ओर से ये मैसेज आया है। आज उनका बर्थडे है, बिग बी का जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे बिग बी को। वैसे फर्स्ट आवर में हमने एक दो गाने चलाए, बट हम सरोर और गाने चलाएंगे, क्यों नहीं, उनके बर्थडे पर गाने तो बनते हैं और बिग बी के गाने लाजवाब है उन्हीं की तरह। सो यस, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टू बिग बी। एंड देवानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पबीता, दर्शनी, क्रिस्टी, नकुल, अशिया एंड रिया के नाम नेक्स्ट गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। ऑल्सो हैप्पी संडे विश करते हैं सभी को, वेरी हैप्पी संडे आपको भी देवानंद जी। एंड मम्मा सुदेवी कालियाचित्ती के नाम नेक्स्ट ट्रैक जाता है जो घोंकुप से है। और स्वागत की तैयारी कर रही है, माँ दुर्गा की स्वागत की तैयारी, तो बहुत सारा प्यार है एंड उनको हम ब्लेस्टिंग विश करते हैं। एंड टू ऑल डिवोटीज एज वेल, आप विश करती है अनुष्का हैप्पी नवरात्रि एंड थैंक यू फॉर योर मैसेज यहाँ पर। श्याम जी का आज जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे। एंड यस, श्याम जी और ललिता जीतन जी का वेडिंग एनिवर्सरी है ऑन द सेम डे, दैट्स वंडरफुल। सो बहुत सारी शुभकामनाएं बेटी कुमार डेबचन की ओर से भी रहते हैं एंड उनको बहुत ही प्यार करते हैं, दैट्स लवली। यहाँ पर आपने मैसेज भेजा है मम्मा पापा के नाम, उनको हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। एंड हैप्पी नवरात्रि के मैसेजेस यहाँ पर बहुत सारे और है जिन्होंने नाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आपने विश किया सभी को, यही मायने रखता है।

एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम चुकालाल परिवार जो गुडलैंड से है जरूर. हैप्पी नवरात्रि सभी को विश करते हैं. और अगला गाना आप सभी के नाम जाता है. इट्स रोमांटिक ट्रैक जो हम चलाएंगे. एंड वी गॉट सम मोर ट्रैक्स यहाँ पर. अगर समय मिले तो आपने जो गाने की रिक्वेस्ट की है ये भी हम ट्राई ज़रूर करेंगे.

0: आज रविवार 11 अक्टूबर 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मॉरिशस में पानी का संकट गहराता जा रहा है। महोबा का जलाशय में पानी का स्तर 36% से नीचे गिरने के बीच देश पानी की कमी दूर करने के लिए दूसरे देशों के तरीकों पर विचार कर रहा है। पानी की टंकी और पंप खरीदने के लिए 15,000 रुपए की सरकारी सहायता पाने हेतु पंजीकरण सोमवार यानी कल 12 अक्टूबर को शुरू होगा। उपनाम के पहले अक्षर के आधार पर पंजीकरण की तारीख तय की गई है, जबकि आवेदन के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र और CW का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कापालेरो में शुक्रवार शाम गोली लगने से गंभीर रूप से घायल एलोजिटोमा के परिवार से मिलने पहुंची डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आरियाना मारी और खेल मंत्री देवेन नागालिंगम। आरियाना वोमारी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, वहीं देवेन नागालिंगम ने परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। मॉरिशस सोसाइटी ऑफ ऑथर्स की वार्षिक आम सभा आज रविवार 11 अक्टूबर को बुबासे में आयोजित हो रही है। इससे पहले 4 अक्टूबर को आवश्यक सदस्यों की संख्या पूरी नहीं होने के कारण सभा स्थगित कर दी गई थी। आज रविवार 11 अक्टूबर से मॉरिशस में दुर्गोत्सव का शुभारंभ हो रहा है और घरों व मंदिरों में दुर्गा पूजा की विशेष प्रार्थनाएं शुरू हुई हैं। 9 रातों तक चलने वाली इस पूजा में भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करेंगे, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मॉरिशस में ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है और टैक्स पेयरों के पास अब केवल 4 दिन बचे हैं। करदाताओं की मदद के लिए मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी आज रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक का विशेष सेवा उपलब्ध करा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में तूफान इसाइस ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और लाखों लोग बिजली के बिना रह रहे हैं। इस बीच मेक्सिको के प्रशांत तट की ओर बढ़ रहा तूफान साइमन और दक्षिणी कैलिफोर्निया की ओर बढ़ रहा ट्रॉपिकल तूफान रेचल भी चिंता बढ़ा रहे हैं। सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। कॉलव्यू में शुक्रवार शाम गोली लगने में गंभीर रूप से घायल एलोजिटोमा के मामले में घटनाक्रम पर सबकी नजर बनी हुई है। काम से घर लौटते समय उन पर गोली चलाई गई थी। कल शाम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आरियाना वोमारी और खेल मंत्री तथा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 19 के सांसद देवेन नागालिंगम उनके परिवार से मुलाकात की और उनके प्रति एकजुटता तथा समर्थन व्यक्त किया। आरियाना वोमारी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता एलोजिटोमा का स्वास्थ्य लाभ है। उनके अनुसार सरकार इस मामले पर करीबी से नजर रख रही है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आरियाना वोमारी को सुनते हैं।
1: C'est que cette madame-là trouve sur la santé. Donc, elle a une famille qui peut attendre. Il ne faudrait pas nous tomber dans l'hystérie. Il ne faudrait pas nous tomber dans la démagogie. Nous tout, nous soutenir la famille, nous solidaire avec la famille.

0: famille. Donc, nous gardons nous calmes pour que la famille aussi soit capable de trouver sa sérénité pour affronter sa situation difficile. Nous pouvons faire tout ce qu'il faut besoin faire pour que Mme Lagarde ait un bon soin aujourd'hui, demain, et aussi jusqu'à ce que le médecin vienne. Donc, faire le suivi, faire ce qu'il faut besoin faire pour que Mme Lagarde retourne sur la santé.
1: वहीं खेल मंत्री देवेंद्र नागालिंगम ने परिवार के सदस्यों से उम्मीद बनाए रखने की अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और उसे हर संभव सहायता प्रदान करेगी। खेल मंत्री देवेंद्र नागालिंगम को सुनते हैं।
2: उम्मीद बहुत पॉजिटिव, बहुत प्रयाव कि यू कैन सेट टू गेरिजन या दे ला जेंडा मामन कोज Bon, que j'ai des trois personnes qui me disent, tu vas moi à côté, mais mon pensée, moi, c'est la santé là qui est importante. Mm. Après, tu as intérêt. Tu as fait un suivi, Premier ministre, et il garde en contact avec DPM, il prend en contact avec moi, et nous causer. Et Anil, nous voyage, Rodrigue, qui nous peut aller demain, moi, dans délégation au Premier ministre, pas souci de ça, parce qu'il a envie qui tout à fait nous là.
1: मॉरिशस में पानी का संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। मौवाक्वा जलाशय में पानी का स्तर 36% से नीचे गिर गया है। बड़ी बारिश शुरू होने में अभी 2 महीने का समय है। ऐसे में पानी की कमी दूर करने के लिए जल्द से जल्द नए उपाय तलाशे जा रहे हैं। क्या मॉरिशस अपने पड़ोसी देशों के अनुभवों से सीख सकता है? सेशल्स में समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। रेनियन में इस सप्ताह मिगन परियोजना पर लोगों से राय लेने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जबकि रोड्रिक्स में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन क्या ये तकनीकें मॉरिशस की आर्थिक स्थिति और मौजूदा जल वितरण व्यवस्था के अनुकूल है? इसी पर अधिक जानकारी दे रही है शैलिनी बन टीना पुदना के विवरण के साथ।
3: मॉरिशस में लामारी के पानी के स्टेशन पर हर रोज 50,000 क्यूबिक मीटर पानी की कमी हो रही है। पानी की इस संकट की घड़ी में जरूरी है कि हम अपने आसपास के देशों के तरीकों को समझें। हमारे आसपास हर जगह अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। सेशल्स में सितंबर के बीच में समुन्द्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले 3 नए कारखाने शुरू किए गए। इनसे हर रोज 3,000 क्यूबिक मीटर पानी मिल रहा है। इस काम के लिए यूएई की तरफ से $25 मिलियन की मदद दी गई। रेनियन टापू में भी पानी के पूरे बंदोबस्त को सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। मेहन नाम की योजना पर मंगलवार से लोगों की राय लेने का काम शुरू हुआ है। इस योजना का मकसद पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर और जमा करके उत्तरी और पूर्वी इलाकों में पानी की कमी को दूर करना है। रोड्रिक्स में सौर ऊर्जा से चलने वाला एक कारखाना हर रोज 80 क्यूबिक मीटर पानी तैयार करता है, जिससे 2,400 लोगों की जरूरत पूरी होती है। ये सभी तरह के काम आ सकते हैं, लेकिन इनके लिए बहुत ज्यादा बिजली और पैसा चाहिए। मॉरिशस में समुद्र के पानी को पीने लायक बनाना शुरू करने से पहले एक बड़ी दिक्कत पर ध्यान देना जरूरी है। हमारे यहाँ तैयार होने वाले 62% पानी की बर्बादी पानी की पाइपों में रिसाव के कारण होती है। इसलिए समुद्र से पानी के नए तरीके ढूंढने से पहले मॉरिशस के लिए सबसे बड़ी जरूरत है पानी बांटने वाली खराब पाइपों और दूसरे ढांचे की मरम्मत करना, ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके।
1: पानी की टंकी और पंप खरीदने के लिए ₹15,000 की सरकारी सहायता पाने हेतु पंजीकरण कल सोमवार 12 अक्टूबर से शुरू होगा। उपनाम का पहला अक्षर ए से एम तक होने वाले लोग सोमवार से बुधवार तक पंजीकरण करा सकेंगे। वहीं एन से जेड तक अक्षर से शुरू होने वाले उपनाम के लोग गुरुवार और शुक्रवार को पंजीकरण करा सकेंगे। पंजीकरण सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सैंपल स्थित CWE के मुख्यालय या देश भर में इसके विभिन्न कार्यालयों में किया जा सकेगा। इसके लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र और CWE का पानी का बिल प्रस्तुत करना होगा। कॉलीव्यू में गोली लगने से घायल एलोजी टोमा के इलाज के लिए भारत से विशेष डॉक्टरों की एक टीम

0: को तुरंत मौशस बुलाने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू के मुताबिक इस मामले में उनकी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से बातचीत हुई है। उन्होंने घोषणा की कि भारत से चार डॉक्टरों की एक टीम कल सोमवार को मौशस पहुंचेगी। ये टीम एलुजीटोमा का ऑपरेशन करेगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू को सुनते हैं।
1: हम लोगों ने डॉक्टरों का एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मरीज की देखभाल के लिए हम लोगों ने वहां पर रखा और डॉक्टर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि मरीज को देश के बाहर इलाज के लिए नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि समस्या कुछ गंभीर लगता है। उतना आसान नहीं है क्योंकि आप जानते हो वे एंचुबे है, ताकि कोई ऐसा चीज ना हो जाए पेशेंट के साथ। तो हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे कि भारत से डॉक्टरों का एक टीम, चार सदस्य के टीम को मॉरिशस में हम यहाँ बुलाएं ताकि मरीज का जो ऑपरेशन करना है, जो गोली गया है अंदर, उसके वे निकाल सकें। प्रधानमंत्री के संपर्क पर मैं हूँ और उनकी पूरी सहयोग हमारे साथ है, अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगा रहे हैं और उनके सहयोग से ही हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि भारत से एक अच्छे टीम डॉक्टर यहाँ आए और पेशेंट का ऑपरेशन कर सकें। हमारे देश के राष्ट्रपति भी मरीज की स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता प्रकट किया है। तो मैं सभी को आश्वासन दिलवाना चाहूँगा कि सरकार की ओर से, हमारी ओर से, डॉक्टरों की टीम की ओर से सब कुछ किया जा रहा है ताकि जो पेशेंट है, जो मरीज है, उनका इलाज हम अच्छी ढंग से कर सकें।
0: मॉरिशस में बिजली बचाने के लिए एक नया अभियान कुछ दिनों में आधिकारिक रूप से शुरू किया जाएगा। ये अभियान अप्रैल 2027 तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य गर्मियों में बिजली कटौती से बचना और बिजली की सबसे अधिक मांग वाले समय में खपत को नियंत्रित करना है। गर्मियों के दौरान एयर कंडीशनर और पंखों का इस्तेमाल बढ़ने से बिजली की मांग में भी तेजी आती है। सरकार ने ये पहल ऐसे समय शुरू करने का फैसला लिया है जब जलवायु परिवर्तन और मुख्य और मध्य पूर्व में तेल की कीमतों को लेकर तनाव के बीच देश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। इस अभियान के तहत सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जाएगा। मुख्य रूप से शाम के व्यस्त समय में बिजली का खपत कम करने पर जोर दिया जाएगा ताकि गर्मियों के दौरान बिजली की कमी के किसी भी खतरे से बचा जा सके। मॉरिशस सोसाइटी ऑफ ऑथर्स माजा की वार्षिक आम सभा आज रविवार 11 अक्टूबर की सुबह बोबासा स्थित कॉलेज दु बॉन एट पर्पेचुअल सेकुआ में आयोजित हो रही है। ये सभा पहले 4 अक्टूबर को होनी थी लेकिन आवश्यक सदस्यों की संख्या पूरी नहीं होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। माजा की अध्यक्ष जोएल कोरे के अनुसार सभा के लिए 98 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस वार्षिक आम सभा का उद्देश्य संस्था के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्यों और माजा में पंजीकृत लेखकों के बीच विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। आइए जोएल कोरे को सुनते हैं, उनसे बात की राजवीना सीतामणि ने निर्मा नारायण रेड्डी के विवरण के साथ।
2: मैं आज मासा के इतिहास को दोबारा लिखने या पिछले कई वर्षों से चली आ रही परिस्थितियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने के लिए यहाँ नहीं हूँ। हमारा उद्देश्य है कि कलाकारों के हित में लंबित मामलों को आगे बढ़ाया जाए, मासा के संगठनात्मक ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाए और संस्था को प्रगति की दिशा में ले जाया जाए। यह उपलब्धि पूरे बोर्ड के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। हम ऐसे कई संवेदनशील और जटिल मुद्दों पर भी काम कर रहे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं यह नहीं कह रही हूं कि हमें अतीत को भूल जाना चाहिए, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना होगा, जबकि संबंधित सक्षम अधिकारी आवश्यक जांच कर रहे हैं। हमें पूरी पारदर्शिता बनाए रखते हुए निर्धारित प्रक्रियाओं का सम्मान करना होगा और अपना काम लगातार जारी रखना होगा। इसी भावना के साथ हम संस्था और इसके सभी सदस्य के हित में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन करते रहेंगे।
0: आज रविवार 11 अक्टूबर से माँ दुर्गा की आराधना का पर्व

दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है। नवरात्रों तक चलने वाले इस पर्व में श्रद्धालु माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करते हैं। इनमें शैलपुत्री से लेकर कालरात्रि और सिद्धिदात्री तक के रूप शामिल हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया और देवी शक्ति के रूप में माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ। माँ दुर्गा को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। वे नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाने वाली दिव्य शक्ति का स्वरूप है। नौ दिनों तक चलने वाली ये दुर्गोत्सव सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। इसके अंतर्गत कलश स्थापना सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। पूरा वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक आस्था से भर जाता है। आज के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ दुर्गोत्सव का मंगलारंभ हो रहा है। प्रस्तुत है ये विशेष रिपोर्ट टीना बुद्धा के साथ, जो हमें माँ शैलपुत्री की महिमा व महत्व के बारे में बता रही है।

शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इन्हें माँ शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में माता सती थी। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। माँ शैलपुत्री वृषभ यानी बैल पर सवार होती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ शैलपुत्री को शक्ति, साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन भक्तजन विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं और सुख शांति तथा समृद्धि की कामना करते हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री को सफेद फूल, दूध, सफेद मिठाई और गाय की घी का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। भक्तजन श्रद्धा पूर्वक ये प्रसाद अर्पित कर माता से सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है। पहले दिन का शुभ रंग सफेद माना जाता है। सफेद रंग शांति, पवित्रता और सरलता का प्रतीक है। इस दिन कई श्रद्धालु सफेद वस्त्र धारण कर माँ शैलपुत्री की आराधना करती है। नवरात्रि में दिन के समय पूजा पाठ के साथ साथ रात्रि में माँ दुर्गा की आराधना का भी विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु संध्या और रात्रि के समय दीप प्रज्वलित करती है, दुर्गा चालीसा का पाठ करती है और माता के भजन कीर्तन के माध्यम से अपनी श्रद्धा व्यक्त करती है। नवरात्रि का नाम भी रात से जुड़ा है और इस पावन अवसर पर दिन हो या रात सच्चे मन से की गई प्रार्थना भक्तों के लिए विशेष आस्था का विषय होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत होती है। भक्तों की कामना है कि माँ सभी के जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखे। माँ शैलपुत्री की महिमा अपरंपार, उनकी कृपा से जीवन में सुख, शांति और शक्ति का हो संचार। जय माता।

और मॉरिशस में सूखे की स्थिति को देखते हुए ग्लेन पार्क सुन्नी मस्जिद आज रविवार को बारिश के लिए विशेष प्रार्थना आयोजित करेगी। सलात इस्तिस्का नाम की ये प्रार्थना मोवाक्वा में सुबह की नमाज फज्र के बाद होगी। मस्जिद के सदस्य और इमाम फादिल नबी बुकस ने इसकी जानकारी दी है कि ये पहल ऐसे समय हो रही है जब मोवाक्वा जलाशय में पानी का स्तर घटकर उसकी कुल क्षमता का केवल 35.7% रह गया है। इमाम फादिल नबी बुकस ने बारिश के लिए प्रार्थना करने के साथ साथ लोगों से पानी का सोच समझकर और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की भी अपील की है। ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि करीब आने के साथ ही टैक्स पेयरों पर दबाव बढ़ रहा है। रिटर्न जमा करने की अंतिम समय सीमा अगले गुरुवार 15 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक है। इसके बाद रिटर्न जमा

करने पर जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी यानी MRA के अनुसार 9 अक्टूबर तक 178,000 से अधिक टैक्स रिटर्न जमा किए जा चुके थे। जिन करदाताओं को रिटर्न जमा करने में मदद की ज़रूरत है उनके लिए MRA आज रविवार को विशेष सेवा उपलब्ध करा रही है। ये सेवा सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब की राजधानी रियाद के शेख खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है जबकि 309 अन्य घायल हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार घायलों में कुछ की हालात गंभीर हैं। हमले के बाद हवाई अड्डे पर विमानों का संचालन रोक दिया गया है। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी के अनुसार मृतकों में 4 सऊदी नागरिक, बांग्लादेश के 2 नागरिक और अमरीका, जॉर्डन, फलिस्तीन, सीरिया, सूडान तथा मिस्र का एक नागरिक शामिल है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाली सैन्य गठबंधन ने इस हमले का जवाब देने की चेतावनी दी है। गठबंधन ने इसके लिए हुती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे युद्ध अपराध बताया है। यमन में सऊदी अरब के समर्थन वाली सरकारी सेना और देश के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हुती विद्रोहियों के बीच हाल के दिनों में संघर्ष तेज हो गया है। शनिवार को पूर्वी सऊदी अरब के दमाम शहर में स्थित शेख फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भी एक प्रक्षेपास्त्र गिरने की खबर है। सऊदी नेतृत्व वाली सैन्य गठबंधन ने इसकी जानकारी दी। इसके एक दिन पहले अधिकारियों ने बताया कि हुती विद्रोहियों के 2 हमलों में एक पायलट समेत 3 सऊदी नागरिकों की मौत हुई थी। वहीं 6 और 7 अक्टूबर को सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हुए हमलों में भी 3 लोगों की जान गई थी। हुती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। और उधर अमेरिका में तूफान इयास के असर से कई राज्यों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। बिजली आपूर्ति पर नजर रखने वाली वेबसाइट PowerOutage.com के अनुसार नॉर्थ कैरोलिना में 12,400 से अधिक घरों की बिजली गुल है। हालांकि तूफान के नॉर्थ कैरोलिना से होकर गुजरने की आशंका नहीं है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने राज्य के तटीय इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की आशंका जताई है। वहीं फ्लोरिडा में जहां तूफान कल पहुंचा था 438,000 से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति बाधित है। राज्य के गवर्नर रॉन डिसांटिस के अनुसार कुछ काउंटियों में 80% से अधिक उपभोक्ताओं में बिजली चली गई है। उन्होंने बताया कि बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए कर्मचारियों ने कल रात से ही काम शुरू कर दिया है। अलाबामा में भी अब 2,51,000 से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली गुल है। राज्य में 16,00,000 उपभोक्ताओं को सेवा देने वाली अलाबामा पावर कंपनी के अनुसार भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति बहाल करने में कठिनाई आ रही है। उधर जॉर्जिया में 91,000 से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति बाधित है। जॉर्जिया पावर कंपनी के अनुसार कर्मचारी सुरक्षित इलाकों में पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं और बिजली बहाल करने में जुटे हुए हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में तूफान इयास ने जो तबाही मचाई है इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, लाखों लोग बिजली के बिना रह रहे हैं। इसी बीच मेक्सिको के प्रशांत तट की ओर बढ़ रहा तूफान साइमन और दक्षिणी कैलिफोर्निया की ओर बढ़ रहा ट्रॉपिकल तूफान रेचल भी चिंता बढ़ा रही है। बढ़ते हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का बहाव है। पूर्व से आने वाले बादल सुबह में और दोपहर बाद में हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय और दोपहर बाद में विशेषकर पूर्व, दक्षिण और सतपातों पर बादल घिराएंगे और बारिश होगी। कभी कभार बारिश तेज होगी और बादल के गरजने की भी संभावना है। रात के दौरान विशेषकर पूर्व, दक्षिण और सतपातों पर रहकर बारिश होगी। हवा सुबह के समय पूर्व की ओर से हल्की बहेगी और दिन में रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर के जुआर उठेंगे। अधिकतम तापमान सैटेलाइटों पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच, न्यूनतम तापमान सैटेलाइटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। चंद जरूरी सलाह, जब बादल गरजे तो जनता को सलाह दी।

जाती है कि वे सुरक्षित जगह पर रहें, खुले मैदानों में तथा पेड़ों के नीचे न जाएं। आज सूर्योदय सुबह 5:43 पर और सूर्यास्त शाम 6:10 पर।

तो इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। हमारे साथ कंसल पर यूसुफ थे जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं, समाचार डेस्क को भी धन्यवाद देते हैं, सुनने वालों को भी आपको धन्यवाद देते हैं। अभी साथ रहिए, हम बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रिवालेन रोड क्रेवक्योर में, रिवालेन रोड क्रेवक्योर में 73 साल की 73 years old की श्रीमती परमावती रामधानी जिन्हें कुष्मा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके भाई सुनील दत्त रामधानी के घर क्रेवक्योर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं के शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। ब्रांच रोड लालमाटी में 100 years old की श्रीमती कांति श्री किसुन पैदाशा पंदोही और जिन्हें दादी धुनमन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे कृष्णा मोहन श्री किसुन के घर लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाटी की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 2 PM। नंबर 87 लापेरू स्ट्रीट ओकुले में, नंबर 87 लापेरू स्ट्रीट ओकुले में 75 साल के 75 years old की श्री अनिल जयनारायण लीला जिन्हें अनिल के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके घर ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीब्रियों की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 11 AM। रुद्रानम वाकुआ में 72 साल की 72 years old की श्री चंद्रबोस की सुन जिन्हें सुभाष के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके घर वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बालों सुल्वेरिनो की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। पार्वत लेन इलो दिपिने में 58 साल के 58 years old के श्री काबी राम किसुन जिन्हें कवि के नाम से ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती भारती रामकिसुन के घर इलो दिपिने से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं के शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 1 PM। मौसलमा व्याजे लिस्बन नंबर 2 पुची व्याजे पॉइंट साबल में, मौसलमा व्याजे लिस्बन नंबर 2 पुची व्याजे पॉइंट साबल में 85 साल की 85 years old की श्रीमती गोइंदामा माधुरे जिन्हें माता नायकेन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके बेटे अंगामुत्तु नायकेन माधुरे के घर पुची व्याजे पॉइंट साबल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैलवी पुची रिविया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। मौसलमा राफरे लो चेतिया रोज में 43 साल के 43 years old के श्री दिनेश रामनियाल जिन्हें बंटी एंड बेन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो बीट्स एंड ज्वेल के मालिक थे, उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके घर एवेन्यू विरासामी आयो मौसलमा राफरे लो चेतिया रोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रोले वाले दिप्रेत की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9। एंग्री मोसियाल कास्टेल में 80 साल की 80 years old। ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। एंग्री मोसियाल कास्टेल में 80 साल के 80 years old के श्री कृष्णा मंगरू जिन्हें चंद के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे मुगा फ्यूनरल पॉल पुचित रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगा की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे 10 AM। एवेन्यू बेतु कैट्रोबोन में 93 साल की 93 years old की श्रीमती शांता बालगोबिन पैदाशनाम बाबूराम और जिन्हें भानु के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके घर कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदेगोद कैट्रोबोन की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे 11 AM। देसाई स्ट्रीट बोबासे में देसाई

बुबासे में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रवीणलाल देवचंद करमन शाह, श्री प्रवीणलाल देवचंद करमन शाह जिन्हें प्रवीणलाल के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी अगले मंगलवार को दिन के 1:30 बजे उनके भतीजे गिरीश देसाई के घर बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रीमेशन ऑन ट्यूसडे एट 1:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: गुडी गुड मॉर्निंग सभी को घड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 7:01
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

यह नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: गुड मॉर्निंग सभी को, क्या हाल चाल है, कैसे चल रहा है आपकी, कैसे चल रही है आपकी संडे मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि सबके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल है, दिल में पॉजिटिविटी है और घर में नवरात्र की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 7:06 और रिलैक्स कंटिन्यूज ऑन रेडियो मस्ती। मैं हूँ आपकी अपनी ही रिया और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खूबसूरत म्यूजिकल द मॉर्निंग में। वल अभी अभी हमने शुरुआत की मैं बालक तू माता शेरावाली जुबिन नौटियाल की आवाज़ में, और सच में क्या प्यारा भजन है। इसमें वो भक्ति है, वो श्रद्धा है, वो अपनापन है जो सीधा दिल तक पहुंचता है। आज का दिन वैसे भी बहुत ही खास है, संडे का दिन, वीकेंड का आखिरी दिन, लेकिन इस बार संडे की खुशी के साथ जुड़ गया है एक और पवित्र एहसास, नवरात्रि का पहला दिन। आज से 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना होगी। घरों में कलश स्थापना, माँ का श्रृंगार, फूलों की सजावट, व्रत, पूजा और भजनों की गूंज, हर तरफ एक अलग ही रौनक होगी। तो हमारी ओर से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। आपके परिवार पर उनकी कृपा बनी रहे और हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति आपको मिले। और हाँ, आज रिलैक्स पर सिर्फ भक्ति ही नहीं, संडे वाली मस्ती भी जारी रहेगी, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक खूबसूरत मिक्स। जी हाँ, यहाँ पर भक्ति के गीत होंगे, बॉलीवुड के फेवरेट ट्रैक्स भी, और वो गाने जो आपको अपने साथ गुनगुनाने पर मजबूर करते। तो ट्राई कीजिए, उसके लीजिए और अपनी संडे मॉर्निंग को एंजॉय कीजिए। और अगर घर में नवरात्र की तैयारियां चल रही है तो म्यूजिक के साथ अपना काम और भी मजेदार बनाए। आज की सुबह एक खूबसूरत प्रार्थना के साथ शुरू हुई है और इस दिन को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है। थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ा सा प्यार और ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ जय माता दी, शुभ नवरात्रि सभी को। आपके डेडिकेशन मैसेजेस आप हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं। नंबर है 5499-1294।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: कि ये तो आप मानती हैं कि कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती, दिल में उतर जाती है। कुछ चेहरे सिर्फ स्क्रीन पर नजर नहीं आते, वो हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही लेजेंड की, एक ऐसे सुपरस्टार की जिनकी आवाज में है दम, जिनके मन में है शान और जिनकी पर्सनालिटी का जादू आज भी बरकरार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अबाउट शहनशाह ऑफ बॉलीवुड, द वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन जी का आज बर्थडे है। चाहे जंजीर का एंग्री यंग मैन हो, शोले की जय हो, दीवार का विजय हो, या फिर मोहब्बती की स्ट्रिक नारायण शंकर हो, हर किरदार को उन्होंने अपने अंदाज से यादगार बना दिया। और उनकी आवाज़, अरे भाई वो आवाज़ तो ऐसी है कि सर एक डायलॉग बोले और पूरा माहौल बदल जाए। उनके डायलॉग्स, उनका स्टाइल, उनकी आंखों का एक्सप्रेशन, बॉलीवुड की हिस्ट्री में उनका नाम हमेशा गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, उनकी कहानी हमें सिर्फ स्टारडम नहीं बल्कि स्ट्रगल के बाद सक्सेस, गिरकर दोबारा उठने और कभी हार न मानने का जज्बा भी सिखाती है। तो आज चिलैक्स पर अमिताभ बच्चन साहब को ढेर सारी बर्थडे विशेस। मे ही कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशंस विद हिज टैलेंट एंड डेडिकेशन। और आप बताइए, अमिताभ बच्चन साहब का आपका फेवरेट डायलॉग या फिल्म कौन सी है? क्या है वो रोल जो आज भी आपके दिल के सबसे करीब है? चलिए इस लेजेंडरी सुपरस्टार के नाम करते हैं आज की ये म्यूजिकल सेलिब्रेशन। जी हाँ, नेक्स्ट ट्रैक उनके नाम, उनके सभी फैंस के नाम।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: 7:30 बज रहे हैं। चलिए संडे को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं चटपटी स्पोर्ट्स खबरों के साथ। स्टूडियो में आ गए हैं विकास जी, उनका स्वागत करते हैं। हेलो, नमस्कार आपको विकास जी।
4: नमस्कार रिया, और नमस्कार सभी को। ए वेरी हैप्पी मॉर्निंग।

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रात 7:30 बजे 7:30 PM नॉट टू मिस इंग्लिश प्रीमियर लीग में महामुकाबला एनफील्ड में बिटवीन लिवरपूल एंड मैनचेस्टर सिटी। ये इस सप्ताहांत का क्लासिक मुकाबला है जो खासतौर पे सिटी की सेहत के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। एंजो मारेस्का के स्काई ब्लूज 115 कथित आरोपों के घेरे में है, साए में है, और लिवरपूल के लाल आज अपने घर एनफील्ड में उन्हें घेर के जरूर रखने की कोशिश करेंगे। और इस बीच इंग्लैंड के दूसरे लाल मैनचेस्टर यूनाइटेड के लाल भूत अपने ही बंगले में फिर फंस गए। 10 खिलाड़ियों के बावजूद टोटेनहम हॉटस्पर ने उन्हें तोते इंजरी टाइम में उन्हें ललकारा, उनके साथ मैच ड्रॉ किया। नतीजे विस्तार से सुनिए। सबसे पहले कल का जो आखिरी मैच था उसमें एन मौके पे इंजरी टाइम में जाकर टोटेनहम ने इक्वलाइज किया। सो इट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड 1 टोटेनहम हॉटस्पर 1। प्रथम भाग में कोई भी गोल न बन पाया तो सेकंड हाफ के 73rd मिनट पर ब्रायन एम्बुमो का एक पहला गोल, मैनचेस्टर यूनाइटेड आगे। और इसके 5 मिनट बाद ही 78th पर रोड्रिगो बेंटानकू को मिला रेड कार्ड, एक कंट्रोवर्शियल रेड कार्ड कह सकते हैं, क्योंकि ल्यूक शो ने भी गलती की थी, उसको कुछ नहीं हुआ। सो एम्बुमो 1-0। 10 खिलाड़ियों के बावजूद इंजरी टाइम के 92nd मिनट पर जाकर डोमिनिक सोलांकी ने एक सुंदर हेडर से इक्वलाइज किया टोटेनहम हॉटस्पर के लिए। सो इट्स फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड 1-1। रोबर्टो डे ज़ेबी को रोड्रिगो बेंटानकू का रेड कार्ड बड़ा ही पसंद आया। वी प्लेड विद मोर करेज, ऐसा कहा मैच के बाद, क्योंकि ल्यूक शो वाज नॉट पेनलाइज्ड, इसीलिए मैंने ड्रेसिंग रूम में बेंटानकू को किस भी किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड 1-1। अब माइकल कैरिक फिर से दबाव में, प्रेशर में आ गया है। बाकी मैचों के नतीजे इस प्रकार हैं। कल के अर्ली किक ऑफ में डिफेंडिंग चैंपियन आर्सेनल ने लीड्स यूनाइटेड को 2-1 से परास्त किया, हालांकि वो 1-0 से हार रहा था। सेकंड हाफ के 55वें मिनट पर जस्टिन ने लीड्स को आगे किया, फिर 62वें पर कालिया फ्योरी का इक्वलाइजर, और 70वें मिनट पर ब्रूनो गिमारेस का एक सुंदर गोल। आर्सेनल 2 लीड्स यूनाइटेड 1, एस्टन विला 2 ब्रेंटफोर्ड 2। चेल्सी ने अपने स्टैमफोर्ड ब्रिज में बोर्नमुथ को 5-1 से पछाड़ा। जॉर्डन एंडरसन का एक डबल खेल के दूसरे और 70वें मिनट पर मोगन रोजर्स ने भी एक गोल स्कोर किया, जबकि हुआओ पेड्रो का एक डबल रहा। इस मैच में मोजेस काइसेडो और जॉर्डन एंडरसन जोड़ी पहली बार मिडफील्ड संभाल रही थी, एंड दे वर रॉक सॉलिड। चेल्सी 5-1। इप्सविच टाउन ने फुलहाम को 2-1 से हराया। संडरलैंड 0 ब्राइटन 2। ब्राइटन की विजय यात्रा, ये सीरीज जारी है, 2-0 से एवे जाकर डेकूप और हाइडाम का एक गोल, हालांकि स्ट्रोक को खेल के 57वें मिनट पर ही रेड कार्ड मिला। सो 10 खिलाड़ियों के साथ भी ब्राइटन ने एवे जाकर संडरलैंड को 2-0 से हराया। और आखिरी मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड 1-1। आज इसी प्रीमियर लीग में तीन मैच खेले जाएंगे। सबसे पहले शाम 5 बजे क्रिस्टल पैलेस वर्सेस नॉटिंगहम फॉरेस्ट, उसी समय हल सिटी खेलेगी एवर्टन के विरुद्ध, और रात 7:30 बजे भूलेगा नहीं, इट्स गोइंग टू बी लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, अंडोनी इराउला वर्सेस एंजो मारेस्का। आरोपों के साए में है मैनचेस्टर सिटी और साया बनकर लिवरपूल उनका पीछा करेगा। फिलहाल मैन सिटी पहले स्थान पर है 15 अंक लिए 5 मैचों में 5 विक्ट्रीज, जबकि लिवरपूल के पास है 9 अंक। लिवरपूल 7वें स्थान पर है। आज उलटफेर हो सकता है एनफील्ड में रात 7:30 बजे। हेड टू हेड मैनचेस्टर सिटी ने पिछले 3 मुलाकातों में लिवरपूल को तोड़ा है। सबसे पहले अप्रैल में 4-0 से, फरवरी में 1-2 से उसकी जीत हुई थी, और 9 नवंबर 2025 को मैन सिटी ने लिवरपूल को 3-0 से हराया था। सो एडवांटेज मैनचेस्टर सिटी आज रात 7:30 बजे। बता दें कि फुटबॉल में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सस्पेंड किया गया है इंटरनेशनल कैंप छोड़ने के कारण। पोर्टुगीज फुटबॉल फेडरेशन ने CR7 को अल्पकाल के लिए सस्पेंड किया है, क्योंकि उसने बिना कहे
ये कैंप वो छोड़कर

0: चला गया था सो और भी गुस्से में आ गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बाकी नतीजे इस प्रकार हैं। सबसे पहले स्पेन के लालीगा में कल बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों की जीत हुई। एफसी बार्सिलोना ने अपने नुको में गेटाफे को 3-0 से हराया। एंटोनी गार्डन का पहला गोल एफसी बार्सिलोना के लिए खेल के दूसरे मिनट पर ही। गैब्रियल रेजुस ने भी एक गोल स्कोर किया और जुल कुंडे का तीसरा गोल। बार्सिलोना 3 गेटाफे 0। रियल मैड्रिड ने केवल 1-0 से विलारियल को हराया। यान जोमांडे ऑन टारगेट खेल के 62वें मिनट पर। विनीशियस जूनियर को 72वें मिनट पर रेड कार्ड भी मिला। फिर भी रियल मैड्रिड 1-0 से जीत गया। अलावेस 1 एथलेटिको मैड्रिड 2 जबकि रेयो वालेकानो वर्सेस एथलेटिक वाला मैच सस्पेंड कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। जर्मनी के बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख ने ऑक्सबर्ग के साथ मैच ड्रॉ किया 2-2। हैरी केन ने गोल स्कोर तो नहीं किया लेकिन दोनों ही असिस्ट उसी ने किए, साइबारी और ब्राउन को। सो इट्स ऑक्सबर्ग 2 बायर्न म्यूनिख 2 होफाइनहाइम 2 हैमबर्ग एसवी 3 माइंस 3 बायर लेवरकुसन 4 पाडेबोर्न 0 स्टुटगार्ट 2 यूनियन बर्लिन 1 एल्वर्सबर्ग 0 और आरबी लाइप्ज़िग ने फ्रैंकफर्ट को 6-0 से पछाड़ा। इसमें एनकुनकू की एक शानदार हैट्रिक रही। इटली के सीरी आ में इंटर मिलान 3 पामा 0। कन्हानोग्लू की पेनाल्टी। मार्किस चुराम आल्सो ऑन टारगेट। नापोली भी 3 फ्रोजिनोने 0। नापोली की ओर से केविन डेब्रून का एक डबल। जेनोवा ने फिरंचिना को 2-1 से हराया। तो फ्रांस के लीग अ में डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सैं जर्मेन धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ रही है। कल पार्क दे प्रिंस में उसने ले मंस को 3-1 से परास्त किया। लुकास बेराल्डो की पेनाल्टी के बाद कागात्सेक्लिया और अक्लियुशे ऑन टारगेट फॉर पेरिस सैं जर्मेन। मोनाको ने मैच ड्रॉ किया 2-2 टूलूज के साथ। लोरियन 1 पेरिस एफसी 0। ब्रेस्ट ने अंजे को 5-1 से हराया और लिल 1 ले हावर 0। क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा। फिलहाल इन दोनों के बीच सीरीज 1-1 की बराबरी पे है और आज ही पाकिस्तान खेलेगा श्रीलंका के विरुद्ध एक और टी20 मुकाबले में। टेनिस में कार्लोस अल्काराज, कैस्पर रूड, ओजे अलियासिमे, डैनियल मेडवेदेव, आर्चर फिस आदि शंघाई ओपन के लास्ट 32 राउंड में पहुंच गए हैं। तो फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप की सिंगापुर ग्रां प्री में मैक्स वेरस्टैपेन गत सप्ताह की ही तरह आज भी पोल पोजीशन से ये रेस शुरू करेगा। हालांकि रेस लीडर किमी एंटोनेली उससे बहुत आगे हैं, फिर भी वेरस्टैपेन इज बिल्डिंग सम मोमेंटम। वो पांचवें स्थान पे है विद 196 अंक लिए। एंटोनेली के पास 325 अंक है, वो टॉप पोजिशन पे है। मॉरिशस में क्षेत्रीय स्तर पर पेनमानियों ओलंपिक वेटरन कप के अंतर्गत आज 2 मैच रखे गए हैं। शाम दोपहर 3 बजे पोर्टलुई वेटरन का मुकाबला मैड्रिड वेटरन से है, तो शाम 5 बजे वेटरन सावान खेलेंगे वेटरन रोजबेल के विरुद्ध। रोशनोआ स्पोर्ट्स क्लब दुदला बीमा सुवेनिया कप में आज शाम फ्लैक एस्पोर का मुकाबला सिलेक्शन प्लेन दे रोश से है, तो एसोसिएशन जेनेस स्पोर्टिव कारोलिन दिवाली कप में क्यूपिप सेजेम मिल वर्सेस लायन एफसी कारोलिन, ये मैच पेची बुआ के मैदान में खेला जाएगा आज शाम। और नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, आज रात 7:30 बजे भूलेगा नहीं। इट्स लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: Thank you so much, Vikashji, and shubh din aapko bhi.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.
2: RM2
4: Radio Musty.
2: Feel the Musty.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: Chillax with Radio Musty. माँ दुर्गा हम सब पर अपनी कृपा बरसाती रहे। हम यह विश करते हैं पायस नवरात्रि सभी को, हैप्पी नवरात्रि, शुभ नवरात्रि सभी को हम होश करते हैं। चलिए तो रिलैक्स कंटिन्यूज और अब समय है थोड़ी सी संडे वाली बात करने का। मंडे से सैटरडे तक हम सब की अपनी अपनी रेस चलती रहती है, कभी काम की टेंशन, कभी घर की जिम्मेदारी, कभी अपॉइंटमेंट्स, कभी डेडलाइंस, और फिर आता है संडे जो कहता है जरा तो रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और खुद को भी थोड़ा समय तो दो। लेकिन संडे का असली मजा तब है जब हम हर पल को एंजॉय करें। अगर आज घर पर है तो फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट का प्लान बना लीजिए, अगर बाहर जाना है तो थोड़ी आउटिंग हो जाए, और अगर बस आराम करना है तो अपने फेवरेट गाने सुनते हुए आप रिलैक्स कीजिए, चिलैक्स कीजिए। आज नवरात्रि का पहला दिन भी है तो क्यों ना अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड के साथ करें। उन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करें जो हमारे पास है, उन लोगों को याद करें जो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, और उन रिश्तों की कदर करें जो हमें मुश्किल समय में संभालते हैं। और एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि खुश रहने के लिए ज़िंदगी का परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी परफेक्ट दिन में भी परफेक्ट मोमेंट्स मिल जाते हैं, और ये छोटे छोटे मोमेंट्स से ही मिलते हैं। हो सकता है कि आज आपकी चाय थोड़ी ठंडी हो जाए, ब्रेकफास्ट बनाते हुए कुछ गड़बड़ हो जाए, या कोई प्लान लास्ट मिनट कैंसिल हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका पूरा दिन खराब हो गया। थोड़ा हंस लीजिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। आखिर संडे है स्ट्रेस लेने के लिए नहीं, स्ट्रेस को थोड़ा ब्रेक देने के लिए आज का दिन है। और इस खूबसूरत नवरात्रि पर माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि हम सबको हिम्मत मिले, अच्छे फैसले लेने की समझ मिले, और हर दिन किसी न किसी वजह से मुस्कुराने का मौका मिले। तो अपनी स्माइल को आप ऑन रखिए, अपनी पॉजिटिविटी को हाई रखिए, और रेडियो मस्ती को अपना म्यूजिकल कंपेनियन बना कर रखिए। मैं हूँ आपकी अपनी ही रिया, एंड आप सुन रहे हैं चिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर।
1: Chillax with Radio Musty, your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty,
1: your number one Bollywood radio station.
2: चलिए इसी गाने के साथ इस टाइम टू से बाय टू ऑल ऑफ यू. आशा करती हूँ यू हैड अ गुड टाइम दिस म्यूजिकल जर्नी और आपको विश करती जाती हूँ शुभ नवरात्रि. बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को एंड हैव अ वंडरफुल संडे अहेड.

8 बजे के भोजपुरी समाचार में सब कोई की स्वागत कर जाता है, सब कोई की नमस्ते आप प्रणाम। सबसे आगे देश की स्थिति के बारे में बोलब जा मौसम में पानी के संकट जुनबा ऊ लगातार गंभीर होते जाता। माओवाकुआ जलाशय में पानी के जुन स्तर बा 36% से नीचे आ

कल बाटे मोटका पानी बरसे में ओकर शुरू होई में अभी 2 महीना के बखत बाटे। ऐसन में पानी के कमी के दूर करे खातिर बहुत हाली नवा उपाय तलाशल जाता। मॉरिशस पर का मॉरिशस अपन पड़ोसी देश के अनुभव से कुछ सीखे सकी। सेशल्स में समुंदर के पानी के पिए के योग्य बनाए के व्यवस्था करल जाता और उकरा मजबूत करा जाता। हुए परिरेनियन में ये सप्ताह के मेगन परियोजना पर आदमी के राय की प्रक्रिया शुरू हो कल बाटे, यानी कि उलो के राय ले के प्रक्रिया शुरू हो बाटे, जबकि रोड्रिक्स में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर ध्यान देवल जाता। दूसरा समाचार में पानी के टंकी यानी कि जो टैंक बा और लापोम पाते वो किने खातिर 15,000 रुपया के जो सरकारी सहायता मिले के बा ओकर खातिर पंजीकरण एंजिस्ट्रेमेंट काल लेंदी 12 अक्टूबर के शुरू हुआ था। जे तोहर नाम ए अक्षय यानी कि तोहर जो सियनो बाटे वो ए से एम ले होई त तोहरा काल लेंदी से बुध ले अपन एंजिस्ट्रेमेंट करे के परी। आज तो हर सियनो एन आर जेड ले होई त तोहरा बीफे से सुख के बीच जाके अपन पंजीकरण कराए के परी। ये पंजीकरण फजीर 9 बजे से दिन के 3 बजे ले सैंपल के CWA के मुख्यालय या फिर देश में कोनो भी कार्यालय में जाके कराए सकब। एक खातिर राष्ट्रीय पहचान पत्र कौती दौचते CWA के एगो बिल आने के पड़ी। कॉलेव्यू में सुख के सांझ के गोली चलाईला से गंभीर रूप से घायल होल एलोजी टोमा के मामला में घटनाक्रम पर सबकी नजर बनल बाटे। काम से घर आवत बखत ओकर पर गोली चलावल गल। काल सांझ के DPM डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर्याना वोमारी आर खेल मंत्री तथा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 19 के सांसद देवन नागालिंगम उनकर परिवार से भेंट करे गलन और उनकर प्रति एकजुटता और समर्थन व्यक्त करलन। आर्याना वोमारी आदमी से शांति बना के रखे के अपील करत हवन और वो बोलन कि फिलहाल सबसे बड़ा जो प्राथमिकता बाटे वो एलोजी तोमा के स्वास्थ्य बा और उनकर अनुसार सरकार इस मामला पर करीब से नजर रखता। हुए परी खेल मंत्री देवेनांगालिंगम परिवार के सदस्य से उम्मीद बना के रखे के अपील कर ले बा। वो आश्वासन देलन कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में परिवार के संगे खड़ा बा और उनकर हर संभव सहायता देवी। कॉलेविय में गोली लगला से घायल एलोजी तोमा के इलाज खातिर भारत से विशेष डॉक्टर की एगो टीम तुरंत मॉरिशस बुलाई के फैसला लेवल गल। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू के मुताबिक ई मामला में उनकर बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से भयल और वो घोषणा कर ले हवन कि भारत से 4 गो विशेष डॉक्टर ई टीम के संगे कालेंदी के मॉरिशस पहुँचत हवन जा वो लोग एलोजी तोमा के ऑपरेशन करियन जा। आर मॉरिशस सोसाइटी ऑफ ऑथर्स माजा के जो बरीस के आम सभा रहेला वो आज दिमास के 11 अक्टूबर के फजीर बो बासे में कॉलेज जु बों ए पेपेचुअल सुकुआ में लगे होला बाटे। ये सभा आगे 4 अक्टूबर के होई के रहल पर आवश्यक सदस्य के संख्या पूरा नहीं हो रहल उ कारण ओके स्थगित कर देवल गल। माजा के अध्यक्ष जोएल को बोलन कि सभा खातिर 98 सदस्य के उपस्थित होई के आवश्यक है। उ ई भी बोलन कि वार्षिक आम सभा के उद्देश्य संस्था के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य और माजा के पंजीकृत लेखक के बीच विचार के आदान प्रदान के बढ़ावा दे के है। और आज दिमास 11 अक्टूबर से माँ दुर्गा के आराधना के पर्व दुर्गा पूजा शुरू हो बाटे। 9 रात ले चले होला ई पर्व में श्रद्धालु माँ दुर्गा के 9 रूप की पूजा करियन जा। ई में शैलपुत्री से लेके कालरात्रि या सिद्धिदात्री से लेके सब रूप बाटे। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार राक्षस महिषासुर के वध करे खातिर सब देवता अपन शक्ति के एकजुट कर ले रलन जा और देवी शक्ति के रूप में माँ दुर्गा के प्राकट्य हो रहल। माँ दुर्गा के बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक मानल जाला। वो नकारात्मक शक्ति पर विजय पाए होला दिव्य शक्ति के रूप हवा 9 दिन ले चले होला। ई दुर्गोत्सव कई गो सदी पुराना परंपरा के गो हिस्सा है। एक अंतर्गत कलश स्थापना करल जाए
आर कई गो धार्मिक अनुष्ठान

स्नान करल जाए। पूरा वातावरण भक्ति या आध्यात्मिक आस्था से भर गल बाटे। आज के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के पूजा के संगे दुर्गोत्सव के मंगलारंभ होवता। दूसरा देश के समाचार में अमेरिका के दक्षिण हिस्सा में तूफान इया इसाइस भारी तबाही मचैली बाटे।

जेकर में कमती से कमती 15 जना के मौत हो गल बाटे या 309 जना के घाव लगल। सऊदी अधिकारी हमला खातिर यमन के हुती विद्रोही लोग के जिम्मेदार ठहरावत हुआ जा। तो यह संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भइल। ध्यान से साथ देला ओका खातिर धन्यवाद। अभी 8:06

0: बिल्कुल दोस्तों, इट्स योर टाइमलेस स्टार का टाइम। यस, सुबह के 8:11, बहुत सारी गुड विशेस हमारे सभी लिसनर्स को जिस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, नवरात्रि की शुभकामनाएं लेकर आए हैं। और अब तो ये 10 दिन होने वाले हैं वेरी खास एंड वेरी स्पेशल। सो मैं हूं परी आपके साथ, इट्स टाइम फॉर योर टाइमलेस तड़का, जहां पर टाइमलेस क्लासिक्स कर रहे हैं आपका इंतजार ऑन दिस संडे मॉर्निंग। आप हमारा साथ दे रहे हैं दोस्तों, इट्स 11th of October एंड यस, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, ही इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे आज। सो उनके तमाम फैंस की ओर से उन्हें विश कर रहे हैं वेरी हैप्पी बर्थडे। दिन है खास, शुरुआत हुई है खास, और साथ निभा रहे हैं हमारे सभी खास लिसनर्स। आपकी मॉर्निंग को खास बनाने हम तो है हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती। सो मॉर्निंग टाइम है, संडे का दिन है, और आज के लिए जानते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
2: On est tous winners.
3: आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का बहाव है। पूर्व से आने वाले बादल सुबह में और दोपहर बाद में हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान किया जाता है कि सुबह के समय और दोपहर बाद में विशेषकर पूर्व दक्षिण सेट प्रांत पर बादल घिराएंगे और बारिश होगी। कभी कभार बारिश तेज होगी और बादल के गरजने की भी संभावना है। रात के दौरान विशेषकर पूर्व दक्षिण और सेंट्र प्रांत पर रह रहकर बारिश होती रहेगी। हवा सुबह के समय पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से हल्की बहेगी और दिन में रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर के जुआर उठेंगे। तापमान, अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। चंद जरूरी सलाह, जब बादल गरजे तो जनता को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित जगह पर रहें और खुली जगहों पर तथा पेड़ों के नीचे न जाएं। आज सूर्योदय सुबह 5:43 पर और सूर्यास्त शाम 6:10 पर।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti. Music all day long.

0: बिल्कुल दोस्तों, यही तो मोहब्बत है और ये मोहब्बत आप तक पहुंचाने हम आते हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती परी का साथ। इट्स टाइम फॉर योर टाइमलेस तड़का और जैसे हमने कहा कि आज की शुरुआत एकदम खास एकदम प्योर नवरात्रि की शुरुआत हुई है आज से और लेकर आए हैं हमारे सभी लिसनर्स के लिए बहुत सारी गुड विशेस।
1: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: Express Tadka.
1: RM2.
2: So well, दोस्तों यहाँ पर गुड ही गुड मॉर्निंग है और इट्स टाइम फॉर योर टाइमलेस तड़का संडे की खूबसूरत सी सुबह और हवा में आज त्योहार की मिठास भी है दिल में माँ दुर्गा के लिए श्रद्धा और साथ में वो एवरग्रीन सॉन्ग्स जो हमेशा दिल को छू जाते हैं तो चलिए आपकी गुड विशेष तो आपने पहुंचा दी है ऑन 5499 1294 सो थैंक यू सो मच ट्यून इन किया है आपने आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ करिश्मा साथ दे रही हैं आप सो अगला गाना इसे हम डेडिकेट करेंगे फॉर यू एंड विशिंग यू वंडरफुल मॉर्निंग प्रीतम जी आ गए हैं आप भी हमारा साथ निभाने ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती प्रीतम बेटू फ्रॉम पीटो और हमारा साथ दे रहे हैं गुड मॉर्निंग विशेस फॉर योर वाइफ वर्षा आज वो काम कर रही हैं और नॉट टू वरी उनकी इस मॉर्निंग को हम बनाएंगे खास एंड स्पेशल और ऑफ कोर्स आपकी मॉर्निंग भी सजाएंगे खूबसूरत गीतों के साथ साथ देने के लिए शुक्रिया और रेडियो मस्ती के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया नवरात्रि की शुभकामनाएं एंड स्पेशल विशेस ये है हमारे डियर लिसनर की ओर से आपने अपना नाम नहीं बताया लेकिन थैंक यू सो मच फॉर द गुड विशेस अनीता जी फ्लक्स से कहती है जय माता दी नवरात्रि की शुभकामनाएं टू ऑल द लिसनर्स एंड हैप्पी बर्थडे टू बिग बी बिल्कुल जी आपकी विशेस तो हमने पहुंचा दी है लिसनर्स तक और चलिए यहाँ पर मॉर्निंग मॉर्निंग में अपनी शुभकामनाओं के साथ आई है जाना जी ऑल द वे फ्रॉम फ्लक्स इस वक्त आप घर पर है और तैयारी कर रही है दुर्गा माँ की पूजा प्रार्थना के लिए गाना आप डेडिकेट करना चाहती हैं सभी बेटियों के नाम रीमा जनिता श्रेष्ठा अंशनी सिल्विया और साथ दे रही हैं आपका पूरा परिवार यूवी कृषि सिवसरण परिवार फ्लैग से साथ देने के लिए शुक्रिया और रेडियो मस्ती के साथ कनेक्टेड हैं आप सो आई एम श्योर आपकी इस मॉर्निंग को हम कुछ खास और स्पेशल जरूर बना सकें और आप भी अपना साथ हम तक पहुँचाते रहे फ्रॉम नॉर्थ टू शालिनी त्रिदुर से हमारा साथ दे रहे हैं और दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं लेकर आए हैं आप भी शुभकामनाओं के साथ यहाँ पर गुड म्यूजिक भी शामिल हो रहा है नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस आप हम तक पहुंचा सकते हैं ऑन 5499 1294 इट्स योर टाइमलेस तड़का एंड आल्सो सेलिब्रेटिंग नवरात्रि सो शुभकामनाएं हमारे सभी लिसनर्स के नाम
3: बराबर कोई नहीं यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि

0: participants. Allô, rendez-vous les 31 octobre. SBM Trail, parade ça!
1: RM2 Radio Musty. Timeless Tadka.
2: RM2
1: Timeless Tadka.
3: एंड वेल इसी गाने के साथ विशिंग बिग बी अ वेरी हैप्पी बर्थडे उन्हीं की फिल्म अदालत का ये गाना उनके तमाम फैंस के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं आरती विशाल सलिल प्रियंका लीना ऋषि राकेश रूपा चांद हेमा हरीश एशले आशनी पूर्णिमा और सभी फ्रेंड्स जो इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं चलिए आपके लिए भी गुडी गुड विशेज बिग बिग फैन ऑफ बिग बी एंड ऑफकोर्स आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे और आपकी स्वीट विशेज आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर फेरी का साथ एंड दैट्स योर टाइमलेस तड़का ऑन द वेव्स ऑफ आरएम2 रेडियो मस्ती

यह नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: North, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one beloved station.
1: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
2: Milo, libère ta force.
1: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: सेलिब्रेटिंग नवरात्रि दोस्तों, और नवरात्रि का पर्व हमें याद दिलाता है कि हर मुश्किल के सामने हिम्मत, हर अंधेरे के सामने उम्मीद और हर चुनौती के सामने विश्वास की ताकत होती है। माँ दुर्गा के नौ रूप, नारी शक्ति के नौ रंग और भक्ति के अनेक एहसास। माँ आपके घर में खुशियों का वास करे, आपके मन में शांति दे और आपके हर नेक इरादे को मजबूती दे। और याद रखिए कि जब दिल में श्रद्धा और मन में विश्वास हो तो जिंदगी का हर कदम एक नई उम्मीद बन सकता है।
1: Le sport c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
2: Milo, libère ta force.
1: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
5: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: टाइमलेस तड़का
1: RM2
2: यस दोस्तों दैट्स योर टाइमलेस तड़का और आप हमारा साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती मैं हूं परी आपके साथ दिन के 11 बजे तक आपकी इस मॉर्निंग को हम सजाने वाले हैं विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और ब्यूटीफुल मॉर्निंग जब होती है तो फिर पूरा दिन भी ऐसे ही अच्छे से बीतता है और आज की शुरुआत तो हुई है वेरी पायस सेलिब्रेटिंग नवरात्रि और शुभकामनाएं हमारे सभी लिसनर्स की ओर से इस वक्त रामदयाल दत्तमन जदू सीचन लालमन दयाल निलंबर गोकुल सिंह राम प्रताप भगवंत सीतोहल देव एंड रामरोल परिवार साथ दे रहे हैं आरती विशाल अवनीश गुड मॉर्निंग आप सभी को और गुड विशेज आप सभी के नाम श्याम देवीचंद ललिता जीतन साथ दे रहे हैं और आज अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन दिस ब्लेस्ड मॉर्निंग और उनके लिए स्पेशल विशेज कमिंग फ्रॉम बेटा कुमार देवीचंद ऑफ पेवेल लव यू सो मच डैड श्याम एंड मॉम ललिता आपके लिए प्यार और स्पेशल विशेज और चलिए दोस्तों इसी ट्रैक के साथ बढ़ रहे हैं आपके समाचारों की ओर

और श्याम ललिता जी यस इट्स योर स्पेशल डे सो गुड विशेस आपके नाम यहां पर आरती है पंपले मोसे से डेडिकेटिंग गाना फॉर हबी शक्ति किड्स आशी आशीष और आपकी मामा के नाम जो सुरनाम रहते हैं चलिए सभी परिवार जो साथ दे रहे हैं टाइमलेस तड़का ऑन द वेव्स ऑफ आरएमटी रेडियो मस्ती समाचारों के बाद लौट कर आएंगे विद सम गुड म्यूजिक तरीका साथ रहेगा और आप भी कनेक्टेड हैं मैसेजेस डेडिकेशंस का इंतजार ऑन 5499 1294

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परीक्षताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आपसे बिलों का स्वागत है। आज रविवार 11 अक्टूबर से माँ दुर्गा की आराधना का पर्व दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है। नवरात्रों तक चलने वाले इस पर्व में श्रद्धालु माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करते हैं। इनमें शैलपुत्री से लेकर कालरात्रि और सिद्धिदात्री तक के रूप शामिल हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया और देवी शक्ति के रूप में मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। मां दुर्गा को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। वे नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाने वाली दिव्य शक्ति का स्वरूप है। नौ दिनों तक चलने वाली ये दुर्गोत्सव सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। इसके अंतर्गत कलश स्थापना सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। पूरा वातावरण भक्ति

0: भक्ति और आध्यात्मिक आस्था से भर जाता है। और आज के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ दुर्गोत्सव का मंगलारंभ हो रहा है। अन्य खबरों में, मॉरिशस में बिजली बचाने के लिए एक नया अभियान कुछ दिनों में आधिकारिक रूप से शुरू किया जाएगा। ये अभियान अप्रैल 2027 तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य गर्मियों में बिजली कटौती से बचना और बिजली की सबसे अधिक मांग वाले समय में खपत को नियंत्रित करना है। गर्मियों के दौरान एयर कंडीशन और पंखों का इस्तेमाल बढ़ने से बिजली की मांग में भी तेजी आ जाती है। सरकार ने ये पहल ऐसे समय शुरू करने का फैसला लिया है जब जलवायु परिवर्तन और मध्य पूर्व में तेल की कीमतों को लेकर तनाव के बीच देश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। इस अभियान के तहत सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जाएगा। मुख्य रूप से शाम के व्यस्त समय में बिजली की खपत कम करने पर जोर दिया जाएगा ताकि गर्मियों के दौरान बिजली की कमी के किसी भी खतरे से बचा जा सके। और मॉरिशस में सूखे की स्थिति को देखते हुए ग्लेनपॉक सुन्नी मस्जिद आज रविवार को बारिश के लिए विशेष प्रार्थना आयोजित करेगी। सवालात इस्तिका नाम की ये प्रार्थना बहुवाकवा में सुबह की नमाज फज्र के बाद हुई। मस्जिद के सदस्य और इमाम फादिल नबी बुकस ने इसकी जानकारी दी। ये पहल ऐसे समय हो रही है जब बहुवाकवा जलाशय में पानी का स्तर घटकर उसकी कुल क्षमता का केवल 35.7% रह गया है और बारिश के लिए प्रार्थना करने के साथ साथ लोगों से पानी का सोच समझ कर और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की भी अपील की जा रही है। ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि करीब आने के साथ साथ टैक्स पेयरों पर दबाव बढ़ रहा है। रिटर्न जमा करने की अंतिम समय सीमा गुरुवार 15 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक है। इसके बाद रिटर्न जमा करने पर जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी यानी एमआरए के अनुसार 9 अक्टूबर तक 178,000 से अधिक टैक्स रिटर्न जमा किए जा चुके थे। जिन करदाताओं को रिटर्न जमा करने में मदद की ज़रूरत है उनके लिए एमआरए आज रविवार को विशेष रूप से सेवा उपलब्ध करा रही है। ये सेवा सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में तूफान इसाइस के असर से कई राज्यों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। बिजली आपूर्ति पर नज़र रखने वाली वेबसाइट poweroutage.com के अनुसार नॉर्थ कैरोलिना में 12,400 से अधिक घरों की बिजली गुल है। हालांकि तूफान के नॉर्थ कैरोलिना से होकर गुजरने की आशंका नहीं है और राज्य के गवर्नर रॉन डिसेंटिस के अनुसार कुछ काउंटियों में 80% से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली चली गई है। उन्होंने बताया कि बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए कर्मचारियों ने कल रात से ही काम शुरू कर दिया है। अलाबामा में भी 2,51,000 से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली गुल है। उधर जॉर्जिया में 91,000 से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति बाधित है। जॉर्जिया पावर कंपनी के अनुसार कर्मचारी सुरक्षित इलाकों में पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं और बिजली बहाल करने में जुटे हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। साथ रहे बढ़ते हम शोक समाचार की ओर। शोक समाचार सुनिए। एनएचडीसी ग्रांबोआ में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री वसुदेव सिबालक जिन्हें सुदील के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर ग्रांबोआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांबोआ की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play and NBC.mu.
2: Timeless Tadka.
3: RM2.
2: Timeless Tadka.

0: 9:10 और वेलकम कर रहे हैं आपका इन दिस आवर संडे मॉर्निंग एंड सेलिब्रेटिंग नवरात्रि. नवरात्रि की शुभ विशेष हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. सो वेल फ्रेंड्स, टाइमलेस तड़का है और कुछ टाइमलेस क्लासिक्स आपके लिए लेकर आए हैं. नवरात्रि की शुभकामनाएं भी हैं और बिग बी आज अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि बस आज सेलिब्रेशंस ही सेलिब्रेशंस. और नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ ये स्पेशल विशेज हमारे सभी लिसनर्स, यस हमारे सभी डियर फ्रेंड्स के नाम जो इस वक्त साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती.
1: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे. आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं. MBC wishes you all a pious नवरात्रि.

तो यही विशेस लेकर आए हैं कि माता रानी सबकी लाइफ में खुशियां भरे। पावन कदमों के साथ आज हमारी जिंदगी में वो आ रहे हैं और हमें पता है कि ये 10 दिन होने वाले हैं वेरी खास वेरी स्पेशल। सभी लिसनर्स जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, चलिए दोस्तों आपके मैसेजेस डेडिकेशंस 54991294 पर और नवरात्रि की गुड विशेस लेकर आए हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: एक्सप्रेस तड़का
1: RM2
2: तो सुबह के 9:16 दोस्तों, अभी अभी आपकी मॉर्निंग की शुरुआत हुई है और शुरुआत भी कैसी हुई है, यानी कि एकदम मस्त सी, जहाँ पर संडे की जो रौनक है वो तो है, नवरात्रि का एहसास भी है। ना ऑफिस पहुंचने की जल्दी, ना अलार्म की आवाज़ से भागने की ज़रूरत, बस थोड़ा आराम अपनों का साथ और उसके साथ अपनी फेवरेट मॉर्निंग सॉन्ग्स को आप एंजॉय करते हुए अपने संडे को वेलकम कर रहे हैं, अपने संडे को आप इतने प्यार से गले लगा रहे हैं। तो बस आज संडे के साथ नवरात्रि की रौनक भी है, घर में पूजा की तैयारी हो, ब्रेकफास्ट की खुशबू हो, या फिर बस आराम से बैठकर चाय की चुस्कियां एंजॉय करना हो, संडे तो लेकर आता है हर किसी के लिए कुछ खास एंड स्पेशल। और कहते हैं ना दोस्तों,

की लाइफ सिर्फ मंडे टू सैटरडे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने का नाम नहीं होता, संडे को खुलकर जीना भी तो जिंदगी का हिस्सा होता है। और आपके इस संडे को हम और भी स्पेशल बना रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम टाइमलेस तड़का के साथ। आपका साथ आपका प्यार बना हुआ है ऑन 5499-1294। श्वेता हुकुम साथ दे रही है बोना काय से और विश करना चाहती है ब्रदर विकी बिहारी को अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप है कुंकुमा से एंड विशेज है फ्रॉम योर सिस्टर्स, आपके ब्रदर इन लॉ रोशन है, रिधि एंड सोनाक्षी, आपके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज और बहुत सारा स्पेशल स्पेशल दुलार दैट्स कमिंग फ्रॉम योर स्वीट सिस्टर श्वेता हुकुम। साथ ही यहाँ पर मॉर्निंग विशेज हम तक पहुंचा रहे हैं सीतोहल परिवार, आपको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं एंड हैव अ वंडरफुल वंडरफुल मॉर्निंग। कहते हैं यहाँ पर कि हकीकत कहो तो उनको ख्वाब लगता है, शिकायत करो तो उनको मजाक लगता है, कितनी शिद्दत से उन्हें याद करते हैं हम और एक वो है जिन्हें ये सब इत्तेफाक लगता है। वेल दैट्स कमिंग फ्रॉम आकाश चेतन मंसूर का सुबह सुबह शायराना अंदाज लेकर आए हैं आप ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती। डेडिकेट कर रहे हैं गाना फॉर मंसूर परिवार, सो थैंक यू सो मच आकाश। गाना होगा आपके स्वीट परिवार के नाम और बहुत ही प्यार से गाने डेडिकेट करेंगे आप सभी के लिए। सीता गीता बोलूराम फ्रॉम शातु बनारस हमारा साथ दे रहे हैं आप भी, सो नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू। नवरात्रि की शुभकामनाएं टू स्पेशल फैमिली, यहाँ पर मॉम इंदिरा है, डैड आनंद झरी, भाई विशाल और लिटिल शान। निव्या मिल त्रियोली से साथ दे रहे हैं रेशमा और आपने भेजा है प्यार आपके पूरे परिवार के नाम, सो गुड विशेज अगले गीत के साथ। ज्योति जी साथ दे रही हैं आप भी शातु बनारस से, डेडिकेटिंग गाना फॉर आशनी रेखा सुरेखा सभी मदर परिवार के नाम, उनके नाम भी स्पेशल विशेज। फ्रॉम नाव टू शालिनी ऑफ टू द दोस और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं लेकर आए हैं आप उनके नाम। एंड फ्रॉम बकवा वी हैव मिस्टर गोविंद रघुनंदन हमारा साथ दे रहे हैं आप, सो गुड मॉर्निंग विशेज आपके नाम भी। फॉर योर ब्यूटिफुल वाइफ वेदा, फॉर बेटी दीक्षा, फॉर बेटे युधीश एंड योगेश, सभी रघुनंदन परिवार जो इस वक्त साथ दे रहे हैं नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी के लिए। और साथ ही साथ लेकर आए हैं टाइमलेस तड़का, यस आपके लिए कुछ टाइमलेस क्लासिक्स राइट हियर ऑन द वेव्स ऑफ आरएम2 रेडियो मस्ती। तो चलिए दोस्तों एक और गाना यहाँ पर शामिल हो रहा है आपकी संडे मॉर्निंग को खास और स्पेशल बनाने के लिए, और मॉर्निंग को अगर और भी ब्यूटीफुल बनाना है तो जरूरत होगी हमें आपके स्वीट मैसेजेस डेडिकेशंस की। मैं हूँ परी आपके साथ दिन के 11 बजे तक, मैसेजेस डेडिकेशंस का इंतजार 5499-1294 पर। खूबसूरत गीतों के साथ आपके दिल को लुभाए रखेंगे, आपके मॉर्निंग को स्पेशल बनाएंगे। एंजॉय दिस वन।

एंड इसी गाने के साथ विशिंग सिस्टर देविना और उनकी बेटी दक्षा फ्लोरियाल अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आज मदर डॉटर साथ में अपना जन्मदिन मना रही हैं और आपके लिए स्पेशल स्पेशल विशेज. विशिंग यू लोड्स ऑफ सक्सेस लव एंड प्रोस्पेरिटी. दैट्स कमिंग फ्रॉम जयराज बुलाकी पचित्रव्य से लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल विशेज ऑन योर स्पेशल डे. तो चलिए दोस्तों ऐसी ही आपकी शुभकामनाएं आपका प्यार और आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस फॉर योर लव्ड वंस रहेगा इंतजार 5499-1294 पर और आपकी इस मॉर्निंग को आपके इन मैसेजेस को हम सजा रहे हैं विद सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स. टाइमलेस तड़का ऑन द वेव्स ऑफ आरएम2 रेडियो मस्ती.

0: तड़का
1: और RM2
0: टाइमलेस तड़का
2: टाइमलेस तड़का है एंड आज बिग बी अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं सो हाउ कैन वी नॉट प्ले दिस क्लासिक Goes out to all the fans of Amitabh Bachchan. इस वक्त हमारा साथ दे रहे सभी listeners. Timeless तड़का लेकर आए हैं आपके लिए on Radio Masti. परी का साथ है और साथ ही यहाँ पर हमारे listeners भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. निकित जियाना, रियाना, भोला, गुरुदेव, सीतोहल, बाहुज, पंपलुमोसिस से साथ दे रहे हैं आप. Good morning. Enjoy this one.

और यहाँ पर किशन जी ट्रोले से हमारा साथ दे रहे हैं, लेकर आए हैं नवरात्रि की शुभकामनाएं और साथ ही कह रहे हैं कि हमारे अंकल जो मुंबई में रहते हैं आज उनका भी बर्थडे है, ऑफ कोर्स वन एंड ओनली बिग बी जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी गुड विशेज आपकी ओर से किशन जी ट्रोले से हमारा साथ दे रहे हैं। सो वार्म वेलकम आपका ऑन द वेव्स ऑफ आरएम टू रेडियो मस्ती, साथ देने के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज गुड विशेज के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। Radio.

0: Express Tadka.
1: RM2.
2: So that's your timeless तड़का दोस्तों, और जैसे हमने कहा कि आज संडे मॉर्निंग और संडे के साथ साथ नवरात्रि सेलिब्रेशंस भी शुरू हुए हैं, यानी कि आज तो माँ आ रही है और माँ जब आती है तो वैस लेकर आती है बहुत सारी खुशियाँ सभी के लिए, अपने ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद के साथ सभी के जीवन में खुशियाँ भर देती हैं और यही विशेष हम आप तक पहुँचा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती, जहाँ पर आपके लिए स्वीट स्वीट विशेष लेकर आए हैं, यानी कि आपकी अपनों की ओर से जो प्यार है यहाँ पहुँच रहा है उसे हम आप तक पहुँचा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्रैक है इसे हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर मेधा, मनीष, श्रेया, आर्यन, नील, शीतल, विकी, प्रतिना, नितिन, संगीता, सादिरे हैं मोटा ब्लॉन्ड से, गाना होगा आपके नाम। और कहते हैं लास्ट 8th of October इट वॉज योर 63rd बर्थडे, और बिल्कुल यहाँ पर साधना जी साथ दे रही हैं आप कौन दे मास से, एंड गुड विशेज बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विशेज टू यू, और उम्मीद करते हैं दैट अक्टूबर का महीना और ये जो बचा हुआ साल है आपके लिए बहुत सारे

0: खुशियां लेकर आए और जीवन में जो भी आपके सपने थे जो भी आपकी विशेस थी जो भी आपकी कामनाएं हैं वो पूरी हो जाए। किशन जी ट्रियोली से थैंक यू सो मच। बस ऐसी गुड विशेस हम तक पहुंचाते रहिए एंड कीप एंजॉयिंग द वंडरफुल ट्रैक्स ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। और दावसेन लाल माची से आप भी आए हैं अपनी गुड विशेस के साथ, तो चलिए साथ देने के लिए शुक्रिया। कविता जी गुड मॉर्निंग विशेस आप भी हम तक पहुंचा रही हैं और कहती हैं एंजॉय कर रहे हैं टाइमलेस तड़का। तो एक और टाइमलेस क्लासिक यहाँ पर शामिल होता हुआ हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप। मैं हूं परी, दिन के 11 बजे तक ये खूबसूरत गाने इन योर टाइमलेस तड़का साथ दे रहे हैं आप हमारा राइट हियर ऑन
1: आरएम2 रेडियो मस्ती।

यह नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

And well, friends, with this track, हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. लौट कर आएंगे. That's your timeless तड़का on the waves of RM2 Radio मस्ती. परी का साथ है दिन के 11 बजे तक. साथ दे रहे हमारे सभी listeners. Sunday morning, RM2 Radio मस्ती. कुछ beautiful tracks के साथ आपकी इस morning को हम सजा रहे हैं. साथ दीजिए और keep enjoying the best mix of music.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं अशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परिश्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरिशस में पानी का संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। मोहवाक्वा जलाशय में पानी का स्तर 36% से नीचे गिर गया है। बड़ी बारिश होने में अभी 2 महीने का समय है। ऐसे में पानी की कमी दूर करने के लिए जल्द से जल्द नए उपाय तलाशे जा रहे हैं। क्या मॉरिशस अपने पड़ोसी देशों के अनुभवों से सीख सकता है? सेशल्स में समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। वही यूरेनियन में सप्ताह मेगन परियोजना पर लोगों से राय लेने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जबकि रोड्रिक्स में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन क्या ये टेक्निक मॉरिशस की आर्थिक स्थिति और मौजूदा जल वितरण व्यवस्था के अनुकूल है, इस पर सवाल उठाया जा रहा है। और पानी की टंकी और पंप खरीदने के लिए 15,000 रुपये की सरकारी सहायता पाने हेतु पंजीकरण सोमवार 12 अक्टूबर से शुरू होगा, यानी कि कल। उपनाम का पहला अक्षर ए से एम तक होने वाले लोग सोमवार से बुधवार तक पंजीकरण करा सकेंगे। वहीं एन से जेड तक अक्षर से शुरू होने वाले उपनाम के लोग यानी सरनेम के लोग गुरुवार और शुक्रवार को पंजीकरण करा सकेंगे। पंजीकरण सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सैंपल स्थित CWA के मुख्यालय या देश भर में इसके विभिन्न कार्यालयों में किया जा सकेगा। इसके लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र और CWA का पानी का बिल प्रस्तुत करना होगा। कॉलिव्यू में शुक्रवार शाम गोली लगने से गंभीर रूप से घायल एलोजितोमा के मामले में घटनाक्रम पर सबकी नज़र बनी हुई है। काम से घर लौटते समय उन पर गोली चलाई गई थी। कल शाम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आर्याना वामारी और खेल मंत्री तथा निर्वाचन क्षेत्र

19 के सांसद देवेन नागालिंगम उनके परिवार से मुलाकात की उन्होंने और उनके प्रति एकजुटता तथा समर्थन व्यक्त किया। आर्याना वमारी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता इलेजिटोमा का स्वास्थ्य लाभ है। उनके अनुसार सरकार इस मामले पर करीब से नजर रख रही है। वहीं खेल मंत्री देवेन नागालिंगम ने परिवार के सदस्यों से उम्मीद बनाए रखने की अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और उसे हर संभव सहायता प्रदान करेगी। और मॉरिशस सोसाइटी ऑफ ऑथर्स माजा की वार्षिक आम सभा आज रविवार 11 अक्टूबर की सुबह बोबासें स्थित कॉलेज डू बोन ए बे पेपिचुअल सुकुआ में आयोजित हो रही है। ये सभा पहले 4 अक्टूबर को होनी थी लेकिन आवश्यक सदस्यों की संख्या पूरी नहीं होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। माजा की अध्यक्ष जोएल कुरे के अनुसार सभा के लिए 98 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस वार्षिक आम सभा का उद्देश्य संस्था के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्यों और माजा में पंजीकृत लेखकों के बीच विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के दक्षिणी शहर जाबोरिजिया पर रूस ने 5 ग्लाइड बमों से हमला किया है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। शनिवार सुबह आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया। हमले में कम से कम 3200 लोग घायल हुए जबकि कई अन्य लापता हैं और उनके मलबे में दबे होने की आशंका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ज़ापोरिज़्या पर हमले रूस की ओर से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मॉस्को पर प्रतिबंधों में ढील देने के फैसले के जवाब में किया हमला है। इस फैसले के तहत रूस से डीजल आयात में आसानी होगी। ज़ेलेंस्की ने यह भी बताया कि रात के दौरान यूक्रेन के 13 अन्य क्षेत्रों पर भी हमले किए गए। उन्होंने कहा कि दबाव में किसी भी तरह की ढील को रूस लड़ाई जारी रखने की अनुमति के रूप में देखता है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रही बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। लावाली सेंक्वा में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड की बीबी फातमा रामकलावन पैदाशाम दाऊद सिलो और जिन्हें मुनुत के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि इंतकाल कर गई हैं। ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। 67 साल की बीबी फातमा रामकलावन जिन्हें पैदा श्री नाम दाऊद सिलो जिन्हें मुनुत के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज शाम 4 बजे इनके मकान एमराल्ड रोड मुसलमान लावाले सेंक्वा से उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। बहादुर स्ट्रीट यूनियन पार्क में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के जनाब इलियास मोहम्मदी उली जिन्हें अलियास के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके बेटे आलिम उली के मकान यूनियन पार्क से उठाकर दफनाने के लिए वहीं का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। ओडिसी रोड पुचिराफ्रे में 45 साल के 45 ईयर्स ओल्ड के श्री मित्रानंद जंदू जिन्हें कोलुस के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 उनकी बिंता जंदू के घर पुचिराफ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुमारो एट 10:30 AM। शोक में डूबी इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: Seamless Tadka.
1: RM2.
2: सो वेल फ्रेंड्स, 10:10 परफेक्ट टाइम और आई गेस परफेक्ट मॉर्निंग की शुरुआत हुई है बिकॉज आज तो नवरात्रि के साथ आपकी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है. नवरात्रि की शुभकामनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ ये खूबसूरत गीतों के साथ आपकी मॉर्निंग को हम सजा रहे हैं. इट्स टाइम फॉर योर टाइमलेस तड़का और इस आवा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं. इस आवा में आपके लिए बहुत कुछ खास होने वाला है. स्पेशल सेगमेंट्स तो होंगे ही होंगे और साथ ही कुछ गेम्स जहां पर आप जीत सकते हैं शानदार इनाम. सो बस हमारा साथ देते रहिए और साथ निभाते निभाते नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस कर रहे हैं इंतजार 5499-1294 पर.

0: रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: La fin d'année des costés, tu ne parais?
3: Pas juste l'année, et ta dépense aussi.
2: Mais Rogers Capital la même! Tansa, jusqu'à 31 décembre, tout nouveau client côté Rogers Capital pégaye 500 roupies rabais, l'ose de premier mensualité.
3: Financement, et te paye 500 roupies en moins, top net ça.
2: Application facile! Zis avec ton code identité.
3: Astez à mon faire l'année sans tracas.
2: Attendez, fais ou application premier crédit côté Rogers Capital. Offre valable jusqu'à 31 décembre. Conditions applicables. Rogers Capital Credit. Au père sous licence de la FSI.
4: Oula Banzen! Tu es en 18 et 30 ans, nous perdons toi les 31 octobre l'embrasure, le monde pour nous premier SBM Trail. Imagine un déco en plein attire, loin de domaine 800 pans et montagne.

0: Otsipan. Allô, rendez-vous les 31 octobre. SBM Trail, parade ça!
1: Siddhi Vinayak Shop wishes you a Shubh Navratri. May Durga Ma bless you all.
2: दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर वन एंड ओनली ड्राउन ब्रदर्स अपने सभी आइटम्स पर 70%

0: कैसा है जनाब?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ,
0: आ। अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैट।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस, फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।
3: L'occasion Durga Puja, Fresh Flora Malini Fleuris Plantée, Importateur Fleur peut offrir un discount spécial l'eau sur ban guirlande, bouquet et fleurs dans tout ban magasin à travers l'île. L'Almaty, Flaque Cœur de Ville, Goodlands Cœur de Ville, Royal Road Goodlands, Rivière du Grand-Port, Flaque Retail Park, Bel Air et Richter Mall. Pour plus renseignements, contactez-nous le 57 96 92 24 57 96 92 24.
4: RM2 Radio Musti
5: Music all day long
6: Radio Musti Sunte
7: raho Timeless Tadka
4: RM2
8: और जी हाँ दोस्तों, टाइमलेस तड़का, जैसे हमने कहा था कि इस आवर में आपके लिए बहुत कुछ खास एंड स्पेशल होने वाला है एंड इट्स टाइम टू प्ले अ गेम आपके साथ। सो इस वक्त आप कनेक्टेड हैं रेडियो मस्ती के साथ एंड गेट रेडी टू सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ डांडिया विद सेंटर पॉइंट। दिस सैटरडे 17th ऑफ अक्टूबर एक्सपीरियंस करें एक इवनिंग ऑफ वाइब्रेंट कलर्स, फेस्टिव बीट्स एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स एट सेंटर पॉइंट ट्रियानो एज फ्रॉम 6 PM। एंड आपके पास अब चांस है टू टेक पार्ट हमारे इस रेडियो गेम में, जहां पर आप जीत सकते हैं 1500 यानी कि 1500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय सेंटर पॉइंट, जहां हर ताल में है जश्न और हर कदम में है रंग। सेंटर पॉइंट डांडिया नाइट, वन इवनिंग वन रिदम एंड एक्सपीरियंस टू लिव। तो चलिए, यहां पर अगर आप ये वाउचर जीतना चाहते हैं, शानदार वाउचर जीतना चाहते हैं, सो आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आप हमारे रेडियो मस्ती शोज को फॉलो करते हैं तो उसमें हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है बॉम्बे टॉकीज। 2 से लेकर 4 बजे तक बॉलीवुड की अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं और वहां पर हमने आपको बताया था दैट एक बॉलीवुड फिल्म रिलीज होने वाली है ऑन दशहरा और उसमें नज़र आने वाली है बॉलीवुड की वेरी फेमस एक्ट्रेस। जी हाँ, आपको हमें बताना है कि ये जो फिल्म है ये कौन सी फिल्म है जो दिस अक्टूबर रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है नई नवेली। यस, नई नवेली। और आपको हमें बताना है कि दैट इस मूवी में वो कौन सी गॉर्जियस बॉलीवुड एक्ट्रेस है जो नजर आने वाली है। आजकल उनके जो हस्बैंड है, जो डायरेक्टर है, काफी फेमस चल रहे हैं। और बता दें दैट ये जो एक्ट्रेस है अपनी नई फिल्म लेकर आ रही है दिस नवरात्रि। 16 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है नई नवेली। और आपको हमें बताना है कि इस

में कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस नजर आने वाली है. तो चलिए, वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स. 5499-1294 पर, 5499-1294 पर आप हमें भेज सकते हैं आपके सही जवाब आपके पूरे नाम पूरे पते के साथ. अगर आपका पूरा नाम नहीं है तो वी वोंट बी एबल टू कंसिडर, तो आपको आपका पूरा नाम बताना है एड्रेस के साथ. हमें भेजिए आपके सही जवाब ऑन 5499-1294. नई नवेली अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म आएगी, कौन सी एक्ट्रेस नजर इस फिल्म में, यही है आज के लिए आपका सवाल. सो चलिए आप हमें अपने सही जवाब भेजिए ऑन 5499-1294. तब तक के लिए खूबसूरत गाना, आप सभी के नाम, ऑल द वेरी बेस्ट.

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैग।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस, फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।
3: RM2 Radio Musti

0: Bez Tarka.
1: RM2.
2: और चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा था सवाल। दैट फिल्म रिलीज होने वाली है नई नवेली दिस नवरात्रि, और इसमें नजर आने वाली है बॉलीवुड की एक खूबसूरत एक्ट्रेस। आपको हमें उनका नाम बताना था। एंड द राइट आंसर इज यामी गौतम, द वेरी गॉर्जियस यामी गौतम। यस, दैट्स द राइट आंसर। यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब, और लकी ड्रॉ के बाद सोनिया तोंडी राजश्री, आप बनी है लकी विनर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो सोनिया जी, आपने दिया हमें सही जवाब, और वेल आपने जीता है 1500 रुपए का गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय सेंटर पॉइंट। गेट रेडी टू सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ डांडिया विद सेंटर पॉइंट दिस सैटरडे 17th ऑफ अक्टूबर। एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप एक इवनिंग ऑफ वाइब्रेंट कलर्स, फेस्टिव बीट्स एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स एट सेंटर पॉइंट ट्रियानो एज फ्रॉम 6 PM। और चलिए, यहाँ पर आप जीत गई हैं ये 1500 रुपए का गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय सेंटर पॉइंट, जहाँ पर हर ताल में जश्न और हर कदम में है रंग। सेंटर पॉइंट डांडिया नाइट, वन इवनिंग वन रिदम एंड एक्सपीरियंस टू लिव। सो कांग्रेचुलेशंस सोनिया तोंडी राजश्री, आप बनी है हमारी लकी लकी विनर। 1500 रुपए का गिफ्ट वाउचर कर लिया है आपने अपने नाम, और ये जो वाउचर है आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। सो बिल्कुल हमारी टीम आपको जरूर कॉन्टेक्ट करने वाली है, और ऐसे ही शानदार इनाम जीतना चाहते हैं आप। सो ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड टू RM2 रेडियो मस्ती।
3: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग।

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। टाइमलेस तड़का
1: RM2।
2: और चलिए दोस्तों, शानदार इनाम के बाद लेकर आए हैं एक स्टाइलिश फैशन टिप आपके लिए। नवरात्रि के रंगों में अपने आउटफिट को आप और भी कलरफुल बना सकते हैं। ट्राई वाइब्रेंट चनिया चोली विद मिरर वर्क, या फिर आप पेयर कर सकते हैं एलिगेंट कुर्ता अपनी ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी के साथ एक परफेक्ट फेस्टिव लुक के लिए। एंड बिल्कुल हमारी लेडीज कंफर्टेबल जूतीज और लाइट दुपट्टा आपको और भी स्टाइलिश लगाएंगे जब आप डांस करते हैं अपने फेवरेट गरबा बीट्स पर। सो याद रखिए दैट फेस्टिव फैशन का असली मंत्रा है ड्रेस विद ग्रेस एंड कैरी योर कल्चर। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस तो है आपकी बेस्ट एसेसरी। सो इस नवरात्रि कीप इट स्टाइलिश एंड कीप इट म्यूजिकल RM2 रेडियो मस्ती के साथ।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

और चलिए दोस्तों इसी ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. छोड़े जा रहे हैं आपको एक और खूबसूरत गीत के साथ और आ रही है पूना मलिक योर बॉली ब्रांच. आपके दिल को वो लुभाएंगे कुछ और प्यारे गीतों के साथ. जाते जाते यहाँ पर प्रकाशवती जी हमारा साथ दे रहे हैं तो चलिए द नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू. इक्वली गोज आउट फॉर ऑल द लिसनर्स. परी का साथ निभाने के लिए धन्यवाद एंड वंस अगेन आप सभी को शुभ नवरात्रि.

0: टाइम चेक सुबह के 11 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरिशस सोसाइटी ऑफ ऑथर्स की वार्षिक आम सभा आज रविवार 11 अक्टूबर को बोबासे स्थित कॉलेज जुबों पेपिचुअल सुको में आयोजित हो रही है। ये सभा पहले 4 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन आवश्यक सदस्यों की संख्या पूरी नहीं होने के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया था। माजा के अध्यक्ष जोएल कोए के अनुसार सभा के लिए 98 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस वार्षिक आम सभा का उद्देश्य संस्था के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्यों और माजा में पंजीकृत लेखकों के बीच विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। कॉलव्यू में शुक्रवार शाम गोली लगने से गंभीर रूप से घायल इलुजितोमा के मामले में घटनाक्रम पर सबकी नज़र बनी हुई है। काम से घर लौटते समय उन पर गोली चलाई गई थी। कल शाम डीपीएम आयाना वोमागी और खेल मंत्री तथा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 19 के सांसद देवन नागालिंगम उनके परिवार से मुलाकात करने गए थे और उनके प्रति एकजुटता तथा समर्थन व्यक्त किया। आयाना वोमागी ने लोगों में शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता इलुजितोमा का स्वास्थ्य है। उनके अनुसार सरकार इस मामले पर करीब से नज़र रख रही है। वहीं खेल मंत्री देवन नागालिंगम ने परिवार के सदस्यों से उम्मीद बनाए रखने की अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और उसे हर संभव सहायता प्रदान करेगी। पानी की टंकी और पंप खरीदने के लिए 15,000 रुपए की सरकारी सहायता पाने हेतु पंजीकरण सोमवार 12 अक्टूबर से शुरू होगा। उपनाम यानी सरनेम का पहला अक्षर ए से एम तक होने वाले लोग सोमवार से बुधवार तक पंजीकरण कर सकेंगे। वहीं एन से जेड तक अक्षर से शुरू होने वाले सरनेम के लोग गुरुवार और शुक्रवार को पंजीकरण करा सकेंगे। पंजीकरण सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सैंपल स्थित CWA के मुख्यालय या देश भर में इसके विभिन्न कार्यालयों में किया जा सकेगा। इसके लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र और CWA का पानी का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मॉरिशस में पानी का संकट, जैसे आपको बताया गया है, गंभीर होता जा रहा है। मौवाका जलाशय में पानी का स्तर 36% से नीचे गिर गया है। बड़ी बारिश होने में अभी 2 महीने का समय है। ऐसे में पानी की कमी दूर करने के लिए जल्द से जल्द नई उपाय तलाशी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल में नदी में आई एक दूसरे बाढ़ के बाद अधिकारियों ने आज रविवार को ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। देश के मध्य हिस्से में आई इस बाढ़ में कई घर और बुनियादी ढांचे बह गए हैं। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। अधिकारियों के अनुसार राजधानी काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में स्थित गोरखा जिले के चुमनुब्री गांव में भूस्खलन के कारण बूढ़ी गंडकी नदी का रास्ता अवरुद्ध हो गया। इसके चलते नदी का पानी निचले इलाकों में फैल

0: गया और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के प्रमुख ने बताया कि कीचड़ और गाद से भरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी से गोरखा जिले को पड़ोसी धादिंग जिले से जोड़ने वाला राजमार्ग पुल भी बह गया है। बूढ़ी गंदगी नदी त्रिशूली नदी की एक सहायक नदी है। इसी नदी तंत्र की एक अन्य सहायक नदी में अगस्त में हिमखंड ढहने से विनाशकारी बाढ़ आई थी। उस आपदा में 1497 लोगों की मौत हुई थी जबकि हजारों लोग अभी भी लापता हैं। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहे बढ़ते हम एक शोक समाचार की ओर। शांति निकेतन रोड रोशनों में 64 साल की 64 years old की श्रीमती बिदवंती रामदोस, पैदाशनाम रामबख्श और जिन्हें रूपवंती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके बेटे आतिश कुमार रामदोस के घर शांति निकेतन रोड रोशनों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोशनों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9 AM। शोक में डूबी इस परिवार के प्रति मानी गहरी संवेदना है।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
2: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: नमस्ते दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। 11:09 हो चुके हैं। RM2 रेडियो मस्ती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ पूनम। सुबह से आपके साथ रिया थी, उसके बाद परी आई, और उसके बाद अब हूँ मैं यानी कि पूनम। आज के से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि भर दे। तो चलो गरबा की धुन के साथ, मस्ती और नए गानों के साथ शुरू करते हैं इस शो को, RM2 रेडियो मस्ती, जो कि आपके साथ 24 आवर्स। एंजॉय कीजिए इस गाने को।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: कामनाएं देता है और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैग।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस, फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरम्भ करें दुर्गा माँ की।
3: RM2 Radio Musti

यह नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी है और सभी के घरों में पूजा पाठ का एक माहौल बन चुका होगा और साथ में ही कहते हैं ना कि हमारी जो लेडीज हैं वो तैयारी कर रही होंगी कि भाई कहाँ पे गरबा पे जाना है और कहाँ पे वो कहते हैं ना डांडिया की स्टिक्स की तैयारी हो रही होगी, कहीं पर वो अपने अपनी ड्रेसेस को चूज कर रही होंगी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कलरफुल बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी होगी, कहीं उन्हें तो कर ली होगी। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आपने भी अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो कर लीजिए, और अगर पूरी हो चुकी है तो हमें हमारे साथ भी शेयर कीजिए कि आपके मूवमेंट कैसे चल रहे हैं, क्या क्या तैयारी हो चुकी है। 5499-1294 पर हम हैं आपके साथ।
1: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती
2: जागते रहो।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:35 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपनी ही बॉली ब्रंच के साथ में। और यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आज है विक्की का बर्थडे और उसकी मामा सुइया जी और उनके पूरा फैमिली उनको विश कर रहा है और बस इतना ही कह रहे हैं कि बहुत ही प्यारे बच्चे हो, हमेशा खुश रहो। पूरी सारी बहनें और उनके मम्मी पापा उनको विश कर रहे हैं, साथ में राजन रघुपत जी साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। और सभी मॉरिशंस को, क्योंकि वो लंदन में रहते हैं, तो सभी मॉरिशंस को कह रहे हैं हैप्पी नवरात्रि जी। थैंक यू सो मच, आपको भी हैप्पी नवरात्रि। और रामदयाल और द जादू एंड लालमुन दिल दिलंबर गोकुल एंड रामपर्थ भगवत सेतुल एंड रामतुल फैमिली सभी एक दूसरे को विश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोगों को विशेस के साथ में इतना ही बस होता है कि आज जहां पर कोई जा रहा है तो बस अपना ख्याल रखें, अपने साथ में अपने आप को ध्यान रखते रखते साथ में इतना ही ये कह रहे हैं कि अगर कोई फ्रूट्स लेकर जा रहा है या कोई पूजा का सामान लेकर जा रहा है तो हम तो इतना ही कहेंगे कि भाई खाएं पिए एंजॉय कीजिए और साथ में जुड़े रहिए RM2 रेडियो मस्ती के साथ।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैग।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस, फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरम्भ करे दुर्गा माँ की।
3: RM2 Radio Musti

0: मॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:45 हो चुके हैं और आज है 11 अक्टूबर, और आज के ही दिन जन्मे थे बॉलीवुड के शहनशाह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज अमिताभ बच्चन जी की। आज वे अपना 84वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो चलो उन्हीं की आवाज़ में। और एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, माँ को समर्पित है। हम तो उनको कहेंगे उनकी लंबी उम्र हो, ढेर सारी उनको शुभकामनाएँ उनके जन्मदिन की। और उन्हीं के तरफ से शुरू करते हैं माँ दुर्गा का एक प्यारा सा गाना। ये बहुत ही सुंदर है, आपको भी अच्छा लगेगा, इन्जॉय कीजिएगा इसको।
0: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग रेडियो मस्ती सुनते रहो
1: स्पेशली ये सॉन्ग जाएगा मिस्टर त्रिवाडे चान एंड बेका के लिए क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है और वो कह रहे हैं प्लीज़ मैं हम दोनों के लिए ये गाना ज़रूर चलाएगा तो ये आप बस जल्दी ठीक होए और ये गाना आपके लिए

0: टाइम चेक दोपहर के 12 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं आशिता से। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार पूनम। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहली स्थानीय खबरें। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल इलुजी तुमा की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर बताई जा रही है। उनका इलाज कर रही चिकित्सा टीम ने आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक की। इस बैठक में कई सांसद भी मौजूद थे। चिकित्सकों की टीम भारत से आने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों के संपर्क में है। ये विशेषज्ञ कल दोपहर तक मॉरिशस पहुंचने वाली है। विशेष डॉक्टरों के पहुंचने के बाद इलुजी तुमा की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसके बाद उनके लिए उचित इलाज की प्रक्रिया तय की जाएगी। कॉलिव्यू में शुक्रवार शाम गोली लगने से गंभीर रूप से घायल इलुजी तुमा के मामले में घटनाक्रम पर सबकी नजर बनी हुई है। काम से घर लौटते समय उन पर गोली चलाई गई थी। कल शाम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर्या नवामागी और खेल मंत्री तथा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 19 के सांसद देवन नागालिंगम उनके परिवार से मुलाकात की करने के लिए गए थे और उनके प्रति एकजुटता तथा समर्थन व्यक्त किया। आर्या नवामागी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता इलुजी तुमा का स्वास्थ्य है। उनके अनुसार सरकार इस मामले पर करीब से नजर रख रही है। वहीं खेल मंत्री देवेन नागालिंगम ने परिवार के सदस्यों से उम्मीद बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और उसे हर संभव सहायता प्रदान करेगी। रोड्रिग्स कल सोमवार 12 अक्टूबर को अपनी स्वायत्तता के 24 वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर औपचारिक समारोह कॉन्जुगुआ स्थित जॉन डैनियल उद्रे स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि करीब आने के साथ ही टैक्स पेयरों पर दबाव बढ़ रहा है। रिटर्न जमा करने की अंतिम समय सीमा इस गुरुवार 15 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक है। इसके बाद रिटर्न जमा करने पर जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी यानी MRA के अनुसार 9 अक्टूबर तक 178,000 से अधिक टैक्स रिटर्न जमा किए जा चुके थे। जिन करदाताओं को रिटर्न जमा करने में मदद की ज़रूरत है उनके लिए MRA रविवार को विशेष सेवा उपलब्ध करा रही है। ये सेवा सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। और आज रविवार 11 अक्टूबर से माँ दुर्गा की आराधना का पर्व दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है। 9 रातों तक चलने वाले इस पर्व में श्रद्धालु माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। इनमें शैलपुत्री से लेकर काल रात्रि और सिद्धिदात्री तक के रूप शामिल हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया और देवी शक्ति के रूप में माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ। माँ दुर्गा को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। वे नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाने वाली दिव्य शक्ति का स्वरूप है। 9 दिनों तक चलने वाली ये दुर्गोत्सव सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। इसके अंतर्गत कलश स्थापना सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। पूरा वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक आस्था से भर जाएगा। आज के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ दुर्गोत्सव का मंगलारंभ हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजधानी नई दिल्ली में चुनावी सुधारों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं को अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया है। अभिजीत दीप के समय

0: नेताओं को शनिवार को हिरासत में लिया गया था। लगातार दूसरे दिन विरोध प्रदर्शनों की आशंका के बीच शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों में हेरफेर के आरोपों से इनकार किया है। और उधर नेपाल में नदी में आई एक दूसरी बाढ़ के बाद अधिकारियों ने आज रविवार को ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। देश के मध्य हिस्से में आई इस बाढ़ में कई घर और बुनियादी ढांचे बह गए हैं। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। अधिकारियों के अनुसार राजधानी काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में स्थित गोरखा जिले के चुमनुब्री गाँव में भूस्खलन के कारण बूढ़ी गंडकी नदी का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। इसके चलते नदी का पानी निचले इलाकों में फैल गया और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। आपको याद दिला देते हैं कि बूढ़ी गंडकी नदी त्रिशूली नदी की एक सहायक नदी है। इसी नदी तंत्र की एक अन्य सहायक नदी में अगस्त में हिमखंड ढहने से विनाशकारी बाढ़ आई थी। उस आपदा में 1497 लोगों की मौत हुई थी, जबकि हजारों लोग अब भी लापता हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद। साथ रहिए, हम बढ़ते हैं शुभ समाचारों की ओर। शुभ समाचार सुनिए। शांति निकेतन रोड ओशनो में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिदवंती रामदोस पैदाशी नाम रामबख्श और जिन्हें रूपवंती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके बेटे आतिश कुमार रामदोस के घर ओशनो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 9 AM। पुचिकॉन फिनिक्स में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री धनंजय गंगाराम की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। सिटी सेंटुबे में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड के श्री गोविंदेन रामा जिन्हें राजेन होगाई के नाम से भी ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती शोभा रामा के घर सैतुबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बुआ की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play and NBC.mu.
2: Body Branch RM2 Radio Masti.
3: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay ou que vous soyez à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, MBC.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
2: Body Branch, RM2, Radio Masti.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले
1: Bolly Branch RM2 Radio Masti
2: 12:13 हो चुके हैं दोस्तों और अभी सेकेंड आवर लग चुका है, तो हम तो कहेंगे आप पूरी मस्ती कीजिए और बताओ कैसा जा रहा है आपका संडे। कहीं बाहर जाने का, घूमने का कहीं कोई मूड है? कुछ खाना खा लिया या नहीं खाया, या बस सिर्फ गाने सुनने का मूड है? तो जो भी कर रहे हैं जी भर के कीजिए, क्योंकि संडे है, थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है, खाना पीना भी ज़रूरी है। अपने मूड के हिसाब से कुछ ऐसा बनाइएगा जो आपका दिल खुश कर दे। तो हम भी आपके यहाँ पर दिल खुश करने के लिए बैठे हुए हैं और यहाँ पर इतने सारे गाने आपकी पसंद के चला रहे हैं, तो इन्जॉय कीजिए गानों को और साथ में बने रहिए। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499124 पर।
1: Bolly Branch RM2 Radio Masti

0: RM2
1: रेडियो मस्ती। हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की। सिद्धि विनायक शॉप विशेस यू अ शुभ नवरात्रि। मे दुर्गा माँ ब्लेस यू ऑल। आलोकाजो दुर्गा पूजा सिद्धि विनायक शॉप पे अभी तू पुसो ग्रैंड दुर्गा पूजा महोत्सव सेल्स कुमांसे वेंड्रेडी 9 अक्टूबर जिसका मार्डी 20 अक्टूबर 2026। विजिट नुबान शॉप पर प्रॉफिट जिसका 40% डिस्काउंट लो एन ग्रैंड वैरायटी प्रोडक्ट्स ए कैपोटिए सा वेंड्रेडी 9 जिसका डिमांस 11 अक्टूबर सिद्धि विनायक शॉप दो पायोट मोदेजिया पूरे सुवेर पर लेट नाइट शॉपिंग जिसका 23h। हेलो विजिट जोट सिद्धि विनायक शॉप की प्ली प्रेयोजोट क्यापिप विजावी साई बाबा मंदिर पायोट मोदेजिया बाक्वा ए कोर दे विल फ्लैक पुसोट नवरात्रि शॉपिंग दुर्गा पूजा महोत्सव देपी निफ जिसका 20 अक्टूबर दो टू सिद्धि विनायक शॉप।
3: Ou toujours pas encore faire au Individual Income Tax Return 2026, ou connaît aurait seulement 5 jours pour faire les, pas tarder. Allo site web de la MRE, www.mre.mu. Clique le e-filing season 2026 et suive ban instruction. Si vous besoin d'aide, prenez rendez-vous le e-appointment un officier de la MRE pour aider ou remplir ou return à travers un WhatsApp video call. Après qu'il vous finit soumettre ou return, ou capable participer dans le Taxpayer Satisfaction Survey et remporte un des 23 prix là. Premier prix, 25 000 roupies. Deuxième prix, 15 000 roupies. Et troisième prix, 10 000 roupies. Faire vite, remplir ou return avant le 15 octobre. Passez ce délai ou risquez une pénalité et l'intérêt.
0: RM2
1: Radio Musty.
4: It's a unisex song.

0: हमारी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 12:22 हो चुके हैं दोस्तों, और हमारे बहुत सारे मैसेजेस में बता रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ बता दो कि भाई एग्ज़ाम्स में हमारे को थोड़ी सी एनर्जी रहे। हम तो हमेशा से यही बोलते हैं, थोड़ा सा फ्रूट्स खाओ, थोड़ी सी एनर्जी, इसी से जो नेचुरल एनर्जी आती है वो सबसे बेस्ट होती है। और शुगर को थोड़ा सा कम लीजिएगा, अगर खाना है बहुत क्रेविंग हो रही है तो आप हनी यानी कि शहद थोड़ा सा ले सकते हैं, थोड़ा सा उसको पानी में घोलें, उसको पीने से भी थोड़ा सी एनर्जी मिलती है। खजूर खाइए, ये भी बहुत अच्छा है, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ओट्स को थोड़ा रोस्ट कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स करके खाते रहिए। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पर थोड़ा सा रिलैक्स भी कीजिए। ये नहीं पढ़ते रहो और फिर एक जब टाइम आए एग्जाम्स का तो उस टाइम सब भूल जाओ। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, उसको समझिए, उसको एनालाइज कीजिए, किसी ना किसी से ज़रूर पूछते रहिए, घर में परिवार से दोस्तों से, कि भाई कहीं पर कोई गलत ट्रैक चल पड़े तो फिर वापस आ जाइए, फिर से रुकिए, थोड़ा सा थमिए, थोड़ा सा इधर उधर घूमिए और फिर से पढ़ना शुरू कीजिए। हम तो यही कहेंगे, एंजॉय कीजिए गानों को और साथ में पढ़ाई करते रहो।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: डारिन श्वेता और रविश प्रशाल हुए शायना पादू फैमिली रोशनवा से सभी को विश कर रहे हैं हैप्पी नवरात्रि।
1: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
0: क्या बात है भाई, बहुत सारे मैसेजेस के साथ में हम भी जुड़ जाते हैं आपके साथ। इस समय 12:32 हो चुके हैं और हैप्पी बर्थडे टू ललिता जीतन एंड श्याम देवीचरण जी, और आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी है और बेटा कुमार देवीचरण पेरेबेयर से उन्हें विश कर रहे हैं और कह रहे हैं यू आर द बेस्ट मॉम एंड डैड। दोनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेज और हम पूरी एमबीसी की टीम की तरफ से भी आप दोनों को वेडिंग हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी और हैप्पी बर्थडे टू यू जी। क्या बात है, आपका तो स्पेशल डे है। और एक मैसेज बहुत खास है दूसरा भी, सीमा प्रिया कोमल और शालू कह रहे हैं कि हम एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं मॉरिशस में और हम इंडिया से आए हैं और हर साल नवरात्रि इंडिया में मनाते थे, इस बार हमारे पास अपना यहाँ पर कोई नहीं है मॉरिशस में और हम तो सिर्फ अकेले ही काम कर रहे हैं। तो हम कहीं यही कहेंगे आपको, आप अकेले नहीं हैं, बिल्कुल हम साथ हैं, RM2 रेडियो मस्ती आपके साथ है। तो भाई जो भी अपने आप को इस समय अकेला महसूस कर रहे हैं या बाहर देशों से आए हुए हैं उनको हम यही कहेंगे, फिकर मत करो भाई, हम सब साथ हैं, क्यों टेंशन लेना, हंसते रहो मुस्कुराते रहो एंजॉय करते रहो जिंदगी को एंड आपके लिए हमारी तरफ से सभी के लिए जिनका बर्थडे है।

0: रेडियो मस्ती।
1: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।
0: RM2
3: Radio Musti

0: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं विधिमा से संक्षिप्त समाचार। विधिमा आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को नमस्कार। इरुजी टोमास की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर बताई जा रही है। उनका इलाज कर रही मेडिकल टीम ने आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक बैठक की, जिसमें कई सांसद भी उपस्थित थे। डॉक्टरों की टीम भारतीय विशेषज्ञों के लगातार संपर्क में है, जिनके कल दोपहर तक देश पहुंचने की उम्मीद है। उनके आगमन के बाद मरीज की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके बाद उचित मेडिकल प्रोटोकॉल पर फैसला लिया जाएगा। कल शाम टोमास परिवार से उप प्रधानमंत्री और युवा एवं खेल मंत्री ने मुलाकात की। दिव्य नगालिंगम ने आश्वासन दिया है कि एलओजी टोमास की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं आर्यन नवामाही ने उस घटना के गवाहों से आगे आने की अपील की है, जिसमें ये युवा मां घायल हुई थी। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। और इस घटना ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ध्यान भी आकर्षित किया है, जिसने न्यायिक जांच की मांग की है। मानवाधिकार डिवीजन के सदस्य जॉन मारी रिशो ने याद दिलाया कि हथियारों का इस्तेमाल हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। पानी का संकट चिंता का मुख्य केंद्र बना हुआ है। महोबा का जलाशय के 36% से नीचे चले जाने और भारी बारिश आने में लगभग 2 महीने बाकी होने के कारण मॉरिशस को इस सूखे से निपटने के लिए समाधान तलाशने होंगे। लंबी अवधि के समाधानों के इंतजार के बीच परिवार पानी की कटौती से बेहतर तरीके से निपटने के लिए वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकेंगे। पानी की टंकी और पंप खरीदने के लिए ₹15,000 की सब्सिडी के वास्ते पंजीकरण इस सोमवार 12 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। ये कैलेंडर सरनेम के पहले अक्षर के अनुसार तय किया गया है। जिन लोगों का नाम ए से एम अक्षर से शुरू होता है, वे सोमवार से बुधवार तक पंजीकरण करा सकेंगे। जिनका नाम एन से जेड अक्षर से शुरू होता है, वे गुरुवार से शुक्रवार तक ऐसा कर सकेंगे। पंजीकरण सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सैंपल में CWA के मुख्य कार्यालय या देश भर में इसके विभिन्न कार्यालयों में किए जाएंगे। इसके लिए नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और CWA का एक बिल दिखाना होगा। आज रविवार 11 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है, जो देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। 9 रातों तक चलने वाला ये भक्ति का समय प्रार्थनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों से भरा होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उत्सव की शुरुआत आज देवी शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ हो रही है। ये आध्यात्मिक आस्था और सदियों पुरानी परंपराओं का पर्व है, जिसका समापन आगामी 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ होगा। ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि में 4 दिन बाकी होने के कारण करदाताओं पर दबाव बढ़ गया है। इसकी समय सीमा इस गुरुवार 15 अक्टूबर की आधी रात तय की गई है, जिसके बाद जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। ज्ञात हो कि शुक्रवार 9 अक्टूबर तक 1,78,000 से अधिक टैक्स रिटर्न पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। जिन्हें मदद की आवश्यकता है, उनका सहयोग करने के लिए मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी आज रविवार को शाम 4 बजे तक विशेष रूप से खुला रहेगा। और विदेश में सऊदी अरब के रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को हुए हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हो गए। यमन के हुती विद्रोहियों ने सभी एयरलाइन कंपनियों को सऊदी हवाई अड्डों का उपयोग न करने की नई चेतावनी जारी की है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। पिट्सी कॉम फिनिक्स में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री धनंजय गंगाराम की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके घर पिट्सी कॉम फिनिक्स से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। सुखदेव बिसुंदयाली स्ट्रीट नोवेल फ्रांस में इक्यासी साल की 81 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती नारायणी सुचित, जो चंद्रावती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके घर सुखदेव बिसुंदयाली स्ट्रीट नोवेल फ्रांस से उठाकर मारी जानी रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

0: News on NBC Play and NBC.mu.
1: Body Brunch, RM2, Radio Masti.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:11 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही बॉलीवुड ब्रंच के साथ में। और इसमें आज कहते हैं कि 1:11 हो जाते हैं, वो टाइम हो जाता है जहाँ पे हमें हम लंच करना भी चाह रहे होते हैं, लंच कर भी लेते हैं, थोड़ी सी आलस भी आती है, पर फिर भी हम यही कहते हैं बिल्कुल आलस नहीं आना। कई लोग ड्राइव कर रहे हैं तो हम तो बोलेंगे बिल्कुल अलर्ट हो जाओ और ड्राइव करते रहो, और जो घर में सुन रहे हैं उनको बस बोलेंगे 5 मिनट नैप ले लो, तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। पर आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, यानी कि बालिका दिवस। तो चलो हर बेटी को सलाम करते हैं क्योंकि हर बेटी में शक्ति है, और आज से ही नवरात्रि शुरू है और नवरात्रि तो है ही शक्ति का प्रतीक। तो हम तो कहेंगे शिक्षा, सुरक्षा और अपने सारे सपने पूरे करने का मौका हम सब लड़कियों को मिलना चाहिए, और ये जो प्यार है, जो विश्वास है, जो माँ बाप देते हैं, हमेशा मिलता रहे सबको, और सबके माँ बाप इतना ही अपनी बेटियों को प्यार देते रहें।
0: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: Holiday Brunch RM2 Radio Masti।
1: एक बजकर 22 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। कहते हैं ना कि जब संडे आता है और लेकर आता है बहुत सारी खुशियां और थोड़ा सा रिलैक्सेशन का मोड, पर सब लोग इतने लकी नहीं होते हैं, कईयों को काम पे भी जाना पड़ता है। और आज तो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो मैं तो कहती हूँ सबके घरों में कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि कोई आराम से लेटा होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। तो हम तो यही कहेंगे भाई काम करते रहो, क्योंकि यही तो ज़िंदगी है, काम मिलता है, काम होता है तो अच्छा लगता है, वरना फिर है क्या। तो चलिए जी, हमारे साथ बहुत सारे हमारे लिसनर्स साथ दे रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। कृष्णा जी साथ दे रहे हैं, कृष्णा, रश्मिका, सुनीता जी, विशाल, राजन, रघुपत जी लंदन से साथ दे रहे हैं, यलेश सुरीनाम से साथ दे रहे हैं, और प्रकाशवती जी बेल्जियम से साथ दे रही हैं, केशव हरी सर एंड गोपाल कृष्णन साथ दे रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और सभी को बेस्ट विशेस के साथ में बोल रहे हैं हैप्पी नवरात्रा ऑल। उजुल दिया एंड एडिसन जो कि लंदन से साथ दे रहे हैं, उनके लिए भी एक प्यारा सा गाने की फरमाइश आई है, तो बस हम चलाते हैं आपकी फरमाइश का गाना पिंगा रे पिंगा, बहुत ही प्यारा सा गाना है, तो इंजॉय कीजिए और जो काम कर रहे हैं करते रहिए।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

पापा मम्मी भाई बहन सब यही कहते हैं कुछ ना रख कुछ तो नाम करो भाई। नाम तो एक नाम दे देते हैं पेरेंट्स, बट एक बार नाम होता है दुनिया के सामने खुद से, बस करते रहिए कुछ ना कुछ काम।

0: आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो जा रही हूँ, पर मेरे बाद आपको साथ मिलने जा रहे हैं हंसनी का। एंजॉय कीजिएगा। गुड बाय, टाटा।
1: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: Wishing you all a very good afternoon. Check your time. It's 2 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा के साथ। आपको नमस्कार विधिमा।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। इलुजीटोमा की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर बताई जा रही है। उनका इलाज कर रही मेडिकल टीम ने आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक बैठक की, जिसमें कई सांसद भी उपस्थित थे। डॉक्टरों की टीम भारतीय विशेषज्ञों के लगातार संपर्क में है, जिनके कल दोपहर तक देश पहुंचने की उम्मीद है। उनके आगमन के बाद मरीज की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके बाद उचित मेडिकल प्रोटोकॉल पर फैसला लिया जाएगा। इस घटना ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ध्यान आकर्षित किया है, जिसने न्यायिक जांच की मांग की है। मानवाधिकार डिवीजन के सदस्य जोमारी रिशो ने याद दिलाया कि हथियारों का इस्तेमाल हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। आज रविवार को शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है, जो देवी दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। नौ रातों तक चलने वाला ये भक्ति का समय प्रार्थनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों से भरा होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये आध्यात्मिक आस्था और सदियों पुरानी परंपराओं का पर्व है, जिसका समापन आगामी 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ होगा। ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि में 4 दिन बाकी होने के कारण करदाताओं पर दबाव बढ़ गया है। इसकी समय सीमा इस गुरुवार 15 अक्टूबर की आधी रात तय की गई है, जिसके बाद जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। ज्ञात हो कि शुक्रवार 9 अक्टूबर तक 1,78,000 से अधिक टैक्स रिटर्न पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। जिन्हें मदद की आवश्यकता है, उनका सहयोग करने के लिए मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी आज रविवार को शाम 4 बजे तक विशेष रूप से खुली रहेगी। और विदेश में तूफान इसाइयास की तेज हवाओं और भारी बारिश से अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में भारी तबाही मची है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग बिजली न होने के कारण अंधेरे में हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। सुखदेव बिसुंदयाली स्ट्रीट नोवेल फ्रांस में 81 साल की 81 years old की श्रीमती नारायणी सुचित, जो चंद्रावती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके घर सुखदेव बिसुंदयाली स्ट्रीट नोवेल फ्रांस से उठाकर मारीजानी रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। पेटिकॉन फिनिक्स में 81 साल के 81 years old के श्री धनंजय गंगाराम की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 3 बजे उनके घर पेटिकॉन फिनिक्स से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
2: You're listening to RM2 Radio Masti.
3: काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
4: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious नवरात्रि।

0: plug and play.
1: RM2.
2: माता रानी जगत जननी को बारंबार प्रणाम नमन जय जगदम्बा जय मां दुर्गा। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी भक्तों को यहाँ पर। बस इस पावन माहौल में हमारी शुभकामनाएं हम बस लेकर आए हैं ऑल गुड फीलिंग्स सबके लिए। मां दुर्गा आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और खुशियां लेकर आए, आपके सभी कष्ट दूर हों और जीवन खुशियों से भर जाए। मां रानी की कृपा से सदैव आप पर आपके परिवार पर बने रहे, इसके लिए हम लेकर आए हैं पॉजिटिव वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती। जय माता दी आप सभी को। इस पावन माहौल को बस हम लेकर आए हैं आज का ये शो जो हम सजाने वाले हैं आपके लिए। यहाँ पर हाजिर है हंसनी और मिलजुल कर हम इस म्यूजिकल जर्नी को सेट करने वाले हैं, जहाँ पर माँ दुर्गा धूमधाम से आई है आपके घर में और कई दिनों से तैयारियाँ चल रही थी और माता रानी का शानदार स्वागत करने के लिए। तो ये जो दिन बस

आ ही गया है और जो दीप उजले है वो दीप उज्जवल रहे, आपकी जिंदगी को ऐसे ही उज्ज्वलित बनाते रहे, सुख समृद्धि घर में आए और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हर सपना पूरा हो जाए। तो यहाँ पर शुभकामनाओं के साथ ये म्यूजिकल शो आप लोगों के लिए बस तय हम करने वाले हैं। जस्ट जॉइन अस टिल 4 PM। इट्स अ वार्म वेलकम टू एवरीवन। यहाँ पे रेडियो मस्ती पर आप सभी का हम दिल

0: ये सब फ्रूटफुल रहे और इस पावन माहौल में माता रानी की कृपा बस बनी रहे। जय हो एंड वी आर हियर टू मेंटेन पीस। ये जो प्यार है, ये जो लेट्स से शांति अमन ये जो छा गया है ऑल अराउंड, इसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश हम करेंगे। मौसम की बात करें तो ऑन माय वे टू एमबीसी यहाँ पर हमने देखा कि बादल छाए हुए थे। लेट्स प्रे, लेट्स स्ट्रॉन्गली प्रे, प्रार्थनाएं हम करेंगे कि बस बारिश हो जाए हमारे इस देश में एंड यस जो वाटर क्राइसिस है वो बस खत्म हो जाए। जय माता दी आप सभी को एंड वी आर हियर ऑफ कोर्स टू मेक इट अ बिट मोर स्पेशल। आप लोगों के आने से आपको तो पता है कुछ खास हो ही जाता है। विल बी वेलकमिंग सम ऑफ योर डेडिकेशंस, व्हाई नॉट। अगर आज का दिन स्पेशल है तो कुछ ना कुछ तो खास बनता है ना ऑन योर साइड, तो इसके लिए हम सुनी है एंड I'll be waiting. आपका इंतजार रहेगा ऑन 5499 1294। अभी के लिए टाइम फॉर कमर्शियल ब्रेक, इसके बाद आप लोगों के लिए मोर म्यूजिक कमिंग अप।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: सिद्धि विनायक शॉप विशेस यू अ शुभ नवरात्रि। मे दुर्गा माँ ब्लेस यू ऑल। Occasion Durga Puja, Siddhi Vinayak Shop. PAB tout pour son grand Durga Puja Mahotsav Sales. Commencez vendredi 9 octobre jusqu'à mardi 20 octobre 2026. Visite Duban Shop pour profiter jusqu'à 40% discount. Loin grand voyer des produits. Et qu'apportez ça vendredi 9 jusqu'à dimanche 11 octobre là. Siddhi Vinayak Shop dans Payot Mondésia. Pour recevoir pour late night shopping jusqu'à 23h. Allô, visite zot Siddhi Vinayak Shop qui plie près aux autres. Kapip, vis-à-vis Sai Baba Mandir. Payot Mondésia. Yabakwa et Cœur de Ville Flac pour cette Navratri Shopping. Durga Puja Mahotsav depuis 9 jusqu'à 20 octobre dans tous ces Divinayak Shop.
1: RM2 Radio Musti.
3: Plug and play.
1: RM2
3: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: Yes, it's a wonderful afternoon जो हम बिता रहे हैं with the Radio Masti and आज का Plug and Play program यहाँ पर है आपके साथ और जो हंसनी and we are here to celebrate this lovely weekend Sunday वाला दिन and आज तो है 11 अक्टूबर और बॉलीवुड दुनिया से बिल्कुल आए हैं हमारे शहंशाह he is celebrating his birthday आज happy birthday to the great अमिताभ बच्चन जी आप सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं जी बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन हो आपकी दमदार आवाज शानदार एक्टिंग और बेहतरीन पर्सनालिटी ने सिनेमा की दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई है ना ये सब फैन फॉलोअर्स इस बात को मानेंगे और हम तो यही प्रार्थनाएं करेंगे आज इस पावन दिन पर माता रानी आपको हमेशा सेहतमंद रखें खुश और लंबी उम्र दें यहाँ पर यू आर जस्ट ग्रेट आप तो शहंशाह हो ऑफ बॉलीवुड और जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं फ्रॉम ऑल द फैन फॉलोअर्स जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है ऑन रेडियो मस्ती वैसे उनका हर एक गाना ऐसा लगता है वी आर प्योरली इन द वर्ल्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया कुछ ऐसे सुवेनियर्स हम लेकर आते हैं द मैजिक ऑफ म्यूजिक गोज ऑन रेडियो मस्ती तो यहाँ पर आप भी कुछ कहना चाहेंगे उनकी कौन सी ऐसी मूवी जो आपको पसंद है उनका कौन सा वो गाना जो आपको पसंद है जल्दी से आप हमको याद करें वेटिंग फॉर यू 549 12 94 Open.

ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं, और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे। और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

0: 2 रेडियो मस्ती
1: दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर वन एंड ओनली ड्राउन ब्रदर्स अपने सभी आइटम्स पर 70% ऑफ कर रहा है, जैसे कि धोती, साड़ी और कपड़े।

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जोरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैग।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: And play.
1: RM2
3: एक नाम एक पहचान और एक मिसाल अमिताभ बच्चन साहब और उनका अंदाज उनकी आवाज और एक्टिंग तो हमेशा दिल जीत ही लेती है ना। सो हैप्पी बर्थडे के ढेर सारी शुभकामनाएं हैं टू आवर बिग बी। और यहाँ पर आ गए हैं बहुत सारे मैसेजेस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फैंस एंड फॉलोअर्स जो यहाँ पर स्ट्रांगली कनेक्टेड है। थैंकिंग यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग द लव। यहाँ पर गाना हो जाए फॉर रीना के लिए, रीना पुलवन, और उनको बस बिग थैंक्स कहना चाहेंगे फॉर हर काइंडनेस एंड टू गाइड अस टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। तो रीना जी अगर यहाँ पर साथ जारी है और रेडियो मस्ती, एक स्पेशल मैसेज आपके लिए है फ्रॉम समवन जो आपको बिग थैंक्स कह रही है। एंड इस पावन माहौल पर बस जय माता दी आपको। शाहीन आई है फ्रॉम पोर्ट लुइस, कैसी हो शाहीन? रेडी हो कि सब ठीक है? यहाँ पर गाना फॉर लव शमशाद के लिए जो अभी भी काम कर रही हैं, सकुगार तू शमशाद एंड अपायस दुर्गा पूजा टू ऑल योर फ्रेंड्स, हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंकिंग यू सो मच शाहीन फॉर योर गुड विशेस। यहाँ पर आए हैं रवि फ्रॉम पोर्ट लुइस और जय माता दी के ढेर सारे शुभकामनाएं हैं फॉर नवरात्रि, जय माता दी फॉर ऑल द फ्रेंड्स जो व्रत धारण कर रहे हैं और आप तो काम के लिए रवाना हो चुके हो, विल बी मिसिंग होम, और आपके बच्चे सब घर पर है, लेकिन क्या करें, वर्क इज वर्शिप राइट, इसलिए हम काम करेंगे और मेहनत से काम करेंगे और जो फ्रूटफुल जर्नी है बस आप लोगों के लिए तय है। जय माता दी टू यू एंड हैव अ सेफ ड्राइव। वी हैव रोहन भाई, कैसे हो जी? जय माता दी आपको भी, दुर्गा माता की कृपा बस बनी रहे आप पर, आपके परिवारों पर, सभी राम रोचन परिवार के लिए भी यहाँ पर हम लेकर आए हैं बेस्ट विशेस, थैंकिंग यू सो मच एज ऑलवेज, आप हमारे शो को अप्रिशिएट कर लेते हो। यहाँ पर वंदना का साथ, यहाँ पर गाना प्लीज मेरे लिए हो जाए फॉर माय लव केविन के लिए, और वो बहुत ही बिजी है सिंस सम डेज, और आज दुर्गा पूजा की शुरुआत है तो मंदिर में वो जाते हैं मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। तो यहाँ पर आई जस्ट वॉन्ट टू से आई मिसिंग हिम, लेकिन ही इज़ डूइंग अ नोबल जॉब, इसीलिए यहाँ पर चलता है। सकुगार्ज टू योर लव, और उनके लिए आप लेकर आई हो ओनली द बेस्ट विशेस, माँ दुर्गा उन पर हमेशा आशीष बरसाए, यही शुभकामनाएं हम भी लेकर आए हैं। आप भी अपनों को याद करें, दिस इज योर शो जहाँ पर ये अपनापन है, परिवार के साथ जो वक्त है हम बिता लेते हैं, कैद कर लेते हैं स्पेशल यादों को, एंड यहाँ हंसनी है जो आपका साथ जरूर देने वाली है अब टिल द एंड, शाम के 4 बजे तक का। On a 549-1294, this is happening on Radio Musti, and we are waiting for your messages in our plug and play program. जो यहाँ पर बिल्कुल सेट है for everyone, जो यहाँ पर बस musical हो रही है वो the plug and play.
2: Plug and play.
1: RM2.
2: Plug and play.

0: Good afternoon, everyone. Check your time. It's already 3 p.m. सुनते हैं समाचार विधिमा के साथ आपको नमस्कार विधिमा
1: नमस्कार हंसनी सभी को नमस्कार इरुजी टोमास की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर बताई जा रही है उनका इलाज कर रही मेडिकल टीम ने आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक बैठक की जिसमें कई सांसद भी उपस्थित थे डॉक्टरों की टीम भारतीय विशेषज्ञों के लगातार संपर्क में है जिनके कल दोपहर तक देश पहुँचने की उम्मीद है इस घटना ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ध्यान आकर्षित किया है जिसने न्यायिक जाँच की मांग की है लंबी अवधि के समाधानों के इंतजार के बीच परिवार पानी के कटौती से

0: बेहतर तरीके से निपटने के लिए वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकेंगे। पानी की टंकी और पंप खरीदने के लिए 15,000 रुपए की सब्सिडी के वास्ते पंजीकरण इस सोमवार 12 अक्टूबर से शुरू हो रही है। ये कैलेंडर सरनेम के पहले अक्षर के अनुसार तय किया गया है। जिन लोगों का नाम ए से एम अक्षर से शुरू होता है वे सोमवार से बुधवार तक पंजीकरण करा सकेंगे। जिनका नाम एन से जेड अक्षर से शुरू होता है वे गुरुवार से शुक्रवार तक ऐसा कर सकेंगे। पंजीकरण सुबह 9 बजे से 3 बजे तक सैंपल में CWA के मुख्य कार्यालय या देश भर के में विभिन्न कार्यालयों में किए जाएंगे। इसके लिए नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और CWA का एक बिल दिखाना होगा। ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि में 4 दिन बाकी हैं। इसकी समय सीमा गुरुवार 15 अक्टूबर की आधी रात तय की गई है, जिसके बाद जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। जिन्हें मदद की आवश्यकता है उनका सहयोग करने के लिए मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी आज रविवार को शाम 4 बजे तक विशेष रूप से खुली रहेगी। और विदेश में एक मानवाधिकार समूह के अनुसार इथियोपिया की सीमा से लगे सूडान के ब्लू नाइल क्षेत्र में देश के अर्धसैनिक बलों द्वारा किए गए ड्रोन हमले में 41 लोगों की मौत हो गई है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। एमरल्ड रोड मुसल मौला वाली सेंट क्वा में 67 साल की 67 years old की बीबी फातिमा रामकलावन पैदाइशी नाम दाऊद सिलर और जुमुनत नाम से भी जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज शाम 4 बजे उनके घर एमरल्ड रोड मुसल मौला वाली सेंट क्वा से उठाकर रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल दिस आफ्टरनून एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.
2: Hey, kal ratri hai kalyani, tera jod dhara par koi nahi, meri maa.
3: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: Plug and play.
1: RM2.
2: दिन बज कर 8 मिनट हो चला है. सभी का वेलकम, सभी का वार्म वेलकम आई विल से ऑन रेडियो मस्ती, जहां पर ये जो फैमिली वाला फील है बस हम अपना रहे हैं. एंड जहां पर भी आपका साथ जारी है, इट्स ऑल योर्स. ये जो शो है म्यूजिकल जर्नी जो है, अब बस आप लोगों के लिए ही हम सेट कर लेते हैं, ताकि जो अपनापन है, जो प्यार है, दोस्ती है, वो बस फिर से स्ट्रांग हो जाए. और वैसे पावन माहौल है और चारों ओर माता रानी की जय जयकार हो रही है, माता जगदम्बा की गुणगान हो रही है. तो मिलकर धूमधाम से मनाएंगे नवरात्रि को. नवरात्रि की मंगल कामनाएं है हंसनी और पूरी टीम की तरफ से हमारे है. बस टू शेयर ऑल द गुड वाइब्स. माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिले आप सभी को, खुशियाँ से भरा रहे हर पल, कभी ना आए कोई दुख आपके जीवन में, माँ के चरणों में आपको हर सुख मिले. हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी आप सभी को. जहां पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है ना, वहां पर हर मुश्किल का अंत होता है. माँ की भक्ति, माँ की शक्ति हर घर में लाए सुख और समृद्धि. और एक बार फिर से हम आए हैं ढेरों मंगल कामनाएं आपको पहुंचाने के लिए. जय माता दी आप सभी को. कुराज एंड ऑल द गुड वाइब्स. जहाँ पर आप व्रत धारण कर रहे हैं और माँ जगदम्बा प्रसन्न होकर आपके सब मनोकामनाएं को पूर्ण करे, यही हमारी बस विशेष है, शुभकामनाएं है. लेट अस बी टुगेदर. साथ साथ हम रहने वाले हैं. इट्स वीकेंड और कई लोग तो बस जुड़े हुए हैं अपने फैमिली टाइम को और भी खास बनाने के लिए. एंड या इट्स आफ्टरनून और चाय पीने का टाइम. हाँ जी बिल्कुल, हम भी तो ज्वाइन करने वाले हैं आपके साथ इस टी टाइम में. वैसे क्या बनाया है टी टाइम में आज शेयर करेंगे तो जानेंगे, पता लगाएंगे हम. एंड गुड टू शेयर. विल बी वेटिंग फॉर यू ऑन 5499-1294.
0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.

0: plug and play.
1: RM2.
2: ये समझ में आना और समझाना ये तो रेडियो का काम है. बस ये जो खास काम है उन्हें पर छोड़ते हैं. वैसे पता नहीं उनकी किस बात से मुझे इतना प्यार हो गया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनसे बातें करना और उनके साथ वक्त बिताना ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है. कभी कभी सोचती हूँ कि वो हमारी ज़िंदगी में ना होते तो क्या होता, क्या होता. शायद सब कुछ होता, लेकिन वो खुशी तो नहीं होती. और उनके होने से जो खुशी होती है, जो प्यार महसूस होता है, वो तो नहीं होता, राइट. और ये तो परी कह रही है ऑल द वे फ्रॉम कनाडा. इतने दूर से वो आई हो टू से हेलो टू ऑल लिसनर्स. तो आपका हम दिल से वेलकम करना चाहेंगे. थैंकिंग यू फॉर योर स्वीट मैसेज. ये था आपके लिए और आपके बाबू शोना के लिए. लगता है आज का दिन खास है. सो विशिंग यू पायस नवरात्रि. जय माता दी आप दोनों को. स्टे ब्लेस्ड. और माता रानी आई है ना, तो सब जो कष्ट है, जो दर्द है, आंसू है, सब वो दूर करने वाले हैं. We are here लेकर some more messages on 549-1294. यहाँ पर ज्योति जी का साथ from Chateau Benares. यहाँ पर गाना आपके लिए जरूर चल जाएगा. For Ashni, Rekha, Surekha और सभी मध्य परिवार के लिए thanking you so much for your dedication. Karishma जी hello. जय माता दी to Hansini and all the team. Thank you so much. जय माता दी आपको भी. And गाना for my love अविनाश के लिए. वो ओकुले के रहने वाले हैं और वैसे आज उनका बहुत बड़ा दिन है. आज उनका बर्थडे है और पायस दिन है. सो यू आर हियर मिलकर धूमधाम से मनाने के लिए. और हम तो जाएंगे शाम के वक्त दुर्गा पूजा में. सो और क्या चाहिए जब ऐसे खास दिन पर माता रानी की कृपा बस मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, और क्या चाहिए, राइट. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. हैप्पी बर्थडे फ्रॉम ऑल आवर टीम. और बिल्कुल हम मनाने वाले हैं धूमधाम से आपके स्पेशल डेट को. वी हैव इट फ्रॉम दिव्यांका. हाय, वेलकम इन द शो. फ्रॉम आप तो आई हो फ्रॉम मेलरोज. यहाँ पर गाना फॉर माय परिवार के लिए. हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं एंजॉयिंग टी टाइम. जैसे आपने कहा हंसनी, इट्स वेरी प्रेशियस. जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि लाइफ तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है. कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर आज हमको मिला है, वी गॉट द प्रेजेंट, राइट. सो वी आर हियर टू मेक इट परफेक्ट. सो व्हाई नॉट. अगर आप अपने परिवारों के साथ बिता सकते हो वो कीमती वक्त, आप हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, तो उन सभी कीमती घड़ियों को क्यों आप बर्बाद करेंगे. और हैप्पी टू गेट योर मैसेज. यहाँ पर एंजॉयिंग अ फैबुलस टाइम, टी टाइम, स्पेशली अपने परिवारों के साथ. तो मिलकर एक खास गाना डेडिकेट हम करना चाहेंगे आपके लिए. यू वॉन्ट अ सॉन्ग फ्रॉम सत्य पे सत्ता. जिंदगी मिलकर बताएंगे ऑन द ओकेजन ऑफ बिग बी साहब, उनका जन्मदिन जो है, मिलकर धूमधाम से मनाएंगे. आई विल ट्राई टू फॉर यू. यहाँ पर जो गाना आप सुनना चाहेंगे, इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक एंड फन टिल 4 पीएम.
0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.

हक है, पूरा हक है उनके फिक्र करने का, उनकी खामोशी को समझने का और उनके बिना कहे उनका हाल जानने का, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि दिल से समझना का नाम होता है। हक है मुस्कुराने की वजह बनना, हक है हर सुख में हर दुख में साथ निभाना, ऐसा है ये रिश्ता, ऐसा है ये बंधन।

Keep enjoying the best mix of music जो यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं to entertain you. It's a weekend time, right? And we are here आपके साथ साथ चलने के लिए to be the music हमसफर. और क्या चाहिए weekend वाले इस माहौल में जब ऐसे रंगीन गाने हम लेकर आ रहे हैं to add on some more colors. Be with us यहाँ पर 4 बजे तक. यहाँ है आंसरी जो आपके साथ है. It's all about music.

म्यूजिकल वेदर रेडियो मस्ती यहाँ पर अंतिम गाना चल पड़ा है फॉर प्लग एंड प्ले प्रोग्राम इट्स द एंड. लेकिन शुरुआत तो होने वाली है एकदम नई वाली वद आज का बॉलीवुड टक टकाटक लेकर आ रहे हैं द बेस्ट ऑफ सिलेक्शन साउथ सॉन्ग्स आर जे संजय. तो यहाँ पर साथ हम निभाने वाले हैं उन बस उनका अब फॉर द नेक्स्ट शो आज फ्रॉम 4 PM टू 7 PM. मिलेंगे जल्द ही मुलाकात फिर से होने वाली है. तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल वीकेंड और जो नवरात्रि के लिए आप जाएंगे पूजा पाठ करने के लिए तो बस सब रहे एकदम मंगलमय. विशिंग यू ऑल अ पायस नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं. स्टे हम्बल स्टे हैप्पी स्टे कॉल्म और बस खुशियाँ आपके लिए हमेशा कायम रहे. गॉड ब्लेस यू. माता रानी की जय जयकार. जय माता दी.

0: का बताई भैया हमरा हाल का है।
1: बताए दे।
0: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

0: शाम के 4 बज रहे हैं। सुनते समाचार अभी के साथ नमस्कार।
1: नमस्कार संजय, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। एलोजी थॉमस की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर बताई जा रही है। उनका इलाज कल कर रही मेडिकल टीम ने आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक बैठक की, जिसमें कई सांसद भी उपस्थित थे। डॉक्टरों की टीम भारतीय विशेषज्ञों से लगातार संपर्क में है, जिनके कल दोपहर तक देश पहुंचने की उम्मीद है। उनके आगमन के बाद मरीज की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके बाद उचित मेडिकल प्रोटोकॉल पर फैसला लिया जाएगा। कल शाम थॉमस परिवार से उप प्रधानमंत्री और युवा एवं खेल मंत्री ने मुलाकात की। देवेन नागालिंगम ने आश्वासन दिलाया कि एलोजी थॉमस की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वही आर्यन नवामारी ने उस घटना के गवाहों से आगे आने की मांग की है, जिसमें युवा माँ घायल हुई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। और इस घटना ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ध्यान भी आकृष्ट किया है, जिसने न्यायिक जांच की मांग की है। मानवाधिकार डिवीजन के सदस्य जोमार रिशो ने याद दिलाया कि हथियारों का इस्तेमाल हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। पानी का संकट चिंता का मुख्य केंद्र बना हुआ है। महोबाक्वा जलाशय के 36% से नीचे चले जाने और भारी बारिश आने में लगभग 2 महीने बाकी होने के कारण मॉरिशस को

0: इस सूखे से निपटने के लिए समाधान तलाशने होंगे। आज रविवार 11 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र शुरू हो रही है, जो देवी भगवती माँ दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। नवरात्रों तक चलने वाला यह भक्ति का समय प्रार्थनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों से भरा होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उत्सव की शुरुआत आज देवी शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ हो रही है। यह आध्यात्मिक आस्था और सदियों पुरानी परंपराओं का पर्व है, जिसका समापन आगामी 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ होगा। ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख में 4 दिन बाकी होने के कारण करदाताओं पर दबाव बढ़ गया है। इसकी समय सीमा इस गुरुवार 15 अक्टूबर की आधी रात तय की गई है, जिसके बाद जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। ज्ञात हो कि शुक्रवार 9 अक्टूबर तक 178,000 से अधिक टैक्स रिटर्न पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। जिन्हें मदद की आवश्यकता है, उनका सहयोग करने के लिए मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी आज रविवार को शाम के 4 बजे तक विशेष रूप से खुला रहेगा। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि तूफान इसाइयास के तेज हवाओं और भारी बारिश से अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में भारी तबाही मची है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और लाखों लोग बिजली न होने के कारण अंधेरे में हैं। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। 6 बजे विस्तार के साथ सायंकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे, तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार और आदाब।
1: Music, Tak Tak Tak. RM2, Radio Musti.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: नमस्कार आदाब हमारे सभी सुनने वालों को, जय माता दी और नवरात्रि शारदीय नवरात्रि की इस प्रथम दिवस पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तमाम सुनने वालों को। इस समय जो मॉरिशस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यकीनन शारदीय नवरात्रि की के इस प्रतिपदा पर बहुत से लोग इस समय बहुत ही व्यस्त होंगे, घर पर भी पूजा हो रही होगी और मंदिर में भी आयोजन हो रहा होगा। सो आप सबों को शक्ति मिले, भक्ति मिले और एकता के साथ इस महान पर्व को मनाए, ऐसी हमारी मनोकामना। आप सबों का हार्दिक स्वागत है रेडियो मस्ती की लहरों पर।

0: एक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: यकीनन आने वाले दिनों में ढिंढोरा, ढोल, मंजीरा, करताल, ढोलक बहुत सुनने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग माँ की आराधना करने अपने अपने मंदिरों में जाएंगे, अपने अपने घरों में भी माँ की स्थापना करेंगे। बस ये विनती है सभी लोगों से,

खासकर जो चालक हैं जो ड्राइव कर रहे हैं रात के समय खासकर जब आप मंदिरों के पास से गुजर रहे होंगे तो ज़्यादा सावधानी बरतें और जो लोग पैदल जाने वाले हैं मंदिर आप भी ख्याल रखें कि ऐसे कपड़े पहने जिसके ज़रिए आप दिख पाए अन्य जो चालक हैं आपको देख पाए साथ ही साथ जो लोग अपनी गाड़ियों को पार्क करने वाले हैं और जिनको अंदर में पार्किंग ना मिले आप भी प्लीज़ वेरी कॉशियस वाइल पार्किंग जिससे कि अन्य जो चालक हैं उन लोगों को दिक्कत ना पहुंचे दोज आर द यूजर्स ऑफ द रोड सो कीप अस कॉन्टैक्ट कीप अस इन योर माइंड जब आप पूजा कर रहे होंगे और हम सबों के स्वास्थ्य के लिए पूजा करें और साथ ही साथ देश में वर्षा हो और हमारे जलाशय भरें इसके लिए भी विशेष तौर पर आप प्रार्थना करें और जल को पानी को व्यर्थ में जाया ना करें

0: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूं। जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी।
1: अरे सुन सुन।
2: यस मां।
1: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
2: माँ मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
1: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

बादलों की गरज और बरसात की धुन सुनने के लिए व्याकुल होंगे, बहुत ही तरस रहे होंगे। आसमान में तो घने बादल छाए हुए हैं लेकिन बरसात नहीं दिख रही। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पर फोन नंबर पर आपके मैसेज की बरसात तो जारी है। ये मैसेज है प्रीतम जी की ओर से, प्रीतम बीतू जी की ओर से, फ्रॉम पीतो एंजॉइंग द शो एंड उन्होंने अगली गाने की फरमाइश की है फॉर वाइफ वर्षा, बोथ एंजॉइंग म्यूजिक तक तक तक रेडियो मस्ती के लहरों पर। ये मैसेज है महाराज जी की ओर से, जय माता दी लिखते हैं भाई जी, सभी भक्त जनों को दुर्गा नवमी की शुभकामनाएं, माँ सबकी माँ सबों का कल्याण करे। मैसेज है महाराज जी की ओर से, धन्यवाद महाराज जी। मैसेज है श्वेता हुकुम जी की ओर से फ्रॉम बोनाके, विशिंग ब्रदर विकी बिहारी ऑफ कुंकुमा वेरी हैप्पी बर्थडे, सिस्टर ब्रदर इन लॉ रोशन रिधि और सोनाक्षी की ओर से, और मीरा जी ने हमें याद किया है फ्रॉम अनीता जी ने हमें याद किया है फ्रॉम फ्लक, उनकी ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं टू ऑल रेडियो मस्ती लिसनर्स, और उनकी ओर से विशेष तौर पर वेरी हैप्पी बर्थडे टू बिग बी।

0: गहराई हमें अपनी आस्था में लानी है। 4:45 माला जी समय गंगा तालाब से निकल रही हैं और मावाक्वा के इलाके से गुजरते हुए वो हमें बता रही हैं अपने मैसेज में कि वहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि जोरों की बारिश हो खास तौर पर वहाँ पर, लेकिन अगर पूरे देश में हो तो और भी बेहतर होगा। You're listening to Music Taktaka Tak Sanjay ke saath on Radio Masti.
1: Music Taktaka Tak. RM2 Radio Masti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: जी डियर लिसनर्स, आज की तारीख 11 अक्टूबर एंड टुडे इट्स अ बर्थडे ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार एवर फ्रॉम बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन जी। जब 11 अक्टूबर 1942 को 1942 को जब वो सितारा जन्मा था, तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनके माता पिता को पता था कि ये बाद में जाकर स्टार ऑफ द मिलेनियम घोषित होंगे, अ वर्ल्ड आइकन हु हैज ट्रांसेंडेड ऑल कंट्रीज, हु हैज ट्रांसेंडेड टाइम। और आज उनके जन्मदिन के मौके पर आई फील लाइक पेइंग ट्रिब्यूट टू हिम। इनफैक्ट जब वे मॉरिशस आए थे तो उनसे मिलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, और एक ऐसा प्रोग्राम भी हमने प्रस्तुत किया था जिसमें वे मेन गेस्ट थे। एंड आई गॉट अ वेरी मेमोरेबल पिक्चर ऑफ मी एंड हिम टुगेदर आज। और हमारी ख्वाहिश, हमारा ये ख्वाब है कि एक दिन हम जाकर उनसे मिलें, कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर। लेकिन अभी के लिए अपने आप को संतुष्टि हम प्रदान करते हैं इस डायलॉग को सुनकर। फ्रॉम द फिल्म मोहब्बतें, रिलीज साल 2000 में, और इस फिल्म में उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी खिताब मिला था। हैप्पी बर्थडे बिग बी।

परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। आपसे पहले जो यहां से गुजर चुके हैं वो आपके लिए बहुत ऊंचे सिद्धांत छोड़ गए हैं। आज वो सब अपनी अपनी जगह बहुत कामयाब लोग हैं, कुछ बड़े लेखक, कुछ बड़े बिजनेसमैन, कुछ बड़े नेता, पर उन सब में एक चीज सामान्य है, वो सब अपनी सारी जिंदगी इस गुरुकुल के सिखाए हुए उसूलों पे चले। आज आप सबको उस कामयाब वंश का हिस्सा बनने का मौका दिया जा रहा है। हम आप सबको इस देश के चारों कोनों से चुन चुनकर यहां लाए हैं, इस विश्वास के साथ कि आप में वो काबिलियत है जो एक कामयाब इंसान बनने की होनी चाहिए। पर कोई भी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान होता है। आज आपने इस

गुरुकुल में कदम रखकर बाहर की दुनिया अपने पीछे छोड़ दिए। जब तक आप यहां हैं, गुरुकुल ही आपकी दुनिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब पूरी लगन के साथ यहां पढ़ेंगे और यहां के नियमों का सख्त अनुशासन से पालन करेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट यहां की परंपरा और अनुशासन को तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो वो उसी वक्त यहां से निकाल दिया जाएगा। और इतना याद रखिए कि एक बार आप यहां से निकाले गए तो हमारे साथ इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे भी आपके लिए बंद हो जाएंगे। तो अगर आज यहां आप में से कोई ये बलिदान देने के लिए तैयार नहीं है तो वो गुरुकुल के इस गेट के बाहर जा सकता है। लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया है कि आप यहां रहेंगे तो फिर वो गेट और उसके बाहर की दुनिया आपके लिए बंद है। अब मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी अपनी आंखें बंद करके, अपना सर झुका करके, मेरे कहे हुए हर शब्द पे ध्यान दें और अपना अपना फैसला खुद करें। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: आरएमटू रेडियो मस्ती।
2: जी दोस्तों, आज स्पेशल डे है, स्पेशल तारीख है, स्पेशल तिथि है फॉर ए वेरी स्पेशल बॉलीवुड स्टार, द वर्ल्ड आइकन, सुपरस्टार ऑफ ऑल द सुपरस्टार्स अमिताभ बच्चन जी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। बोर्न 11 अक्टूबर 1942, ही इज 85 टुडे। और उनके जन्मदिन के मौके पर वी आर प्लेइंग सम वेरी नोन रिनाउन डायलॉग्स, और ये अगला डायलॉग हम चाहते हैं कि आप गेस करें किस फिल्म से हैं। एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू गेस राइट। इन द रोल ऑफ नारायण शंकर अमिताभ जी।
3: 25 सालों से मुझे इस बात का बहुत गर्व रहा है कि मैंने इस संस्था को परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन से चलाया। इस विश्वास के साथ कि यहां के हर स्टूडेंट को मैंने ज्यादा समर्थ, ज्यादा संपूर्ण और ज्यादा काबिल इंसान बनाए। एक ऐसा इंसान जो जिंदगी की हर जंग में विजयी होगा। मुझे इस बात का बहुत गर्व रहा है कि कहीं ना कहीं गुरुकुल के हर एक स्टूडेंट में एक नारायण शंकर रहता है। पर आज आपके सामने खड़े हुए मुझे ये गर्व नहीं हो रहा, क्योंकि आज आपके सामने खड़ा हुआ नारायण शंकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आज नारायण शंकर वो इंसान है जो जिंदगी की जंग में विजयी नहीं रहा। वो हार गया है। वो एक जिद्दी, बदनसीब इंसान है जो जिंदगी का मतलब ही नहीं समझ सका। और आज जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उसके सारे स्टूडेंट्स उसी की तरह दुखी और अकेले खड़े हुए दिखते हैं, क्योंकि वो जानता है कि जब वो डरे हुए होते थे तो उसने कभी उनकी तरफ मुस्कुरा कर नहीं देखा। जब वो कामयाब होते थे तो उसने कभी उनकी पीठ नहीं थपथपाई। जब वो उदास होते थे तो उसने कभी उन्हें गले नहीं लगा, क्योंकि वो हमेशा एक ही उसूल को मानता आया कि मोहब्बत और प्यार से दर्द बढ़ता है और दर्द इंसान को कमजोर बनाता है। पर यही मानते मानते वो खुद इतना सख्त हो गया कि प्यार करना ही भूल गया। और आज वो हर स्टूडेंट के पास वापस जाना चाहता है और हर एक को गले लगाकर, हर एक से माफी मांगकर एक छोटी सी बात कहना चाहता है कि जिंदगी प्यार देने और प्यार लेने का नाम है और कुछ नहीं, कुछ नहीं। पर वो ऐसा कर नहीं सकता, वो वापस जा नहीं सकता। लेकिन एक काम है जो वो कर सकता है, एक काम जो उसने 25 सालों में नहीं किया, एक काम जो उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था, और वो है परिवर्तन। उसे बदलना होगा, पुरानी पीढ़ी को अपनी पुरानी परंपरा तोड़नी होगी ताकि एक नई पीढ़ी एक नई परंपरा बना सके। अब वक्त आ गया है कि मैं पीछे हट जाऊं और आप सबको वो इंसान दूं जिसने मुझे सिखाया है

में एंग्री यंग मैन कहें, द शहंशाह बॉलीवुड कहें, सदी के महानायक कहें, सबके सब कम पर जाएंगे। 200 फिल्मों में वे नजर आए, रेसिपिएंट ऑफ सेवरल एक्वालाइड्स, 7 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 17 फिल्मफेयर अवार्ड्स एंड 1 साउथ फिल्मफेयर अवार्ड। सैल्यूट टू द वन एंड ओनली बिग बी उनके जन्मदिन के मौके पर।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: 5:30 बज रहे हैं. थैंक यू फॉर एंजॉयिंग दिस म्यूजिकल राइड ऑन दिस संडे आफ्टरनून. That was Dulare from the film Devdas, reminiscing what a sequence in the film Devdas, जहाँ पर Madhuri Dixit और Aishwarya on the occasion of Durga Puja एक साथ dance करते हैं. और उससे पहले जब Aishwarya जाकर मिट्टी लाती हैं from the place जहाँ पर Madhuri Dixit रहती हैं, और वहाँ पर जो बातें होती हैं और जिस भावनाओं के साथ, जिस इमोशन के साथ, जिस वाइब के साथ माधुरी दीक्षित आती हैं, मिलती हैं ऐश्वर्य से, और उनके घर पर पूजा से पूर्व ये डांस होता है. वाओ, वंडरफुल वंडरफुल. एंड सैल्यूट टू संजय लीला बंसाली फॉर हैविंग ब्रॉट द वेरी बेस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट्यूम, इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग, इन टर्म्स ऑफ डांसिंग बिटवीन दीज टू आइकॉन्स ऑफ इंडियन सिनेमा. So keep on sending me your messages on 54992894. Music Tak Tak Tak Sindhi ke saath, thank you once again.

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: म्यूजिक टकटकाटक रेडियो मस्ती।
2: आज के इस सेगमेंट में विशेष तौर पर हम बात करेंगे अबाउट सिल्वेट एंड प्रोपोर्शन हैक्स, लेकिन इससे पहले मॉडर्न इंडियन वेयर ब्लेंड्स ट्रेडिशनल हेरिटेज फैब्रिक्स एंड मोटिव्स विद कंटेम्पररी इजी टू वेयर सिल्वेट्स। चलिए आज हम चार विषयों पर बात करेंगे पर्टेनिंग टू सिल्वेट एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले यू नीड टू मास्टर द लेंथ रूल, सेकेंडली यू नीड टू एम्ब्रेस फ्यूजन पीसेस, तीसरा पॉइंट हाउ टू एक्सपेरिमेंट विद ग्लोबल कट्स, और आखिरी जो होगा विल बी टॉकिंग अबाउट लेयरिंग स्ट्रेटेजिकली। सो लेट्स टेक द फर्स्ट पॉइंट, मास्टरिंग द लेंथ रूल। इसमें क्या होता है, यू नीड टू पेयर शॉर्ट कुर्तीज विद फ्लोई एंड फुल लेंथ बॉटम्स एंड लॉन्ग कुर्तीज विद क्रॉप्ड एंकल लेंथ एंड स्ट्रेट ट्राउजर्स टू बैलेंस विजुअल वेट। Let's move on to the second point, how to embrace fusion pieces. इसमें you need to swap out traditional churidars for palazzos, cigarette pants or dhoti pants. आपका choice. Thirdly, how to experiment with global cuts. Try contemporary silhouettes like coat dresses, asymmetric hemlines, A-line kurtas with high front slits or pre-stitched drapes. और आखिर में लेयरिंग स्ट्रेटेजिकली, इसमें यू कैन ऐड स्ट्रक्चर्ड एथनिक जैकेट्स, केप्स और ओपन फ्रंट कोटीज ओवर स्टैंड आउट कुर्ताज और लहंगास फॉर इंस्टेंट डायमेंशन। अगली बार विल बी टॉकिंग अबाउट स्टाइलिंग एंड एक्सेसरीज। आज के लिए मुख्य विषय था सिल्युएट एंड प्रोपोर्शन हैक्स।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Music,
3: Tak Tak Tak. RM2, Radio Musti.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: जब ऐसे त्योहार आते हैं जैसे कि गणपति, जैसे कि नवरात्रि, जैसे कि शिवरात्रि, इट फील्स लाइक यू आर लिविंग, आप किसी अलग डायमेंशन में जीते हैं, है ना। चले एक नजर, एक हाय टू सोनी जी जो सैफ

विश्वास ही हमारा साथ निभा रही हैं और शी इज स्पेंडिंग ए वेरी सुपर संडे वो लिखती हैं विद हर फैमिली. ये अगला मैसेज लेते हैं अविशा जी की ओर से. नेक्स्ट सॉन्ग फॉर होल फैमिली विशिंग एवरीवन वेरी पायस नवरात्रि. वी आर ऑल बिग फैंस ऑफ बिग बी. ये मैसेज हैं आरती विशाल शलील प्रियंका लीना ऋषि राकेश रूपा चांद हेमा हरीश अश्ले अश्नि पूर्णिमा एंड ऑल फ्रेंड्स. जय माता दी संजी. मंगल कामनाएं नवरात्रि की मंगल कामनाएं एंड हैप्पी बर्थडे टू अमिताभ जी एज वेल. मैसेज है इनकी ओर से जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा. आई सपोज इट इज रोशनी जी माला जी. बहुत बहुत शुक्रिया साथ निभाने के लिए. और लेते हैं ये मैसेज. नेक्स्ट वन गोइंग फॉर ज्योति जी फ्रॉम शतुबी नगर. उनकी ओर से फॉर होल फैमिली.

0: 11 अक्टूबर 2026 की तारीख। स्वागत है आप सभी का 6 बजे के समाचारों में। डालते हैं नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। गोली लगने से घायल एलोजी टोमास की सेहत पर सबकी नजरें टिकी हुई है। शुक्रवार रात हुई इस गंभीर घटना के 2 दिन बाद आज विक्टोरिया अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक लगाई गई। मॉरिशस के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी देखभाल कर रही है, जबकि भारत से 7 डॉक्टरों के आने का है इंतजार। कोलोविये में गोली लगने से घायल एलोजी टोमास के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायिक जांच की सिफारिश की है। आयोग ने बताया है कि हथियार का इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के तौर पर होना चाहिए। इस बीच अस्पताल में भर्ती एलोजी के परिवार को उनकी सेहत में सुधार की उम्मीद है। इस मुश्किल घड़ी में रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त परिवार उनके साथ खड़े हैं। मॉरिशस में आज घट स्थापना और माता शैलपुत्री की पूजा के साथ शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हुआ है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और श्रद्धालुओं में भक्ति का वातावरण। भारत में भी भगवती मां दुर्गा के जयकारों के साथ 9 दिनों की आराधना शुरू हुई है। नवरात्रें मां के 9 स्वरूप और हर और आस्था तथा शक्ति की उपासना का है उत्सव। और विदेश में नेपाल में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है। कम से कम 5 लोग लापता हैं, जबकि करीब 36 मकान बह गए हैं और 4 पुलों को पहुंचा है नुकसान। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि गोली लगने से घायल एलोजी टोमास की सेहत पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। शुक्रवार रात हुई इस गंभीर घटना के 2 दिन बाद आज विक्टोरिया अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक लगाई गई। बैठक में एलोजी टोमास की मौजूदा हालात और उनके इलाज पर बात हुई। मॉरिशस के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी देखभाल कर रही है। इस बीच इलाज में मदद के लिए भारत से 7 डॉक्टरों के आने का इंतजार है। एलोजी टोमास को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए चिकित्सा स्तर पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। यासिन दैनमामुद की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
1: सांसदों, स्वास्थ्य अधिकारियों और चिकित्सा विशेषज्ञों ने एक बैठक में 27 वर्षीय एलोजी टोमास की स्वास्थ्य स्थिति का जायजा लिया, जो शुक्रवार रात को एक पुलिसकर्मी की गोली से घायल हो गई थी। भारतीय विशेषज्ञों के आने तक मॉरिशियन डॉक्टर उनकी सेहत पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। मंत्री अनिल बेचू ने कहा, कल रात से मॉरिशियन डॉक्टरों का संपर्क आने वाली भारतीय टीम के साथ हैं। उनके मांग पर ही कल कुछ टेस्ट किए गए और स्कैनिंग भी। मरीज की हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है। 7 स्पेशलिस्टों की एक टीम उसकी देखभाल कर रही है उन डॉक्टरों की सलाह पर। उनके इलाज से जुड़े फैसले विभिन्न विशेषज्ञों के बीच विचार विमर्श के बाद सामूहिक रूप से लिए जा रहे हैं। मॉरिशस में हमारे स्पेशलिस्ट भी सतर्क हैं, मरीज की देखभाल कर रहे हैं। सोमवार को डॉक्टरों के आगमन से ये तय करेंगे कि क्या प्रणाली अपनाई जाएगी। स्पाइन सर्जन का हमसे बात हुई थी, हेल्थ डायरेक्टर और अन्य कॉलीग्स के साथ भी, जिस तरीके से सर्जरी की जाएगी उससे हमें संतोष है। वही स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने मरीज के मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर अश्वमेध सिंह डेरा सिंह ने कहा, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन है, इसलिए उसे निकाल कर कहीं नहीं ले जाया जा सकता। हमारे लिए अभी भी उसकी स्थिति स्थिर है, कोई ब्लीडिंग नहीं। सीटी स्कैन के बाद समीक्षा की गई, 2 बार सीटी स्कैन हुई, धमनी में भी कोई रक्तस्राव नहीं, सब सामान्य है, केवल जबड़ा जहां गोली लगी वहां चोट है।
2: Tout ça fait normal. Il n'y a aucun problème au niveau de ce artère, sauf que ça a un problème au niveau du côté de la tire rentrée sur la mâchoire. Et ça, c'est nous capables de finir quand l'équipe est rentrée. Nous pouvons finir faire ça bien, nous pouvons régler les. Et nous pouvons guetter un coup de souvent damage après quand nous ouvrons. Ce qui scan montré, c'est simplement nous sommes capables de dire de toute façon l'eau là.
1: रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र के विशेषज्ञ सर्जन, एक इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट और गहन चिकित्सा विशेषज्ञ सहित अन्य चिकित्सक शामिल होंगे। सोमवार को भारतीय टीम के पहुंचने पर आगे की चिकित्सा प्रक्रियाएं शुरू किए जाने की संभावना है।
0: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश, खासकर कोंलुविए इलाके को लेकर के देश में पानी की कमी और कोंलुविए में हुई गोलीबारी की घटना के बीच प्रधानमंत्री ने जनता से शांति, संयम और एकजुटता बनाए रखने की अपील की है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने शुक्रवार रात की घटना को अस्वीकार्य बताया है और कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मामले की जल्द और पूरी जांच होगी ताकि घटना के सही हालात सामने आए और जिम्मेदार लोगों की पहचान हो सके। प्रधानमंत्री ने बताया कि वे लगातार पुलिस आयुक्त के संपर्क में हैं और स्थिति पर नजर रख रही हैं। उन्होंने रोड्रिक्स का अपना दौरा भी रद्द कर लिया है। एलोजी टोमास के पति जोनाथन टोमास से भी बातचीत कर उन्होंने परिवार को हर संभव समर्थन का भरोसा दिलाया है और एलोजी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने पुलिस से कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए संयम और सूझबूझ से काम लेने को कहा है। साथ ही उन्होंने माना कि इस घटना को लेकर लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है, परंतु इसी से नई हिंसा या तनाव पैदा नहीं होना चाहिए। एलोजी टोमास के परिवार के प्रति पोर्टलुई के बिशप जो मिकाएल जुगन ने अपनी संवेदना और समर्थन व्यक्त किया। रोम से भेजे अपने संदेश में उन्होंने कहा कि वे परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में याद कर रही हैं। एलोजी का कल ऑपरेशन होना है। इस कठिन घड़ी में बिशप ने पूरे मॉरिशस के लिए भी प्रार्थना की है ताकि सभी को हिम्मत, शांति और उम्मीद मिल सके। उनके संदेश को सुनते हैं।
3: Nos pays passent par un moment d'épreuve, de difficulté et de souffrance, et que mon premier à prière, mon prier pour la famille Thomas, surtout pour Madame Elodie Thomas, qui est capable de retrouver la santé, qui va nous prier pour un médecin qui peut bien intervenir pour qu'il capable redonner sur la santé. Mon prier également pour que nos pays soient capables de vivre dans la paix, la justice et la vérité. Malgré qu'il est loin, mais tout le monde a prié pour le peuple mauricien qui ne connaît qu'un peuple qui a aussi ce désir de paix et de justice sociale qui nous prie ensemble en ce moment.
0: और जैसे कि हमने इस बात का उल्लेख किया है सुर्खियों में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोंलुविए में गोली लगने से घायल 27 वर्षीय एलोजी टोमास के मामले पर करीबी नजर रख रहा है। आयोग ने फिलहाल घटना के तथ्यों पर टिप्पणी करने से इनकार किया है, परंतु याद दिलाया है कि हथियार का इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के तौर पर होना चाहिए। आयोग ने मामले की जल्द निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए रोजिल जिला अदालत में न्यायिक जांच शुरू करने की सिफारिश की है, जिसके नतीजे सार्वजनिक किए जाएं और साथ ही राष्ट्रपति की शांति और संयम बनाए रखने की अपील दोहराते हुए आयोग ने नागरिकों से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और कानून लागू करने वाले अधिकारियों से मानव जीवन का सम्मान करने की अपील की है। कौन लुविए में एलुजी तोमास के परिवार के लिए हर गुजरता पल चिंता और बेचैनी से भरा है। शुक्रवार रात गोली लगने से घायल एलुजी अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। घर में उनकी कमी गहराई से महसूस की जा रही है और परिवार को अस्पताल से किसी अच्छी खबर का इंतजार है। इस मुश्किल घड़ी में रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त परिवार का सहारा बने हुए हैं। पूरे इलाके में एकजुटता का माहौल है, परंतु अपनों की चिंता के बीच परिवार में उम्मीदें एलुजी के जल्द स्वस्थ होने पर टिकी हैं। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
4: एलुजी तोमा के अभी भी अस्पताल में भर्ती होने के कारण पूरा इलाका सांस रोके हुए है। कोलुवियो में इस त्रासदी से गहरे आहत उनके करीबियों के इर्द गिर्द एकजुटता का माहौल बन रहा है। भावनाओं, चिंताओं और इंतजार के बीच परिवार उम्मीद बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।
5: Et beaucoup de monde peut venir pour moi, surtout pour que les posts qui peuvent dérouler sur Facebook, sur les social media, tout ça. Ça donne moi courage, hein, mon petit petit aussi. Nous avons la tête aux épaules pour après nous guetter qui nous capable de faire plus devant. Mais priorité, la santé, mon madame. Et là, à l'heure actuelle, sur l'état, l'instable, ben docteur qui peut venir, peut déjà faire un suivi au lit des vidéos.
4: शुक्रवार शाम से ही रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त परिवार को सहारा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए बारी बारी से मदद कर रहे हैं।
5: बेबे ली प्लूटू कोरेक्ट ली कोरेक्ट ली पापे वो जो को पेची पापे पांकोट में एंडे को ली डिमांडे मामा मामा कमो गिट्सा मुलेकिया ग्रो वी में बिब्ज़ा रिस फो बिब्ज़ा कोज मांची ओब्लिजे बिब्ज़ा जली निना ट्रावाई Je me disais ça les comprend et je me disais un grand merci aussi parce qu'il y a Gordy sur l'école qui ben a aussi fait de moi un soutien.
6: Signez des ans, il est vrai qu'il est pas encore comprend mais des fois quand mon père Denis mangeait, soit mon père Belly, il peut finir crier ma maman, soit il peut dire moi where is mommy, mais mon pas car me disais il pouvait être chez maman. Mon fait les gestes chico, mais juste pour qu'il mange, il pas pense là là. Moi aussi, moi besoin d'attendre les épaules pour qu'il me casse pour lui, me tenir. C'est gestes mon maman, mon papa, mais c'est pas évident. C'est un choc. C'est presque un trauma en fait, parce que personne, même la police même les cas, il pas gai droit permettre lui faire ça.
4: लेकिन इस समर्थन के बावजूद कई बार भावनाएं हावी हो जाती हैं। एलुजी की कमी गहराई से महसूस की जा रही है।
7: मैं

0: Moi, j'ai aussi allé là, moi, pas connu comme été. Moi, depuis qu'on m'a connu, moi, j'ai aussi d'autres qualités. Elle m'a fini à battre là, moi.
1: अधिक आश्वस्त करने वाली खबरों का इंतजार करते हुए परिवार अस्पताल से आने वाले अगले समाचारों और उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार की जानकारी पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं।
2: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। पानी की कमी से निपटने के लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने एक नई योजना शुरू की है। जिन परिवारों के घरों में पानी की टंकी नहीं है, वे कल से सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के सैंपल मुख्य कार्यालय या देश भर में उसके किसी भी कार्यालय में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। पंजीकरण सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक होगा। जिनके परिवार के नाम ए से एम तक के अक्षरों से शुरू होता है, वे सोमवार से बुधवार तक आ सकते हैं, जबकि एन से जेड तक के अक्षरों वाले परिवार गुरुवार व शुक्रवार को पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही अपने साथ पहचान पत्र और CWA का बिल लाना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मां के जयकारों से गूंजते मंदिर, भक्ति में डूबे श्रद्धालु और वातावरण में आस्था की एक नई उमंग, आज से शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है। पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना और कलश स्थापना के साथ भगवती मां दुर्गा का आह्वान किया गया है। अगले 9 दिनों तक मां भगवती के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना होगी। कहीं व्रत और उपवास, कहीं भजन कीर्तन, तो कहीं विशेष पूजा अर्चना के साथ मां का आशीर्वाद पाने की कामना। मां शैलपुत्री की उपासना से शुरू हुई ये पवित्र साधना श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का संदेश देती है। भारतीय दर्शन में नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, अपितु सृष्टि की मूल ऊर्जा, नई शक्ति और नारी शक्ति तथा चेतना की आराधना का महापर्व है। भगवती मां दुर्गा के 9 स्वरूप जीवन के अलग अलग गुणों और आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक माने जाते हैं। परंतु एक गहरा प्रश्न है, मां दुर्गा को ही आदिशक्ति क्यों कहा गया है? हिंदू दर्शन में शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है और देवी की उपासना के लिए नवरात्रों का विशेष महत्व क्यों है? इन प्रश्नों के उत्तर हमें सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों, धार्मिक मान्यताओं और उस आध्यात्मिक चिंतन से मिलते हैं जहां शक्ति को समस्त सृष्टि का आधार माना गया है, और इसी पर विस्तार दे रही है हमारी सहयोगी अदिति अवतार।
3: हिंदू दर्शन में शक्ति का अर्थ केवल शारीरिक बल या सामर्थ्य नहीं है, ये उस मूल ऊर्जा का प्रतीक है जिससे सृष्टि का निर्माण, उसका संचालन और परिवर्तन संभव माना जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं बल्कि साहस, सुरक्षा, न्याय, करुणा और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करने की दिव्य क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। उनके अनेकांत विभिन्न शक्तियों और दायित्वों का प्रतीक है, जबकि सिंह या बाघ पर उनका विराजमान होना निर्भयता, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों पर नियंत्रण का संदेश देता है। नवरात्रि से जुड़ी प्रमुख धार्मिक कथाओं में देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध का विशेष स्थान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर के अत्याचारों से देवता और समस्त लोग त्रस्त थे, तब विभिन्न देवताओं की शक्तियों के एकत्र होने से देवी दुर्गा का प्राकट्य हुआ था।
4: दुर्गा जी का सबसे महाशक्ति का प्रादुर्भाव उस समय हुआ, माने कि उल्लेख तब हुआ जब महिषासुर जैसे महादैत्य का वध हुआ। महिषासुर को हम लेंगे सिर्फ राक्षस के रूप में नहीं, महिषासुर को लेंगे हम जो हमारे अंदर क्रोध, लोभ, अहंकार, मद मोह है, उसको त्याग करके जब कोई विजय प्राप्त करता है उसको कहते हैं महिषासुर का वध के रूप में। जैसे दुर्गा सप्तशती में कहा गया अर्घरा स्त्रोत्र में, रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशोजी, कि हे माता जयम देही, मुझे विजय प्राप्त कराए, मेरे अंदर जो शत्रु, जो पाप हैं, जो दोष हैं, उसको मैं नाश करके मैं विजय प्राप्त कर सकूँ। विजय के बाद ही

0: पवित्रता के बाद ही भक्ति और शक्ति की प्राप्ति होती है।
1: अगले 9 दिनों के दौरान देश के मंदिरों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाएगी। आज शाम की कलश स्थापना से पूर्व सुबह मंदिरों में विशेष तैयारियां पूरी की गईं।
2: जैसे हमके नवरात्रि आवा था, भक्ति भाव से 9 दिन के व्रत, 10वां दिन विसर्जन होला, पूर्णावती छाक के सब हमके नारी जाति के शक्ति है कि हमने 9 दिन के व्रत रखीला जा।
3: ये नवरात्रि एक संदेश पहुंचाता है कि संयम बनाए रखने के लिए ये व्रत, ये सिर्फ नमक खाना नहीं है, वो अपने आप का जो आत्मसंयम बनाने का एक माध्यम है।
4: दुर्गा पूजा जो है सिर्फ 9 दिनों का नहीं है, बल्कि हम जो है शक्ति का रूप जो हम कहते हैं लाफोस जिविन, वो हमारी माताएं भी, हमारी बहन और हर स्त्री में है शक्ति, और उनका जो सम्मान जो है उनका करना चाहिए रोज।
1: इस पर्व का केंद्रीय संदेश ये है कि सृजन, संरक्षण और परिवर्तन की शक्ति जीवन का अभिन्न अंग है। देवी दुर्गा की आराधना के माध्यम से श्रद्धालु न केवल दैवीय आशीर्वाद की कामना करते हैं, बल्कि साहस, आत्मबल, न्याय और सद्भाव जैसे गुणों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प भी लेते हैं।
5: मॉरिशस के साथ साथ भारत में भी शारदीय नवरात्र की भक्ति और उल्लास का वातावरण है। कहीं मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा अर्चना और कहीं भजन तथा पारंपरिक उत्सवों के जरिए माँ आदि शक्ति की आराधना। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ 9 दिनों की पवित्र साधना शुरू हुई है। अलग अलग परंपराएं, परंतु श्रद्धा एवं समर्पण का एक ही भाव, माँ जगदम्बा की कृपा और आशीर्वाद की कामना। सीजीएम मिल मराठी मंडली द्वारा आयोजित आज गुंडल पूजा संपन्न की गई है और ये पूजा शक्ति की देवी भवानी को समर्पित है। ये अनुष्ठान दुर्गा पूजा के प्रारंभ में किया जाता है। ज्यादा जानकारी विधिमा सिबरन के साथ है।
6: पहली प्रार्थनाएं गूंजने लगी हैं। भक्ति और आस्था से भरे माहौल में भक्तगण देवी भवानी को नमन करने के लिए एकत्रित हुए।
7: ओम श्री महालक्ष्मी।
6: गुंधल पूजा, जो कि मराठी संस्कृति की एक परंपरा है, कुछ परिवारों के आध्यात्मिक जीवन में एक विशेष स्थान रखती है। चित्रा दौलतराव बताती है,
8: बेसिकली
6: 5 स्त्रियां हैं जो इन 5 तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे मिट्टी, पानी, वायु। भवानी माँ की पूजा से हमने शुरुआत की, जो माँ दुर्गा का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक ऐसा समारोह है जिसमें चढ़ावा, भक्ति गीत और पवित्र अनुष्ठान विशेष रूप से शामिल होते हैं। इनमें जोगवा भी शामिल है, जिसमें चावल जैसी खाद्य सामग्री बांटी जाती है, जो एकजुटता के महत्व को याद दिलाती है। बालचंद्र गोविंद कहते हैं, जब हमारे पूर्वज महाराष्ट्र से मॉरिशस आए, तब उन्होंने अपने साथ ये रीति रिवाज लाए। आज मॉरिशस में 6ठी पीढ़ी इस रीति रिवाज को बखूबी से निभा रही है। ये एक लम्हा है आई भवानी से जुड़ने का। पारंपरिक गीतों और वाद्य यंत्रों की धुन पर भक्तगण इस आध्यात्मिक उत्सव में भाग लेते हैं, जिसका समापन महाआरती के साथ होता है। ये एक ऐसी परंपरा है जो परिवारों को एक साथ लाती है और पूर्वजों के रीति रिवाजों से जुड़ने के इस जीवंत संबंध को बनाए रखती है।
5: इलाकाई स्तर पर रोड्रिग्स कल 12 अक्टूबर को अपनी स्वायत्तता की 24वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस अवसर पर कों जू रॉय के जॉन डैनियल ऑंड्रे स्टेडियम में आधिकारिक समारोह आयोजित किया जाएगा। परंतु इन 24 वर्षों में रोड्रिग्स के लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लाए हैं और भविष्य को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, इन्हीं सवालों के साथ हमारी एक टीम पहुंची द्वीप की राजधानी पो माचुरिन, जहां स्थानीय लोगों ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, परेशानियों और उम्मीदों के बारे में खुलकर बात की है। आशीष देवी, मेगन पुन्नापा नायकन और रोड्रिग्स की एक टीम पेश है। ये रिपोर्ट विवरण विधिमा सिवरन का।

0: पोमाचुरे के बाजार में खासतौर पर रोड्रिग्स वासियों के स्थानीय उत्पादों के लिए समर्पित जगह काफी लोकप्रिय बनी हुई है। मगाली लुई और उनकी माँ यहाँ कई वर्षों से काम कर रही हैं।
1: उस स्पेशलिटी से क्या एग्जैक्टली हुआ?
2: नाटो रोड्रिगेज। ये भी लंबे समय से है, देखो मैंने 12 साल मैंने कमांस फिर है, से ट्रेडिशन फैमिलियर। से मो मामा किस कमांस फिर सावो। लेला मो मैंने पढ़ा बो।
0: यहाँ लगभग रोजाना करीब 100 सब्जी विक्रेता जुटते हैं। समय के साथ बने भरोसे और पहचान के बदौलत यहाँ के हस्तनिर्मित उत्पाद हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। स्वायत्तता के 24 वर्षों में जिन निवासियों से मुलाकात हुई वे बताते हैं कि द्वीप ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है। सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष बदलाव बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देखा गया है।
2: Nous une femme forte, un monde qui comme une liberté pour nous.
0: Quand du Roy Stadium mein aayojit hone wale samaroh ki taiyariyan jab antim charan mein hain, wahin aane wale varshon ko lekar aam janata mein bhi ummeedein kafi badh gayi hain.
3: Nous développer des pays, l'aéroport, nous les ports. Ça premier mon pensée un pays parce qu'il gros bateau passe à côté nous là, les Pierre Maurice mais cabine même, mais c'est ça autonomie.
1: Qui ont envie de trouver dans l'île.
4: Comment nous sommes contents de dire jeune qui travaille tout ça là. Après, dans le loisir.
5: L'aéroport, le port, c'est une priorité pour nous. Nous avons besoin de l'aéroport pour nous gagner plus. Beaucoup de touristes. Nous avons le port aussi plus grandi.
6: Moi, quand on a la nature, comment il y a une réserve, si je ne me trompe pas. Tu sais faire, comment dire, il y a encore dans l'île. Parce que beaucoup de pandémies partout dans l'île.
0: Ils sont vers, Yutsav. बिज़े इनोटू पुफे एनसेल यानी एकजुट होकर काम करना होगा के विषय के तहत आयोजित किए जा रहे हैं। 12 अक्टूबर 2002 से इस द्वीप के निवासियों के दैनिक जीवन को आकार देने की जिम्मेदारी रीजनल असेंबली पर है।
7: हिंदी केवल एक भाषा नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और पीढ़ियों से जुड़ी एक अनमोल विरासत है। इसी विरासत को आगे बढ़ा रही नई पीढ़ी की प्रतिभा को आज विशेष सम्मान मिला है। हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी स्पीकिंग यूनियन ने साल 2025 की स्कूल सर्टिफिकेट एवं हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाओं में हिंदी भाषा और साहित्य में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: इन सम्मानों और पुरस्कारों के पीछे वे छात्र हैं जिन्होंने हिंदी सीखने का विकल्प चुना है, एक ऐसी भाषा जिसे वे शब्दों के माध्यम से और साथ ही पाठों के जरिए खोज रहे हैं।
8: ये एक महत्वपूर्ण भाषा है जो मेरे परिवार ने इस पे बहुत सारा फोकस डाला था कि मैं ये पढ़ूँ ताकि मैं अपने संस्कृति और परिभाषा के खातिर ये ले पाऊँ ये सब्जेक्ट।
9: हिंदी मेरे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि तुलसीदास जैसे महान व्यक्तियों ने मुझे समझने में सहायता किया और अन्य शब्दावली से परिचित किया, जैसे राम नाम की महिमा, उनकी शक्ति, उनका प्रभाव। जैसे
0: नई पीढ़ियों तक हिंदी भाषा पहुंचाना और इसे आगे बढ़ाना एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।
10: आने वाले समय में आज ही हम देख रहे हैं कि भारत तो एक राष्ट्रगुरु बन रहा है, हिंदी का महत्व बढ़ता जा रहा है और हमें बच्चों को हिंदी को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ये बच्चे न केवल हिंदी पढ़ रहे हैं, वे आने वाले लोगों को, उनके जो दोस्त हैं उनको भी प्रेरित कर रहे हैं कि वे भी हिंदी पढ़ें। तो हिंदी संगठन चाहता है कि अधिक से अधिक युवा हिंदी के महत्व को समझें, उसको दोयम दर्जे का ना समझें, क्योंकि हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: शिक्षा के स्तर पर चुनौती अधिक से अधिक बच्चों को हिंदी की ओर आकर्षित करने की भी है। शिक्षा मंत्री उन उपायों का जिक्र करते हैं जो बच्चों को इस भाषा को सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर महेन गंगा प्रसाद बताते हैं।
11: यही मांग करूंगा शिक्षकों से कि वो लोग बच्चे को हिंदी मूवीज जो हैं, हिंदी सीरियल्स जो होते हैं, हिंदी

0: म्यूजिक जो है उसके माध्यम से इन बच्चों को हिंदी की तरफ लाए, ताकि बच्चों का रुचि हिंदी की तरफ और जागृत हो सके।
1: पुरस्कारों और सम्मानों से परे ये समारोह युवा पीढ़ियों तक हिंदी भाषा और इसकी साहित्यिक समृद्धि को पहुंचाने के महत्व की याद दिलाता है।
2: और विदेश स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, नेपाल में बुध ही गंगा की नदी में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है। कम से कम 5 लोग लापता हैं, जबकि 36 मकान बह गए और 4 पुलों को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के अनुसार पहाड़ से मलबा गिरने के कारण नदी का बहाव रुक गया था, परंतु पानी का दबाव बढ़ने से ये रुकावट टूट गई और अचानक बाढ़ आ गई। सेना ने हेलीकॉप्टर और जमीनी बचाव दल की मदद से 49 लोगों को सुरक्षित निकाला। नदी किनारे बसे कई गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बिजली और संचार व्यवस्था को भी नुकसान हुआ है, जबकि प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान अभी भी जारी है। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड आज रात से हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा, जबकि दूसरी ओर मास्केरेंस के दक्षिण पश्चिम से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन होने की वजह से हमारे स्थानीय मौसम और प्रभावित होने वाला है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात के दौरान थोड़े से बादल घिर आएंगे, खासकर पूर्वीय ढलानों पर हल्की सी बारिश होगी और साथ ही साथ सेंट्रल प्लेटू पर भी बारिश बरकरार रहेगी। कल सुबह पूर्व दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटू पर हल्की सी वर्षा होगी और हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। तापमान, सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त 6:10 पर, जबकि कल सूर्योदय 5:42 पर।

0: तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम फैजान को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on MB.

आइए शोक समाचार सुनते हैं। शांति निकेतन रोड रोहसनुआ में, शांति निकेतन रोड रोहसनुआ में 64 साल की 64 years old की श्रीमती बिदवंती रामदस, श्रीमती बिदवंती रामदस पैदाइशी नाम राम बख्श और जिन्हें सब लोग रूपवंती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके बेटे श्री आतिश कुमार रामदस के घर शांति निकेतन रोड होशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए होशनुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9 AM। नंबर 33 जोसेफ जुबेया स्ट्रीट क्यूपिप में, नंबर 33 जोसेफ जुबेया स्ट्रीट क्यूपिप में 84 साल की 84 years old की मिसिज सरा बीबी जुमन, मिसिज सरा बीबी जुमन पैदाइशी नाम सकाबत और जिन्हें सब लोग फरीदा के नाम से भी जानते थे, वंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर नंबर 33 जोसेफ जुबे स्ट्रीट क्यूपिप से उठा निकाल कर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमारो एट 10 AM। एडीसी रोड पिचिराफ्रे में

45 साल के 45 years old के श्री मित्रानन जंदू, श्री मित्रानन जंदू जिन्हें सब लोग कुलुस के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10:30 बजे उनकी माँ श्रीमती बिंता जंदू के घर एडीसी रोड पिचिकाफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10:30 AM। मिशन क्रॉस रोड लालमाटी में, 64 years old के श्री जयराज सुकवारिया, जिन्हें सब लोग विवेक के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के 3 बजे उनकी पत्नी श्रीमती कविता सुकवारिया के घर मिशन क्रॉस रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचुए के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 3 PM सीते सेंचुबे में, सीते सेंटुबे में 79 years old की श्री गोविंदन रामा, जिन्हें सब लोग राजन रुगाई के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती शोभा रामा के घर सीते सेंटुबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांववा के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 2 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musti.
2: नमस्कार आदाब एंड वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ म्यूजिक टेक्टोकाटक संजय के साथ। इस समय शाम के 6:40 होने को हैं। हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग तैयारी में लगे हुए होंगे मंदिर जाने के लिए। आज प्रथम रात्रि है और इसी भागदौड़ में हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक तरह से गुजरे। यू ड्राइव वेल, यू पार्क वेल एंड यू रीच द मंदिर वेल, और वहाँ पर श्रद्धा भाव से भाग लें, और जब निकलते समय तो लौटते समय भी सावधानी बरतें। और जितने भी लोग इस समय रास्तों पर हैं, आपसे भी मांग है टू ड्राइव वेरी कॉशियसली इन द राउंड्स ऑफ मंदिर कोविल्स एंड मंदिरम्स।

0: Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका संडे? उम्मीद है कि आपके लिए थोड़ी आराम भरी, थोड़ी सुकून भरी होगी ये संडे की शाम। मैं हूं निखिल और अगले दो घंटे मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि म्यूजिक से तो भरी की भरी ही होगी। और आज तो स्पेशल ओकेजन है, आज नवरात्रि का पहला दिन है, पहली रात है, तो आज प्यार की नहीं प्रेम की बातें करेंगे। जो जो लोग माँ को अपने घर बुला रहे हैं या फिर खुद चल के माँ के दरबार जा रहे हैं, उनको कहेंगे जय माता दी। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का बॉलीवुड सिलसिला।

0: रेडियो मस्ती।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।
0: RM2
3: Radio Musti
4: Bollywood Sizzler
3: RM2 your number one Bollywood radio station.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जहाँ नवरात्रि की पहली रात्रि यानी कि जगह जगह मंदिर मंदिर में पूजा हो रही है यानी कि बहुत सारे लोग अभी रोड पर हैं तो अगर आप भी रोड पर हैं तो आपसे कहेंगे कि सावधानी के साथ माता के घर देर है अंधेर नहीं ठीक है तो खास आपके लिए हम अपना स्पीड बढ़ाते हैं ताकि आपको बढ़ाना ना पड़े द नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट स्पेशली टू ऑल दोज ड्राइविंग

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: नंबर अभी भी वही है 5499-1294 फॉर योर डेडिकेशंस योर रिक्वेस्ट।

0: Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, दिस वॉज मितवा फ्रॉम कभी अलविदा ना कहना. और अगर आपको भी ऐसे ही गाने सुनने हैं, देन 5499 इज द मैजिकल नंबर. 5499-1294 इज द मैजिकल नंबर. आधा ही नंबर बोलकर आपको भूल गया. ये कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो फैशन बदलता है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है. हमारे फोन्स वो तो बदलते ही रहते हैं. आप आज एक नया फोन लो, कल उससे नया मार्केट में आ जाता है. हमारे लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमारा साथ नहीं छोड़ते. पता है क्यों? क्योंकि उनमें सिर्फ म्यूजिक नहीं होता, उसमें हमारी जिंदगी का कोई हिस्सा बंद होता है, कोई वक्त, कोई याद. तो उसी याद के साथ आपका याद ताजा करते हैं इस अगले गाने के साथ.

यह नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: भोले भोले बम भोले भोले बम भोले
1: बॉलीवुड सीज़लर
2: RM2, your number one Bollywood radio station.
3: जी हाँ, ग्लोबल सेंसेशन पार्वती हनुमान अंश से लिया गया एंड इट्स अ ग्लोबल सेंसेशन, क्योंकि मानो या ना मानो ये स्टाइल वेस्ट जैसे भी है, म्यूजिकल स्टाइल जैसे भी है ये, लेकिन भक्ति की जो रूट होती है ना वो हम में पहले से रहती है। मैं कहता हूँ कि अंदाज चाहे नया हो, तुम भक्ति के सुर छेड़ के तो देखो, अपनी बनाई मूरत की नहीं उसकी महिमा की प्रतिमा गा के तो देखो, वो तुझ में है और तू उनमें, खुद में उनको खोज के को देखो।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: Well, the next one, we're going down memory lane क्योंकि काफी सारे मैसेजेस आए हैं आपके लिए. यस यस प्रकाश भट्टी जी, आपके लिए खास कर ये अगला गाना यले शाम फ्रॉम सुरीनाम आपके लिए.

ये अगला गाना और साथ में रोशनी जी ने हमको मैसेज भेजा है, लेकिन ये गाना खास खास खास हमारे दोस्त अविश सहाय के लिए, उनकी माँ सुनीता, डैड विजय, ब्रदर अखिलेश और वाइफ स्वाति और सिस्टर आकांक्षा के लिए। और यही हम करना चाहेंगे केशव जी और उनके परिवार के लिए, उनकी सासू माँ और उनके जो ससुर जी हैं वो आए हुए हैं खासर उनके लिए।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, नियरली द एंड ऑफ आवर फर्स्ट आवर बॉलीवुड सिज़ला. पेश है आपके लिए तेरा मेरा रिश्ता पुराना, नया वर्जन 2026 का वर्जन, लेकिन आइडिया वही पुराना.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी आपने अभी अभी अपना रेडियो ऑन किया है और आपके रेडियो की फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी मिल गई है, इसमें कोई कोइंसिडेंस वाली बात नहीं है, ये तो भाग का खेल है, क्योंकि दिस इज द सेकंड आवर ऑफ बॉलीवुड सिज़ल, मैं हूं निखिल और अगले एक घंटे के लिए भी हम वही करेंगे

म्यूजिक के साथ एंजॉय संडे शाम है शाम जो है वो रात होने को आई है और अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो आपको कहेंगे भोंको आज आपका आपके कान इधर और ध्यान उधर और अगर आप घर पर हैं रिलैक्स कर रहे हैं तो कान ध्यान दोनों इधर यहाँ वो लाइन भी खुली है 5499-1294 फॉर योर डेडिकेशंस एंड योर स्पेशल मैसेजेस शुरू करते हैं बॉलीवुड सिज़ल का सेकंड आवर

0: Matt Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, अगर तुम साथ दो तो ऐसे नगमे हम चलाते जाएंगे, आप सुनते जाना। जी हाँ, किसी ने मैसेज करके हमें याद दिलाया है, थैंक यू वेरी मच रोशनी जी, कि आज बड़े बच्चन साहब का जो है वो बर्थडे है, बिग बी का बर्थडे, ट्रिपल बी। और आपने पूछा है कि हम क्या उनकी एक बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही पॉपुलर गाना चला सकते हैं, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। लेकिन आपको बताऊं कि वो तो है ही सदी के

महानायक, लेकिन उनको महानायक इसीलिए नहीं बुलाया जाता क्योंकि वो सिर्फ अच्छे एक्टर हैं, लेकिन वो कंप्लीट आर्टिस्ट हैं भाई, वो गाते भी हैं। और ये अगला गाना मैं करना चाहूँगा खास रोशनी जी के नाम एंड ऑल द फैंस ऑफ बिग बी। दिस इज़ वन ऑफ द साइड्स ऑफ हिज आर्टिस्ट्री जो उन्होंने छुपा कर रखी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो अपनी खुद की आवाज़ में बहुत फिल्मों में गा चुके हैं। ये

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: यह चांद कागज का विशाल मिश्रा की आवाज में परम सुंदरी से लिया गया बेहतरीन गाना, परम सुंदर गाना। यहाँ हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में टूटे होते हैं और इसीलिए मुझे ये सब त्योहार बहुत पसंद आते हैं कि जब हम माँ को घर बुलाते हैं तो उनको ये सब जो हमारे जीवन में कष्ट हैं, ये सब जो कुछ कमी हमें लगती है जीवन में, हम उनको समर्पित कर देते हैं कि अब ले, तूने ही जीवन दिया है, अब तू ही संभाल। यहाँ नवरात्रि में नवोरात्रि में गहरी गहरी बातें ना करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, लेकिन उसी मूड में रहते हैं। क्या कहते हैं, शुभ मंगल सावधान का से लिया गया कान्हा सशा तिरुपति की आवाज में।

नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ मैया यशोदा, इससे याद आया, इस नवरात्रि आप एक काम करो, माँ जो होती है और फिर नारी जो होती है उसके सभी रोल्स पर ध्यान दो, ठीक है? और उसमें सबसे जो प्यारा रोल होता है, जो न्यारा रोल होता है, वो शायद माँ का है। या तो चलिए ये अगला गाना, ये अगली पेशकश, अगला उपहार खासकर सभी माओं के लिए और खास खास कर मीला भजन फ्रॉम वाकवा के लिए और उनके बच्चों के लिए। आपको भी हैप्पी नवरात्रि। अगर आप भी अपना नाम यहाँ पर सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय बचा है, 5499-1294 पर आप अपने मैसेजेस, अपने विशेस भेज सकते हो। तब तक के लिए हम के आवाज़ में माँ के लिए एक गाना सुनते हैं।

जहां वी आल्सो मॉर्निंग द लॉस ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स जो कभी बॉलीवुड में हुए हैं और मराठी सिनेमा में हुए हैं, नाना पाटेकर. खामोशी फिल्म से लिया ये गाना, वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस. सभी नाना पाटेकर फैंस के लिए

0: Matt Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जहाँ खामोशी की इस गाने के साथ अभी मेरे खामोश होने का वक्त होता है, जहाँ दो घंटे कैसे बीत गए हमको पता ही नहीं चला। कल किसी महानुभाव ने मुझे कहा था कि अच्छे लोगों के साथ, अच्छे साथ के साथ कभी वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ लोगों का पता चल जाता है। चाचा जी, विश यू आर वेल। और साथ ही साथ जो कोई भी हमें सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच हमारा साथ देने के लिए। आपके ब्यूटीफुल मैसेजेस, आपके साथ से ही तो ये बॉलीवुड सिजल कर पाता है। जो भी अभी नवरात्रि में लगे हुए हैं उनको कहेंगे जय माता दी, हम पायस नवरात्रि। और ये नवरात्रि सिर्फ माँ को निहारने में मत लगाना, खुद अंदर, अपने अंदर झांकना, उस आप में भी थोड़ी थोड़ी माँ बाकी है। यानी इसी के साथ हम अंत करते हैं आज के इस बॉलीवुड सिज़ला का, विद द प्रॉमिस कि हम आएंगे अगले हफ्ते, हम वापस आएंगे आपको वही नगमे सुनाने, वही वाइब क्रिएट करने, आपके संडे इवनिंग को मैजिकल बनाने। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए। कहते हैं कि पोटी पर पढ़ जग मोहा, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। आप सभी प्रेमी पंडितों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: You're listening to RM2 Radio Masti. Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Masti.
2: A very good evening, ladies and gentlemen. स्वागत आप सभी का कार्यक्रम लेट नाइट ग्रूव्स RM2 पर, और ये आशा करते हैं कि आप सब ठीक हैं, खुश मिजाज हैं और वीकेंड का मजा ले रहे हैं। ये हुई ना बात, जब आप वहां पर और म्यूजिक से हो रही है मुलाकात, तो चलिए उसी फ्रीक्वेंसी पर बिल्कुल सेट होकर अपने मूड को सेट करते हैं, गानों के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन द जर्नी ऑफ म्यूजिक, आप और हम एक ही जगह।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: आजकल सबके पास एक कॉमन सा सेंटेंस है कि टाइम ही नहीं मिलता यार। टाइम नहीं है फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, हॉबीज के लिए और कभी कभी तो खुद के लिए। और 24 घंटे सबको मिलते हैं, लेकिन 24 घंटों में से कुछ वक्त अपने निकालना ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। प्रायोरिटीज, एक छोटी सी प्रायोरिटी सेट कीजिए, थोड़ा टाइम अपने निकालिए और फिर देखिए साहब, जिंदगी कमाल की चलती जाएगी।

0: रेडियो मस्ती
1: सुनते रहो।
2: कभी किसी को देखकर ये मत सोचिए कि उसकी लाइफ इजी है। जो स्माइल कर रहा है हो सकता है कि अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो। जो सक्सेसफुल लग रहा है हो सकता है उसने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया हो। इसे थोड़ा सोच समझ कर काइंडनेस रखिए। एक सिंपल आर यू ओके ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज रात कुछ और सोच लेते हैं जो हमें कल करना है ना।

0: You're listening to RM2, a radio must-see.
1: कुछ सॉन्ग्स हमें सुनते ही फील कराते हैं कि ये बहुत ही स्पेशल है। एक सॉन्ग सुनते ही स्कूल की याद आ जाती है, या फिर एक ट्यून किसी पुराने दोस्त की याद दिला देती है, और कभी कभी एक रोमांटिक सा सॉन्ग सडनली किसी स्पेशल पर्सन का चेहरा सामने ले आता है। मैं कहता हूँ कि ये म्यूजिक के साथ कनेक्शन है ना, ये बहुत ही मैजिकल है, क्योंकि ये उस वक्त से चलता आ रहा है जब ये सोशल मीडिया, ये डिफरेंट एंटरटेनमेंट के जरिए नहीं हुआ करते थे। इसे दिल धक धक करता था बॉलीवुड के गानों पर ही। तो चलिए आज भी कोशिश है कि कुछ ऐसी गानों को शामिल किया जाए, आपको हाथ पकड़कर संगीत की दुनिया में ले जाया जाए।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: कभी कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, बस ईगो बड़ा हो जाता है। पहले वो फोन करे या फिर वो सॉरी बोले और दोनों इंतजार करते रहते हैं। अगर रिलेशनशिप इतनी इंपॉर्टेंट है तो कभी कभी पहला स्टेप लेना वीकनेस नहीं होता, एक कॉल, एक मैसेज या फिर एक सिंपल सा लेट्स टॉक, ये सब साफ कर सकता है, सब क्लियर आउट कर सकता है। बस एक छोटी सी पहल, ये सोचे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, ये जरूरी है।

0: रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: अच्छा, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो पेरेंट्स के साथ बहुत कैजुअली बिहेव करने लगते हैं। उनका फोन आया तो बाद में फोन करता हूँ, या फिर उनकी एडवाइस होती है तो हाँ ठीक है पता है, क्योंकि अब जमाना बदल गया है। लेकिन याद रखिए, उनके पास हमारे लिए हमेशा टाइम नहीं रहेगा। आज उन्हें एक कॉल कीजिए, पूछिए डिनर खाया, कैसे हैं आप। कभी कभी ये जो प्यार है ना, चाहे छुपा हो लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस में उभर कर आता है। एक छोटी सी फिक्र, किसी के बारे में सोच लेना, ये किसी के लिए बहुत मैटर कर सकता है।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: अच्छा, जितने भी प्रोफेशंस हैं उनको ये लगता होगा ना कि एक एज पर सोचते थे कि करियर में सेटल होना जरूरी है और फिर एक टाइम के बाद अब प्रमोशन चाहिए, उसके बाद बिजनेस को ग्रो करना चाहिए और फिर रिलाइज होता है कि अरे लाइफ का कोई टाइम टेबल है कि नहीं, या फिर हर वक्त आप बड़े बड़े प्लान्स बनाकर अपने आप को उसमें झोंक देते हैं। नहीं, अच्छा है अपने आप को पुश करना टू द मैक्स, लेकिन टाइम कितनी जल्दी निकल गया। नहीं, सोचिए अपने लिए टाइम निकाला अपनी प्रायोरिटीज़ के लिए या फिर आप जो करना चाहते थे। हर किसी की टाइमिंग अलग अलग है, आप लेट नहीं हैं। अगर अभी तक आपने अपना गोल अचीव नहीं किए हैं और एक सर्टन पेस पर आप काम कर रहे हैं और खुश हैं, तो इससे बढ़िया और क्या। कीप लर्निंग, कीप मूविंग और अपनी स्पीड पर चलिए।

0: नमस्ते, सुनते रहो।
1: अच्छा, अभी एक छोटा सा गेम खेलें तो कुछ ऐसा होगा कि तीन चीजें सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। फैमिली प्रोबेबली, हेल्थ दोस्त, एक नौकरी, या फिर एक सिंपल चाय का कप, या सिंपली आज एक ब्यूटीफुल सनसेट। प्रॉब्लम्स तो लाइफ में हमेशा रहेंगे, लेकिन ग्रैटिट्यूड हमें याद दिलाता है कि प्रॉब्लम्स के बीच भी अच्छी चीज़ें होती हैं। जी हाँ, ये ज़रूरी है उनको समझना कि ये वो चीज़ें जिनको देखकर हम अच्छा महसूस करते हैं, हमारी ज़िंदगी में वो हैं, सोचकर मुस्कुराते हैं।

0: कागज लाए, कुछ शीशे झूठ बोलते हैं।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती,
1: फील द मस्ती।

कभी होता ना कि कुछ चीज आपके हिसाब से नहीं हुई और उसी टैक्टिक को अपना कर नहीं या फिर उसी रास्ते को अपना कर नहीं, कुछ नए ढंग से शुरू करके उसी चीज को एक सेकंड चांस दिया जाए। कितना ब्यूटीफुल वर्ड है ना। कभी कभी जैसे कभी एक रिश्ता नहीं चला तो फिर भी बीच में प्यार है तो एक सेकंड चांस, एक बिजनेस फेल हो गया और पता लगा कि क्या किया जा सकता था तो उसको एक सेकंड चांस, एक मिस्टेक के बाद एक बेटर डिसीजन। अगर लाइफ ने आपको एक सेकंड चांस दिया है तो सोच समझ कर ही दिया होगा, उसे वेस्ट मत कीजिए। और अगर अभी तक नहीं मिला तो पेशेंस रखिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: Hope you had a wonderful time. Hope you had a wonderful time listening to the best mix of music. नए पुराने गानों के साथ बस कोशिश यही रही कि आपके हम सफर बनकर इस वक्त आपके साथ जुड़े रहें। RM2 रेडियो मस्ती AM to PM। तो चलिए अभी इजाजत, अब अगला हफ्ता शुरू हो रहा है, पूरी प्लानिंग आई होप आपने कर ली हो। जल्दी मिलते हैं, कल ही मिलते हैं, आप ध्यान रखिए। नमस्कार।

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: मेरी तो ट्रेजेडी यही है, मैंने जिससे भी प्यार किया सबको खो दिया, माँ बाप भाई यहाँ तक कि
3: तुम बहुत लकी हो शेखर कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं जो खो सके। मेरी आंखों में देखो शेखर।
2: डरता हूँ कहीं फिर से प्यार ना करने लगूं और दोबारा चोट खाने की हिम्मत।
3: मैं वादा करती हूँ शेखर कि आज के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा। I promise you that I will never ever hurt you.